0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी, जिसमें आज आपने सुना मल्लिका बनर्जी के स्वर में राग ललित। सुबह के 6 बजने को हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार, उसके बाद 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। भविष्य रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल है। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देश भर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6,000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। एफआईएच हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीम सीधे

सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पोल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पोल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में जन्मे खुदीराम बोस बचपन से ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था और हर तरफ अन्याय का माहौल था। खुदीराम ने बहुत कम उम्र में ही ठान लिया था कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मिदनापुर बंगाल में युगांतर नाम की क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के माध्यम से खुदीराम क्रांतिकारियों से पहले ही जुड़ चुके थे। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों भारतीयों को उस समय के कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। अन्य मामलों में भी उसने क्रांतिकारियों को बहुत यातनाएं दी। इसके परिणाम स्वरूप किंग्सफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर बिहार भेजा गया। अतः साल 1908 में खुदीराम बोस और उनके साथ प्रफुल्ल चाकी को इस अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने का कार्य सौंपा गया। 30 अप्रैल 1908 की रात खुदीराम ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर एक बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्यवश उस गाड़ी में दो अन्य अंग्रेज महिलाएं थीं, जिनकी मृत्यु हो गई और किंग्सफोर्ड दूसरी गाड़ी में होने के कारण बच गया। इस घटना के बाद खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो उनके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वे मुस्कुराते हुए हर सवाल का जवाब दे रहे थे, जबकि उनके साथ ही प्रफुल्ल कुमार चाकी ने अपने आप को पुलिस द्वारा चारों तरफ से घिरा देखकर अपनी पिस्तौल से खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। कहते हैं जब वे फांसी के फंदे की ओर बढ़ रहे थे तब भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में देश के लिए गर्व। उस समय उनकी आयु 18 वर्ष थी। खुदीराम बोस भारत के सबसे युवा शहीदों में से एक बने। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। फांसी के बाद खुदीराम बोस इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के राष्ट्रवादियों के लिए वह वीर बालक शहीद और अनुकरणीय हो गए। कई दिनों तक स्कूल कॉलेज सब बंद रहे और नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिसके किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। उनके सम्मान में अनेक भावपूर्ण गीतों की रचना हुई, जिन्हें बंगाल के लोक गायक आज भी गाते हैं। भारत और भारतवासियों को ऐसे क्रांतिकारियों पर सदैव गर्व रहेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन।
2: मैं हूं आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहां धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और।
1: आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम रामचरितमानस।

राम राम की रट लगाते हुए दशरथ जी उस पक्षी की भांति बेहाल हो रहे हैं जिसके पंख काट दिए गए हों। वो मन ही मन कामना कर रहे हैं कि किसी प्रकार सवेरा न हो और इस वज्राघात का संदेश राम तक न पहुंचे। किंतु प्रकृति के कार्यकलाप भला किस भांति रुक सकते हैं। राजा के विलाप करते करते सवेरा हो गया और नित्य की भांति राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंखध्वनि होने लगी। भाटों द्वारा विरुदावली और गवैयों के गायन की ध्वनि दशरथ जी के हृदय में बाण की भांति मर्मान तक पीड़ा देने लगी। राजद्वार पर मंत्रियों तथा सेवकों का समूह महाराज के अब तक न जगने से चकित विस्मित हो रहा है। महल में भयानक शांति छाई देखकर मंत्री सुमंत्र अंदर प्रवेश करने में डर रहे हैं। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। अंत में असमंजस छोड़ वे उस महल में गए जहां कैकेयी और महाराज थे। दशरथ जी की दशा देख वे स्तब्ध रह गए। मुखमंडल का रंग उड़ा हुआ, सोच से व्याकुल राजा यूं पड़े थे जैसे जल से उखड़कर कमल धरती पर मुरझाया पड़ा हो। सुमंत्र को कुछ पूछते न बन पड़ा। तब कैकेयी ने अशुभ संदेश सुनाया कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया किंतु इसका भेद नहीं बताते। तुम राम को जल्दी बुला लाओ, तब समाचार पूछना। किसी कुचक्र की आशंका से ग्रस्त सुमंत्र श्री राम के महल की ओर चले।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. संसदा करविषयकानां तथा अन्येषां विधीनां संशोधनविधेयकं 20-26 इति पारितम्. राज्यसभया ह्यः चर्चानन्तरम् एतत् लोकसभायै प्रत्यर्पितम्. लोकसभया एतत् विधेयकं पूर्वमेव पारितमासीत्. केन्द्रीयवित्तमन्त्री निर्मलासीतारमण विधेयकं प्रस्तुतवती आसीत्. विधेयकेन धनप्रदानपरिशोधनव्यवस्थाधिनियमः 27-2000 आयकराधिनियमः 20-25 तथा वित्ताधिनियमः 20-26 चेत्येषु संशोधनं प्रस्ताव्यते. अनेन अधिनियमेन आयकर संशोधन अध्यादेशः 20-26 इति प्रभावहीनः भविष्यति, यः अस्य वर्षस्य जून मासस्य 5 दिनाङ्के प्रख्यापितः आसीत्. चर्चायाः प्रत्युत्तरं ददति केन्द्रीयवित्तमन्त्री अवदत् यत् विधेयकस्य उद्देश्यं भारतस्य विनिर्माण परितन्त्रस्य सुदृढीकरणम्, अतिरिक्तनिवेशस्य आकर्षणम्, आजीविकायाः सृजनं तथा विनिर्माणगतिविधीनां प्रोत्साहनं वर्तते. सा अवदत् यत् द्वितीयः प्रमुखः संशोधनः भारतस्य निर्दिष्टेभ्यः दत्तांशकेन्द्रेभ्यः दत्तांशसेवाः प्राप्नुवतीनां वैदेशिकसंस्थानां करमुक्तिप्रदानेन अथ व्यवसायसञ्चालनस्य च सुगमतायाः वर्धनेन सम्बन्धितः अस्ति. मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् विधेयकेन UPI इति प्रयोक्तृभ्यः कश्चन करः उत वा व्यवहारशुल्कं न आरोप्यते. संसदा बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयकं 20-26 अपि पारितम्. राज्यसभया तत् ह्यः अनुमोदितम् आसीत्, एवञ्च लोकसभया तत् पूर्वमेव पारितमासीत्. प्रशासनेन 11 नूतनानि अन्ताराष्ट्रियपत्तनानि अधिसूचितानि, येन ई वीजा धारकानां वैदेशिकनागरिकाणां भारतप्रवेशः सुलभः भविष्यति. गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् एतेषु 9 भूपत्तनानि 2 च विमानपत्तने सम्मिलिते स्तः. एतेषु भोपालस्य तिरुपतेः च विमानपत्तने तथा अटारी अगरतला इत्येतयोः भूपत्तनानि सम्मिलितानि सन्ति. मन्त्रालयेनोक्तं यत् नूतनानां पत्तनानां समावेशेन ई वीजा इत्येतस्य उपयोगिता आकर्षणञ्च अधिकं वर्धिष्यते. मन्त्रालयानुसारं भारतं प्रायः 95% यावत् ई वीजा आवेदनानि 2 सप्ततिहोरातः न्यूनसमये निस्तारयति. नूतनपत्तनानां समावेशेन ई वीजाधारकाणां वैदेशिकनागरिकाणां प्रवेशाय अनुमतानां अन्ताराष्ट्रियपत्तनानां संख्या आहत्य 88 जाता. एतेषु 37 विमानपत्तनानि, 38 सामुद्रिकपत्तनानि तथा 13 भूपत्तनानि च सम्मिलितानि सन्ति. वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अवदत् यत् प्रशासकीय ई मार्केट प्लेस जेम इतीदम् उच्चगुणवत्तायुक्तस्य उचितमूल्येन उचितसमये उचितोत्पादस्य क्रयणं प्रतिबिम्बयति. नवदिल्ल्यां जेम इत्यस्य 10 वर्षाणां पूर्त्युत्सवस्य अवसरे मन्त्री उक्तवान्. श्रीगोयलः स्मारितं यत् जेम इत्यस्य प्रवर्तनात् प्राक् सार्वजनिकधनस्य दुरुपयोगः भवति स्म, सुशासनस्य अभावः च आसीत्. श्रीगोयलः अवदत् यत् संचितरूपेण जेम इत्यनेन पटलेन 3 कोट्यधिकानाम् आदेशानां माध्यमेन 20 लक्षकोटिरूप्यकाणां वस्तूनां सेवानाञ्च क्रयणे साहाय्यं कृतम्. सः प्रतिपादितवान् यत् प्रथमाष्टवर्षेषु 10 लक्षकोटिरूप्यकाणां क्रयणं जातं, तदनन्तरं 10 कोटिरूप्यकाणां क्रयणं केवलं वर्षद्वयोः एव अभवत् इति. भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य हिमाचलप्रदेशे पूर्व राजस्थाने च अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णपरा संचेतना प्रख्यापिता. ऋतुविभागानुसारेण अद्य अरुणाचलप्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गांगीय पश्चिमबंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, नवदिल्ली इत्येतेषां स्थलानां कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टिः सम्भाव्यते. इति वार्ताः.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दे ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर सही गुणवत्ता के सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डेला एस्प्रियेला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। रविवार को शुरू हुई प्रतियोगिता 14 अगस्त तक चलेगी। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज़ रेड बाय शगुन चोपड़ा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स और DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका का, गार्गी भट्टाचार्य जी द्वारा भजन गाए हुए आपने सुने, जिसमें कबीरदास जी की रचना थी और मीराबाई की रचना थी, और सहयोगी कलाकार थे सरोद पर दानिश असलम, बांसुरी वादन पर विनय प्रसन्ना, तबले पर पशुपति नाथ मिश्रा और हारमोनियम पर संगति थी नफीस खान जी ने। और अब वक्त हुआ है आपकी पसंद कार्यक्रम का। जी हाँ, आप इंतज़ार कर रहे होंगे अपनी पसंद के कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुरुआत करते हैं अपनी खूबसूरत से इस प्रोग्राम की।

कहते हैं ना, कुछ मौसम सिर्फ मौसम नहीं होते, वो अपने ढेर सारे अपने साथ लाए हुई यादें लेकर आते हैं। सावन भी कुछ ऐसा ही है। सावन कुछ ऐसा नहीं बल्कि बारिश की पहली बूंद पड़ते ही बचपन की याद आ जाती है, और खूबसूरत सावन का मौसम हमें खूब ढेर सारी यादों के साथ लेकर अपने साथ हमें भी घुमाता और फिर आता है। जी हाँ, क्योंकि सावन होता ही ऐसा है, और आज हमारा कार्यक्रम भी सावन पर स्पेशल है।

दोस्तों, सावन का महीना आते ही जैसे मौसम ही नहीं, हमारा मन भी बदल जाता है। आसमान पर छाए काले काले बादल, मिट्टी से आती सांधी सांधी खुशबू और पेड़ों पर झूले झूलते हुए और बारिश की बूंदों की रिमझिम, सावन अपने साथ एक अलग ही जादू लेकर आता है।

रन को भी भिगो देती है। और तपती गर्मी के बाद जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने हरे रंग की चादर ओढ़ ली है और साथ में पेड़ पौधे खिल जाते हैं, खेतों में छाई हरियाली और भी खूबसूरत लगती है और वातावरण में एक नई ताजगी आ जाती है और खुशबू और प्यारी हो जाती है।

आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग सिमरन कौर के साथ, और बात कर रहे हैं हम आज सावन स्पेशल खास कार्यक्रम की। क्योंकि सावन हमें और एक खूबसूरत बात सिखाता है, रुकना, महसूस करना। आज की भागदौड़ जिंदगी में अक्सर हम छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सावन कहता है कि कभी बारिश को महसूस कीजिए, मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर उतरने दीजिए, पेड़ों की हरियाली को देखिए और अपने पुराने किसी खूबसूरत पल को याद करके फिर से मुस्कुरा दीजिए।

और कभी कभी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए बड़ी वजहों की ज़रूरत नहीं होती। बारिश की कुछ बूंदें और खूबसूरत सा पसंदीदा गाना, खिड़की से दिखता और भीगा हुआ आसमान, अपनों के साथ बिताया हुआ थोड़ा सा वक्त, और बस यही जिंदगी की असली खूबसूरती होती है। तो इस बार क्या है कि बारिश को सिर्फ छतरी के नीचे मत रखिए, कम से कम थोड़ा रुकिए, मुस्कुराइए, प्रकृति को महसूस कीजिए और उन लोगों को याद कीजिए जिनके साथ बारिश की कोई खूबसूरत याद जुड़ी।

और सावन की बात हो तो फिर कैसा लगता है कि झूलों का जिक्र ना हो, पेड़ों पर पड़ी डालियों पर झूले, बैठकर गुनगुनाते गीत, सहेलियों की हंसी और हाथों में सजी मेहंदी, सावन की हरियाली, तीज, फूलों की परंपरा और संस्कृति त्योहारों को और भी खूबसूरत बना देती है।

और सावन की बात कभी कभी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए कई वजहों की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल सही, क्योंकि सावन सिर्फ आसमान में नहीं बरसता, बल्कि सावन यादों में बरसता है, रिश्तों में बरसता है और दिल में किसी कोने में छुपी खुशियों को फिर से जगा देता है और हरा भरा कर देता है।

और आप सभी को सावन की रिमझिम फुहारों की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अगली बार फिर हाजिर हो जाऊंगी किसी और खास कार्यक्रम के साथ। जी हाँ, अपनी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PMSuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
6: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
5: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
7: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
8: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में BJP ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और

0: परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
2: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
1: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोतो से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
4: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
5: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोरांबा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
1: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हुर्मुस जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers. Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendranath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand Band today over lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under 23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the Money Bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system would remain free for consumers. The Finance Minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman also said that the government doesn't intend to impose any MDR charges on small merchants as they remain central to UPI's inclusive growth.
8: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
7: The government has notified 11 more international ports enabling foreign nationals holding e-visas to enter India through these designated points. The new additions include 9 land ports and 2 airports. With this, the total number of international ports facilitating entry of e-visa holders has risen to 88. A report.
9: The Home Ministry said the newly notified points include Bhopal and Tirupati airports and line land ports at Agartala, Atari, Daranga, Gede, Gojatanga, Haridaspur, Jaigaon, Dwaki and More. The Ministry said the move will further enhance the attractiveness and utility of the e-visa facility for international travellers. Around 95% of e-visa applications are processed in less than 72 hours. Introduced in 2014 for nationals of 43 countries, the e-visa facility has now been extended to citizens of 172 countries. It is currently available under 17 subcategories, including tourist, business, medical, student, transit, cruise and mountaineering visas. The ministry said India now issues roughly 78% of its visas electronically. Ishani Yadav, Akashvani News, Delhi.
7: Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 and the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with consideration and passing in the Lok Sabha today. Mr. Shah will move a motion for consideration of the bill seeking to alter the name of the state of Kerala. He will also move the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, which seeks to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. Rajya Sabha is scheduled to take up the Tribunals Reforms Bill 2026 for consideration and passing. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal will move the bill. The bill aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. The legislation also proposes to establish a National Tribunals Commission. Jharkhand student protest leader Devendranath Mahato has been hospitalized after his health deteriorated while taking part in the student-led assembly march in Ranchi yesterday. More from our correspondent.
0: The assembly Girao, which continued for nearly 10 hours yesterday, saw protesters reaching the vicinity of gate number 1. Police used water cannons, tear gas and lathi charge to clear the area. Student protest leader Devendranath Mehto, who has been on a hunger strike for the past 9 days, was admitted to Ranchi Sadar Hospital after his health deteriorated during the assembly protest. Doctors are monitoring his condition and have placed him on oxygen support. The BJP has called for a statewide bund today, alleging excessive use of force against protesting students and reiterating its demand for a CBI inquiry into the alleged examination irregularities. Ranchi Deputy Commissioner Manjunath Bhajantri appealed to people to observe today's bund peacefully and warned that appropriate action would be taken against anyone attempting to disturb law and order or incite violence. The administration has increased security arrangements at key locations in Ranchi and appealed to all sections of society to maintain peace and cooperate with the police and district administration. Mavish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
7: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. At least 132 people were killed following a powerful 7.4 magnitude earthquake hits Western Colombia yesterday. More than 570 others have been injured. According to U.S. Geological Survey, the epicenter of the quake was near San Jose del Palmar in the Chocó region, about 400 kilometers west of the capital, Bogotá. The quake damaged hundreds of buildings and trapped several people under debris. Rescue teams and local residents searched through the rubble for survivors. Colombian President Abelardo Espriella has declared an emergency to speed up funding for relief and recovery operations. The tremors were also felt in neighboring Ecuador and Panama, though no major damage was reported there. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for Himachal Pradesh and East Rajasthan for heavy to very heavy rainfall today. According to IMD, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh, Gangetic West Bengal, Gujarat, Haryana, Chandigarh and Delhi will experience heavy rainfall at isolated places today. Rain has been occurring intermittently across most parts of Himachal Pradesh since last night. The Meteorological Centre Shimla has issued a warning of heavy rainfall in mainly 9 districts of the state during the next 24 hours. A report.
3: Continuous rainfall across Himachal Pradesh has affected normal life. As many as 106 roads remain blocked due to landslides at several places, while 66 transformers and 19 drinking water supply schemes have also been affected. Concerned departmental teams are working to restore these essential services at the earliest. Meanwhile, the Meteorological Center Shimla has issued an orange alert for rainfall in 3 districts, Kangra, Sirmaur and Mandi, during the next 24 hours. A yellow alert for heavy rainfall has also been issued for 6 other districts, Una, Bilaspur, Hamirpur, Chamba, Shimla and Solan. The administration has urged people to exercise caution in view of the possibility of heavy rainfall, stay away from rivers and streams and landslide prone areas and avoid unnecessary travel. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
7: In Uttar Pradesh, programs related to the Har Ghar Tiranga campaign will be organized with enthusiasm in all madrasas across the state. More from our correspondent.
4: Minister for Minority Welfare Danish Ansari has directed that students and youth studying in madrasas are to be encouraged to participate in the campaign. He said that programs involving the hoisting of the national flag, singing of national anthem, patriotic activities and awareness initiatives highlighting the contributions of great freedom fighters will also be organized in madrasas of a state. Yesterday, Chief Minister Yogi Adityanath led the Tiranga Yatra in Gorakhpur district. He said that Har Ghar Tiranga campaign is a tribute to the sacrifices of freedom fighters and urged people to display the national flag at their homes with pride and respect. The nearly 2.5 kilometer long yatra started from the Nagar Nigam premises to railway station chalk, with the CM undertaking the Padyatra, carrying the tricolor in his hand with the sentiment of nation first. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
7: A massive wave of devotion has swept through Haridwar during the Kanwar Yatra. By yesterday evening, over 4,43,78,000 devotees had departed Haridwar carrying holy Ganga water for their respective destinations. Today, on the occasion of Savan Shivratri, a large number of devotees are offering water to Lord Shiv, marking the conclusion of the Kanwar Yatra. A report.
10: On the 12th day of the Kanwar Mela, 63,60,000 devotees departed Haridwar yesterday carrying holy Ganga water for their destination. Haridwar is witnessing a heavy rush of Kanwariyas today on the occasion of Savan Shivratri. The city is witnessing a strong presence of dark Kanwariyas. Security, traffic, health and sanitation arrangements are being closely monitored at various bathing ghats, Kanwar routes and sensitive locations to ensure a safe and orderly Kanwar Yatra. Meanwhile, in the state capital, Dehradun, traffic has been diverted at several places due to the movement of a large number of Shiv devotees on the occasion of Savan Shivratri. The devotees who

0: है। तलबा पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद की अपील की है। मगरबी कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के जलजले में कम से कम 132 अफराद हलाक हो गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश और मशरकी राजस्थान में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और नाइजीरिया के शहर लागोस में मुनाकदा 23 साल की उम्र तक की दौलत मुश्तरका फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 4 तमगों समेत कुल 17 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने टैक्सेशन और दीगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने बिल पर बहस के बाद इसे लोकसभा को वापस भेज दिया था। लोकसभा ने इस बिल को पहले ही मंजूर कर लिया था, जिसके बाद इसे बहस के लिए राज्यसभा भेजा गया था। चूंकि ये एक मालियाती बिल है, इसलिए राज्यसभा इसकी दफात में सिर्फ सिफारिशात कर सकती है और इसे लोकसभा को वापस भेज सकती है। लोकसभा इन सिफारिशात को कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार रखती है। राज्यसभा में बिल पर बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने वाजे किया कि इस कानून के जरिए यूपीआई पर कोई टैक्स आयद नहीं किया जा रहा है और डिजिटल अदायगी का निज़ाम सार्फीन के लिए बदस्तूर मुफ्त रहेगा। वजीर खजाना ने बताया कि यूपीआई से मुतालिक तरमीम सिर्फ एक कानूनी इल्तिज़ाम फराहम करती है और इसके जरिए खुद सार्फीन पर कोई टैक्स या ट्रांजेक्शन चार्ज आयद नहीं किया गया है। मोहतरमा सीतारमन ने मजीद कहा कि हुकूमत का छोटे ताजरों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस आयद करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि छोटे ताजर यूपीआई की जामे और सभी की शमूलियत वाली तरक्की में मरकजी हैसियत रखते हैं। हुकूमत ने ई वीज़ा रखने वाले गैर मुल्की शहरियों को भारत में दाखिल होने की इजाज़त देने की खातिर मजीद 11 बैनुल-अक़वामी बंदरगाहों को नोटिफाई किया है। इन नए मकामात में 9 ज़मीनी बंदरगाहें और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इस इजाफे के साथ ई वीज़ा रखने वाले अफराद के दाखिले की सहूलत फराहम करने वाली बैनुल-अक़वामी बंदरगाहों की मजमू तादाद 88 हो गई है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वजारत दाखिला ने कहा कि नए नोटिफाई किए गए मकामात में भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और 9 ज़मीनी पोर्ट अगरतला अटारी दारंगा गेड़े घोजाडांगा हरिदासपुर जयगांव दाऊकी और मोरे शामिल हैं। वजारत ने कहा कि इस इकदाम से बैन अलावी मुसाफिरों में ई वीज़ा की सहूलत की मकबूलियत और इसकी इफादियत में मजीद इजाफा होगा। तकरीबन 95% ई वीज़ा दरख्वास्तों पर 72 घंटे से भी कम वक्त में कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाती है। 2014 में 43 मुल्कों के शहरियों के लिए शुरू की गई ई वीज़ा सहूलत को अब 172 मुल्कों के शहरियों तक तौसी दे दी गई है। फिलहाल ये सहूलत 17 ज़ेरे ज़ुमरों के तहत दस्तियाब है, जिनमें सियाहती, कारोबारी, तिब्बी, तलबा, ट्रांज़िट, क्रूज़ और कोह पैमाई के वीज़े शामिल हैं। वजारत ने बताया कि भारत अब तकरीबन 78% वीज़े इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी करता है। नई दिल्ली से ईशान यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज लोकसभा में केरला का नाम तब्दील करने से मुतालिक बिल 2026 और कौमी कोऑपरेटिव तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 को गौर खोज और मंजूरी के लिए पेश करेंगे, जिसका मकसद कौमी कोऑपरेटिव तरक्याती कॉरपोरेशन एक्ट 1962 में मजीद तरमीम करना है। उधर राज्यसभा में आज ट्रिब्यूनल्स इस्लाहात बिल 2026 को गौर खोज और मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। कानून और इंसाफ के वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल ये बिल पेश करेंगे। इस बिल का मकसद मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स में चेयरपर्सन्स और अराकीन की अहलियत, तकर्रुरी और सर्विस की मुद्दत के साथ साथ ट्राइब्यूनल्स की इंतजामिया और कामकाज में कारकर्दगी, आज़ादी, शफाफियत और यकसानियत को बेहतर बनाना है। इस कानून में कौमी ट्रिब्यूनल्स कमीशन के क़याम की तजवीज़ भी दी गई है। झारखंड में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ तलबा का एहतजाज कल तकरीबन 10 घंटे तक जारी रहा। बीजेपी ने कल असेंबली घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आज रियासत भर में बंद की अपील की है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: कल तकरीबन 10 घंटे तक जारी रहने वाले असेंबली घेराव के दौरान मुजाहिरीन असेंबली के गेट नंबर 1 के करीब पहुंच गए। इलाके को खाली कराने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। तलबा के एहतजाज के लीडर देवेंद्र नाथ महतो, जो गुज़िश्ता 9 दिन से भूख हड़ताल पर है। असेंबली एहतजाज के दौरान तबीयत खराब होने के बाद रांची के सदर अस्पताल में दाखिल कराए गए। डॉक्टरों के जानिब से इनकी सेहत की देखभाल की जा रही है और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। बीजेपी ने एहतजाज करने वाले तलबा पर ज़रूरत से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल के खिलाफ आज रियासत भर में बंद की अपील की है और इम्तहानात में मुबैना बेजाबतगियों की सीबीआई जांच के अपने मुतालबे को दोहराया है। रांची के डिप्टी कमिश्नर मंजुनाथ भजंतरी ने लोगों से अपील की है कि वो आज का बंद पुरअमन तरीके से करें। उन्होंने खबरदार किया है कि अमन और आमान में खलल डालने या तशद्दुद को भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया ने रांची के अहम मकामात पर सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त कर दिए हैं और मुआशरे के तमाम तबकात से अमन बरकरार रखने और पुलिस और ज़िले इंतजामिया के साथ तआवुन करने की अपील की है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोलंबिया के मगरबी खित्ते में कल 7.4 शिद्दत के जलजले में कम 132 अफराद की मौत हो गई जबकि 570 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस जलजले का मरकज चोको खित्ते में सैनजोस डेल पाल्मर के करीब वाक़ था जो राजधानी बोगोटा से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर मगरब में वाक़ है। इस जलजले से सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुँचा और कई लोग मलबे के नीचे दब गए। कोलंबिया के सदर एबेलार्डो डेला एस्प्रियला ने जलजले के बाद बहाली की कार्रवाइयों के लिए माली मदद की फराहमी में तेज़ी लाने की खातिर इमरजेंसी का ऐलान किया है। इतला है कि मुल्क भर में 20 से ज़्यादा म्यूनसिपल्टियाँ जलजले से मुतासिर हुई हैं। पेरेरा, केबडो, काली और मनीजालेज शहरों को जलजले से नुकसान पहुँचा है। कोलंबिया के पड़ोसी ममालिक इक्वाडोर और पनामा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए अगरचे वहाँ किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज हिमाचल प्रदेश और मशरक़ी राजस्थान में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गंगाई, मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के दूर दराज इलाकों में शदीद बारिश होगी। इसी तरह की सूरत हाल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान में रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के दौरान मगरबी हिमालयी खित्ते के दूरदराज इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में कल रात से वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। शिमला के मौसमियाती मरकज़ ने अगले 24 घंटे के दौरान रियासत के 9 ज़िलों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पूरे हिमाचल प्रदेश में मुसलसल बारिश की वजह से मामूल की ज़िंदगी मुतासिर हुई है। कई मकामात पर तोदे गिरने से तकरीबन 106 सड़कें बंद हैं जबकि 66 ट्रांसफार्मर्स और 19 पीने के पानी की सप्लाई की स्कीमें भी मुतासिर हुई हैं। शिमला के मौसमियाती मरकज़ ने अगले 24 घंटे के दौरान 3 ज़िलों कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में बारिश के ताल्लुक से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 6 दीगर ज़िलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला और सोलन में भी शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इंतजामिया ने लोगों पर जोर दिया है कि वो शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र मोहतात रहें और नदियों, नालों और लैंडस्लाइड के ख़तरे वाले इलाकों से दूर रहें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद।
0: उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा मुहिम से मुतालिक प्रोग्राम रियासत के तमाम मदरसों में जोश व खरोश के साथ मुनक़िद किए जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
4: अक़लियती महदूद के वजीर दानिश अंसारी ने हिदायत दी है कि मदरसों में पढ़ने वाले तलबा और नौजवानों को इस मुहिम में शिरकत करने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जाए। उन्होंने कहा कि रियासत के मदरसों में कौमी परचम फहराने, कौमी तराना गाने, हुबुल वतनी और अजीम मुजाहिदीन आज़ादी के तावुन से जुड़ी बेदारी के प्रोग्राम का इनेकाद भी किया जाए। कल वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा की क़यादत की। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत है और लोगों से अपने घरों में फक्र के साथ कौमी परचम लहराने की गुजारिश की। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
0: सावन शिवरात्रि के मौके पर بڑی تعداد میں عقیدت مند آج کانوڑ یاترا کے اختتام پر بھگوان شیو کو جل پیش کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: کانوڑ میلے کے 12 دن کل 63,60,000 عقیدت مند ہریدوار سے پوتر گنگا جل لے کر روانہ ہوئے۔ ہریدوار میں ڈاک کانوڑ کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اس یاترا کو محفوظ تر بنانے کی خاطر سنان کے بڑے گھاٹوں، کانوڑ یاترا کے راستوں اور حساس مقامات پر سیکیورٹی، ٹریفک، صحت اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا گہرائی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ راجدھانی دہرادون میں مختلف مقامات پر کانوڑیوں کی آمد و رفت کے راستوں میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہریدوار سے پوتر گنگا جل

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। गायन कलाकार थे भीमप्पा, भजनांत्री और एहसान, और राग था नच भैरव। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।
1: विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, बदलती जीवन शैली, बढ़ती उम्र, खेलकूद के दौरान होने वाली चोटें, सड़क दुर्घटनाएं और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं पहले से कहीं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। लेकिन मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और नित नई और आसान तकनीक का विकास हो रहा है। आधुनिक तकनीक ने हमारे जीवन को ज्यादा प्रभावी और आसान बनाया है और रिकवरी का समय भी कम हो गया है। इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राजेश प्रसाद गुप्ता जी को। आप ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
2: यहाँ बुलाने के लिए नमस्कार और धन्यवाद आपको।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक की बात होती है तो हड्डियों के टूटने की बात आती है, चोटें लगने की बात होती है, इंजुरी की बात होती है, लेकिन ये जो समस्याएं हैं आज समय के साथ में कुछ ज्यादा देखने को मिल रही हैं, ऐसा क्यों?
2: हड्डी टूटना आजकल ज्यादा ओल्ड एज में खास करके हम ज्यादा देखते हैं, क्योंकि इसमें हड्डी जो होता है कमजोर हो जाता है एज के साथ में, खास करके फीमेल वगैरह में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हड्डी कमजोर हो जाती है। और हड्डी जो है इसमें जैसे 30 एज के बाद हड्डी बनता कम है और टूटना ज्यादा शुरू होता है। टूटना मीन्स मतलब ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बोलते हैं, जिसमें बोन का फॉर्मेशन होता है, तो वो एज के साथ कम होते चलता है।
1: होता भी है तो धीरे धीरे होता है।
2: हाँ, धीरे धीरे होता है, ठीक है। और साथ में अगर कोई अल्कोहलिक हो, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, और कुछ पेशेंट जैसे आस्थमा वगैरह का हो जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह पे होते हैं, तो वैसे लोगों का हड्डी और कमजोर हो जाता है, तो उन लोगों में हड्डी टूटने की संभावना ज्यादा हो जाती है।
1: आपने एक बड़ी बात कही डॉक्टर साहब कि जो अल्कोहलिक हैं उनमें जो हड्डी के जो बोन का जो निर्माण होता है या फिर जो डेंसिटी होती है वो कुछ कम हो जाता है,
2: जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होता है जिससे कि बोन फॉर्मेशन होता है उसको वो रोकता है, तो उसके वजह से फिर हड्डी कमजोर होना शुरू हो जाता है।
1: तो आजकल जो नई तकनीक आ रही है तो इन समस्याओं को निपटने में कहां तक सक्षम है और कितनी जल्दी, कितना, किस प्रकार का प्रभावी है?
2: सबसे पहले तो पेशेंट्स को हम ये काउंसलिंग कर सकते हैं कि आप अल्कोहल नहीं लें, स्मोकिंग नहीं करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए आप। जैसे विटामिन डी का कमी होता है सब में आजकल, विटामिन डी में जैसे कि आजकल घर देखते हैं कि एसी में रहते हैं लोग, और उसके बाद बेसमेंट में जाते हैं गाड़ी में, वहां से फिर ऑफिस आते हैं, ऑफिस में आने के बाद फिर एसी में बंद रहते हैं, वहां पे सन एक्सपोजर्स बिल्कुल जीरो होता है, तो उसके वजह से भी हड्डी कमजोर होते हैं। और उसके बाद फिर कुछ लोग SPF सनस्क्रीन प्रोटेक्शन फैक्टर जिसको बोलते हैं 30-40% वो यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका अल्ट्रावायलेट रेज नहीं मिलता है, फिर उससे भी हड्डी कमजोर होती है। और तकनीक की बात जहां तक है तो ये डिपेंड करता है कि सही फ्रैक्चर किस लेवल का है। और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने का भी पहले उपाय होता है जिसमें कि हम बोन डेंसिटी डेक्सा बोलते हैं, डेक्सा स्कैन करते हैं, BMD करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कितना ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपीनिया है, किस लेवल का है। और फिर बहुत कुछ ब्लड टेस्ट करने के बाद कुछ एंटी रिजॉर्प्टिव मेडिसिन वगैरह आता है, जैसे बिसफॉस्फोनेट, उसमें टेरीपेराटाइड जैसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, डेनिसुमाब, ये सब, तो ये मेडिसिन देने से भी ओल्ड एज में और बोन फॉर्मेशन को बढ़ाता है और टूटने की प्रक्रिया को थोड़ा कम करता है, तो ये भी प्रॉपर इवेल्यूशन के बाद हम लोग देते हैं।
1: ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या होती है वो महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है, ऐसा क्यों?
2: क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, मेनोपॉज का जब कंडीशन आता है तो कुछ हार्मोन्स होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ाता है, बोन के फॉर्मेशन को कम करता है, उसकी वजह से महिलाओं में ज्यादा होता है। साथ में इसमें हम बोलते हैं कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के लिए, रनिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, इससे क्या होता है कि बोन का फॉर्मेशन को बढ़ाता है और आप उससे अपना हड्डी को मजबूत कर सकते हो।
1: बच्चों में जो बोन का जो फॉर्मेशन होता है बड़ी तेजी के साथ होता है, क्योंकि उम्र कम होती है, उनमें जो फॉर्मेशन है वो तेजी से होता है,
2: उसमें ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बोलेंगे तो ज्यादा होता है। ऑस्टियोब्लास्टिक मतलब बोन का फॉर्मेशन, और बोन का टूटना उसको मेडिकल टर्म में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बोलते हैं। 30-32 के एज तक ऑस्टियोब्लास्टिक ज्यादा होता है, ऑस्टियोक्लास्टिक कम होता है, लेकिन 30 के बाद, 34 के बाद बोला जाता है कि ऑस्टियोक्लास्टिक ज्यादा होता है, ऑस्टियोब्लास्टिक कम होता है, इसीलिए हमारा हड्डी धीरे धीरे कमजोर होते हैं। उससे पहले भी अगर आप जैसे बोलते हैं कि दूध पियो, कैल्शियम का रिच सोर्स लो, आप एक्सरसाइज करो, तो उससे फिर आप अपने हड्डी को मजबूत करते हैं ताकि फ्यूचर में आपका फ्रैक्चर नहीं हो और आपका हड्डी मजबूत रहे।
1: आजकल किस प्रकार की तकनीक स्पोर्ट्स इंजुरी को लेकर के आई है जिससे कि और ज्यादा आसान होगी?
2: देखिए, स्पोर्ट्स इंजुरीज की बात करें तो मोस्ट कॉमन नी में इंजुरी होता है, एंकल में होता है, शोल्डर में होता है, बैक पेन भी होता है,
1: किसी भी प्लेयर्स के लिए,
2: किसी भी प्लेयर्स में, और बहुत सारा स्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं उसके ऊपर भी। जैसे हम नी इंजुरीज की बात करते हैं, नी में सबसे ज्यादा ACL इंजुरी होता है, मेनिस्कस इंजुरी होता है, और साथ में वहाँ पे मीडियल कोलेक्टर लिगामेंट्स वगैरह का। इसमें जो हम सर्जरी करते हैं, सबसे पहले पेशेंट्स को तो हम इवेल्युएट करते हैं, तो उसमें MRI करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पहले किया हमने, फिर MRI किया, डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं।
1: इसमें भी तो उम्र मायने रखता है?
2: उम्र मायने रखता है, लेकिन ACL इंजरीज वगैरह किसी भी एज में हो सकता है, क्योंकि इसका बेसिकली एक तो जब आप स्पोर्ट्स करते हैं तो किस ढंग से खेलते हैं, आपका वहाँ पे कैसे मतलब लैंडिंग टेक्निक होता है, जैसे ACL इंजरीज यूजुअली होता है उसको वेलगस एबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन, यानी जब सर्फेस पे एक प्रॉपर ढंग से मतलब एक एबनॉर्मल ट्विस्टिंग होता है, नी का तब होता है। तो इसको हम डायग्नोसिस पहले कंफर्म किया, उसके बाद इसमें जो आजकल नया टेक्नोलॉजी या काफी इंडिया में डॉक्टर्स इसमें ट्रेंड हो चुके हैं, ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। ऑर्थोस्कोपिक मतलब की होल सर्जरी, और दूरबीन वाली सर्जरी भी लोग इसको बोलते हैं, जिसमें कि मात्र 8 mm का पोर्ट बनाते हैं, हम दो छेद बनाते हैं
1: माइक्रोस्कोपिक में,
2: माइक्रोस्कोपिक बोल सकते हैं, ऑर्थोस्कोपिक बोलते हैं। ऑर्थोस्कोपिक मतलब स्कोपिक मतलब व्यू, ऑर्थो मतलब ज्वाइंट्स, तो ज्वाइंट्स को देख रहे हैं उसको ऑर्थोस्कोपिक बोलते हैं, तो मेडिकल टर्म एक्जेक्टली ऑर्थोस्कोपिक। तो उसमें फिर देखते हैं कि ACL टियर है, तो उसमें सिर्फ 8 mm के पोर्ट से आप एक साइड से आप स्कोप डालते हैं, दूसरा साइड से इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, और फिर इसमें हम ग्राफ्ट निकालते हैं, हैमस्ट्रिंग्स ग्राफ्ट, उसको वो बेसिकली एक टेंडन होता है, उसको फोल्ड करके और उसका निकालने का एक टेक्निक होता है, फिर हम उसको उसमें फिक्स करते हैं, और इससे रिकवरी काफी फास्ट होता है। मेनिस्कस इंजरीज भी हम वैसे ही डील करते हैं, इसमें हमारे पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है जो मतलब छोटा सा मतलब 8 mm के पोर्ट से उसमें इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, फिर उससे हम मेनिस्कस को रिपेयर कर देते हैं, और मेनिस्कस अगर रिपेयर होने लायक नहीं रहता तो मेनिसेक्टोमी करते हैं।
1: ये बच्चों में भी किया जा सकता है या फिर बड़ों में या फिर किसी में भी किया जा सकता है?
2: बच्चों में भी किया जा सकता है, उसके लिए वहाँ पे बच्चों में जो होता है ग्रोथ प्लेट होता है। ग्रोथ प्लेट का मतलब क्या होता है, जहाँ से हमारा आपका वृद्धि होता है जब तक हम 21-22 साल के होते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले MRI और CT स्कैन या एक्सरे में देखते हैं कि बोन फ्यूज हुआ है कि नहीं, तो उसमें भी ऑर्थोस्कोपिक करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन उसमें हमें उस ग्रोथ पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि उससे फ्यूचर में उनका ग्रोथ रुक सकता है या डिफॉर्मिटी डेवलप कर सकता है उस पर्टिकुलर ज्वाइंट का, तो उसको स्पेशल टेक्निक से किया जाता है, मतलब उसको स्पेयर करते हुए उस पार्ट को तब करते हैं ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी, लेकिन करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कई बार जहाँ पर बच्चों की बात आ रही है तो कई बार देखा गया है कि बच्चे जो जन्म से जो कुछ ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो उनके लिए आप किस प्रकार की सर्जरी उनमें भी जरूरी हो जाता है या फिर मेडिसिन वगैरह से ठीक?
2: देखिए, जन्म से अगर बोलें तो बाय बर्थ बोल सकते हैं,
1: बाय बर्थ,
2: तो उसमें डिफॉर्मिटी कितना है उसका प्रॉपर असेसमेंट करते हैं हम, और फिर उसमें कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम सर्जरी करके, या फिर सर्जरी नहीं कर सकते तो फिजियोथेरेपी वगैरह करके, कुछ जैसे ऑर्थोटिक्स वगैरह होता है, अप्लायंसेज वगैरह, उससे उसको मतलब अच्छा एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए, ऐसा कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है डॉक्टर साहब इसमें ऑर्थोपेडिक में?
2: फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उससे मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं आप, रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है, उससे रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, जैसे ACL सर्जरी किया किसी का ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी के बाद, तो उसमें एक पर्टिकुलर वीक में कितना रेंज ऑफ मोशन लाना है, स्ट्रेंथ कितना बढ़ाना है, जैसे कि हैमस्ट्रिंग्स मसल्स, क्वाड्रिसेप्स मसल्स, और आपको ग्लूटियल मसल्स, कोर स्टेबिलिटी, तो ये सब एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू ही होता है, और अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं कराते हैं तो मसल्स वेस्ट होता है, नी में स्टिफनेस डेवलप कर जाता है, तो रिकवरी बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि देखिए शरीर बोन और मसल्स से बना होता है, बोन एक ढांचा होता है, मसल्स आपको ताकत प्रोवाइड करता है, जब मसल्स मजबूत होता है तो ज्वाइंट के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है, इसीलिए फिजियोथेरेपी से मसल्स स्ट्रॉन्ग करना जरूरी होता है।
1: स्पोर्ट्स इंजरी में आर्थोस्कोपी का क्या रोल होता है और इसमें कौन कौन सी तकनीक होती है?
2: आर्थोस्कोपी में जैसे हमने पहले अभी जस्ट डिस्कस किया था कि जो की होल सर्जरी होता है, दूरबीन वाली सर्जरी होती है, तो उससे जैसे कि नी का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, शोल्डर में जैसे सुने होंगे कि शोल्डर डिस्लोकेट करता है,
1: तो उसमें जो क्रिकेट प्लेयर्स को
2: तो शोल्डर डिस्लोकेट करता है, तो शोल्डर जब डिस्लोकेट करता है उसको बैंकार्ट लेजन बोलते हैं, और रोटेटर कप इंजरीज वगैरह होता है, और उसमें जैसे बैंकार्ट लेजन हुआ तो उसमें आर्थोस्कोपिक सर्जरी से, उसमें भी सिर्फ हम शोल्डर के अराउंड कुछ जैसे 8 mm का या 10 mm का मैक्सिमम बोल सकते हैं पोर्ट बनाते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा इंसिजन होता है, उससे फिर हम उसमें सर्जरी कर डालते हैं। शोल्डर सर्जरी अगर बैंकार्ट रिपेयर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट 3-4 months में रिकवर कर जाते हैं। अगर नी की बात करें हम ACL सर्जरीज का, तो पेशेंट चलना शुरू कर देते हैं 1-2 महीने में ही, लेकिन रनिंग जॉगिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए 6-9 months भी टाइम लगता है, अगेन डिपेंड करता है कि फिजियोथेरेपी कैसा हुआ, स्ट्रेंथ कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
1: क्या दोबारा एज यूजुअल वो स्पोर्ट्स खेल सकता है?
2: बिल्कुल खेल सकता है, अच्छा सर्जरी होना और प्रॉपर फिजियोथेरेपी के बाद बिल्कुल खेलते हैं।
1: डॉक्टर, ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी क्या होता है, इसमें किस प्रकार की तकनीक इस्तेमाल किया जाता है?
2: जैसे एक फ्रैक्चर में हम लोग मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी का यूज करते हैं,
1: फ्रैक्चर में
2: करते हैं, और आप आर्थ्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। तो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी में कैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, ओल्ड एज में फ्रैक्चर फीमर होता है, प्रॉक्सिमल फीमर का फ्रैक्चर होता है जो ट्रिवियल ट्रॉमा ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है, तो उसमें हम बड़ा सा रॉड डाल देते हैं, और जैसे फीमर का टिप ऑफ प्रोकेंटर बोलते हैं, वहां से लेकर के नी जॉइंट तक फीमर का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है उसमें आप देखेंगे तो इंसिजन जो होता है हार्डली मतलब 2.5 centimeters का मैक्सिमम, 2-3 inches डिसीजन होता है उससे ही कर देते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाता है कि इंजरी होने के बाद में पैरों में या हाथों में कोई छोटी सी प्लेट डाल देते हैं या फिर रॉड डाल देते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा, तो इसे कितने दिनों के बाद में निकाल देना चाहिए, और अगर नहीं निकालते हैं तो इससे क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं आगे चल के?
2: जैसे जब हम इम्प्लांट लगाते हैं कोई भी रॉड, प्लेट, स्क्रू वगैरह, तो इसमें 1.5 से 2 साल के बाद निकाल सकते हैं
1: जी।
2: और इंडिकेशंस जो निकालने का होता है, अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो तो, इन्फेक्शंस वगैरह हो गया तो, और कभी कोई पेशेंट्स खुद बोले कि नहीं हमको निकलवाना है तो, और मैं अपने पेशेंट्स को यूजुअली बोलता हूँ कि 1.5-2 साल के बाद निकाल लेने, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी लगता है बाद में कि हमने क्यों नहीं निकलवाया। अगर आप 1.5-2 साल के बाद नहीं निकालते हैं तो बाद में क्या होता है कि उस प्लेट को निकालना मुश्किल हो जाता है, जैसे 3-4 साल हो गया लगभग, क्योंकि प्लेट के ऊपर बोन जमा हो जाता है,
1: बोन जमा हो जाता है और मसल्स भी आ जाते हैं।
2: मसल्स को तो हम स्प्लिट करके बगल में कर देते हैं, लेकिन बोन जमा हो जाता है। साथ में स्क्रू और प्लेट के बीच में कोल्ड वेल्डिंग बोल सकते हैं, जो स्क्रू उससे निकलता ही नहीं है।
1: अच्छा,
2: जैसे रिसेंटली भी मैंने अभी 8-10 ईयर्स मतलब पहले सर्जरी हुआ था, ह्यूमरस का फ्रैक्चर था, तो उसका मैंने प्लेट निकाला, लेकिन बहुत मुश्किल हुई निकालने में, क्योंकि आप जब निकालते हैं तो उस वक्त फिर दोबारा फ्रैक्चर होने की भी संभावना होती है। देखिए, जब हम प्लेट और नेल और स्क्रू लगाते हैं, जस्ट हम फ्रैक्चर को अपने जगह पे लगाने के लिए लगाते हैं, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डी को जोड़ता नहीं है, उसका एक टाइम फ्रेम होता है जुड़ने का, जो 6 वीक में जुड़ जाता है और 1.5 से 2 साल में हड्डी मजबूत हो जाता है, फिर उसका प्लेट स्क्रू रॉड का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, तो हम उसको निकाल सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आजकल नी रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट की चर्चा काफी सुनते हैं, इसमें कितनी प्रगति हुई है, कहां तक प्रगति हुई?
2: नी रिप्लेसमेंट्स में काफी प्रगति हुआ है इंडिया में, पहले जो था और अभी भी कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट, इसमें कंप्यूटर असिस्टेड नेविगेशन और आजकल रोबोटिक, उसका भी कंसेप्ट है, और रोबोटिक अभी जस्ट 4-5 साल से हो रहा है या 6 साल से बोल सकते हैं मैक्सिमम, तो रोबोटिक भी ठीक है, लेकिन इसमें इंसिजन का पूछते हैं बहुत पेशेंट्स कितना बड़ा रहता है, तो इंसिजन में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, उतना ही इंसिजन यूज करते हैं, और रोबोटिक कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट नहीं करता है, हार्डली 2 मिनट के लिए एक बोन का मतलब कट करता है, प्रॉपर बैलेंसिंग के लिए हेल्प करता है, तो अभी ये नया तकनीकी है, तो अभी देखना होगा फ्यूचर में कि इससे कितना कॉम्प्लिकेशन होता है और कितना बेटर है, लेकिन कुछ स्टडीज अभी आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि कॉम्प्लिकेशन इसमें रोबोटिक में हो रहा है, तो कन्वेंशनल भी अच्छा है, और इसके बारे में फ्यूचर में पता चलेगा
1: जी। डॉक्टर साहब, ऑर्थोपेडिक इंजरी जब हो जाता है तो हॉट थेरेपी एंड कोल्ड थेरेपी, इन दोनों का क्या रोल होता है?
2: देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये मैक्सिमम क्लिनिक्स में भी पूछते हैं, हॉस्पिटल्स में जब हम पेशेंट देखते हैं, तो देखिए जैसे किसी को चोट लगा, एक्यूट इंजरीज होता है वहाँ पे, तो एक्यूट इंजरीज में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स फटता है, ब्लड वेसल्स फटने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड उड़ जाता है, तो वो जाने से फिर वहाँ पे स्वेलिंग होता है, एडिमा होता है, तो वो दर्द को और बढ़ाता है, तो अगर आप उस वक्त हॉट वाटर फर्मेंटेशन करते हैं, मसाज करते हैं, कोई जेल वगैरह यूज करते हैं, तो वहां और ये ब्लड जाएगा और स्वेलिंग और दर्द को बढ़ाएगा, इसलिए जब चोट लगता है, एक्यूट कंडीशन हम 72 आवर्स कंसीडर करते हैं, लेकिन और मेरे ख्याल से ज्यादा 2-3 दिन और मान करके चलना चाहिए, जब आप बर्फ से सिकाई करते हैं उस वक्त, तो क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, यानी ब्लड वेसल्स, ब्लड वहां पे जाता नहीं है, तो उससे आपका स्वेलिंग कम होता है और एडिमा कम होता है, तो दर्द को कम करता है। और अगर कोई पुराना दर्द हो, जिसको हम क्रोनिक पेन बोलते हैं, नी पेन, बैक पेन वगैरह, तो उसमें गर्म पानी से

0: सेकाई करना चाहिए, मसाज करना चाहिए, कोई जेल वगैरह यूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जब ये करते हैं आप गर्म पानी सेकाई करते हैं तो वेसोडायलिटेशन होता है, तो ब्लड वहां पे और जाता है, तो उससे क्या होता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है और न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है, तो वो आपको उसमें हेल्प करता है। एक तीसरा चीज होता है कॉन्ट्रास्ट बाथ, जिसमें बोलते हैं 20 सेकेंड्स गर्म पानी में, 20 सेकेंड्स ठंडा पानी में। तो ये जैसे कि प्लांटर फेसिएटिस वगैरह का एक एग्जाम्पल जिसमें उसमें बोलते हैं पेशेंट्स को, तो उससे अगर वेसोकंस्ट्रिक्शन वेसोडायलिटेशन होता है वो पेशेंट्स को हेल्पफुल होता है, लेकिन ये कुछ करने से पहले डॉक्टर के एडवाइस से करना।
1: जी डॉक्टर, कई बार ये भी देखा जाता है कभी पैर मुड़ जाता है तो तुरंत ही समझ में नहीं आती क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे, क्या
0: देखिए ये दे आपने एग्जांपल दिया एंकल स्प्रेन, तो एंकल स्प्रेन इसको हम ग्रेड करते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, ट्विस्ट कितना हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एंकल स्प्रेन में क्या होता है, उस वक्त आपको आइस ही करना है,
1: आइस
0: करना है, मसाज नहीं करना है, गर्म पानी नहीं, कोई जेल वगैरह यूज नहीं करना है, तो उससे आपको उसमें हेल्प मिलेगा। और इसको फिर हम ग्रेड करते हैं 1, 2, 3। ग्रेड 1 का मतलब क्या होता है, आप लिगामेंट को कंपेयर कर सकते हैं एक रस्सी से जो दो बोन को बांध करके रखता है, तो ग्रेड 1 का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत ट्विस्ट होता है यानी लिगामेंट ऑलमोस्ट इंटैक्ट रहता है उसमें। ग्रेड 2 में ऑलमोस्ट 50% टेयर हो जाता है, उसमें दर्द और स्वेलिंग जल्दी डेवलप करता है। ग्रेड 3 का मतलब होता है कि काफी कंप्लीट टेयर हो गया लिगामेंट, तो ये क्लिनिकल असेसमेंट एक्सरे करके देखते हैं कि फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, उसमें कभी कभी फ्रैक्चर भी होता है, और फिर क्लिनिकली देखने के बाद असेस करते हैं, प्लास्टर मेडिसिन वगैरह देते हैं।
1: एक आखिरी प्रश्न यह है कि स्टेम सेल थेरेपी और पीआरपी ये क्या है।
0: पीआरपी में क्या करते हैं कि पेशेंट से ही ब्लड निकाल करके और उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, और सेंट्रीफ्यूग करने के बाद उसमें एक फ्लफी लेयर होता है, तो उसको हम निकाल करके फिर ज्वाइंट्स में इंजेक्ट करते हैं, या जैसे किसी को टेनिस एल्बो का नाम सुने होंगे, टेंडन इंजुरीज होता है, उसमें बहुत सारा ग्रोथ फैक्टर वगैरह होता है, तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि मतलब ये आपको हीलिंग में और ये प्रोटेक्ट करता है और इसको बढ़ाता है। स्टेम सेल थेरेपी भी ऑलमोस्ट सेम इंजुरीज में ही यूज करते हैं, जैसे टेंडन इंजुरीज वगैरह हो गया, या फिर नी रिप्लेसमेंट, इनफैक्ट मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी होता है उसमें भी यूज करते हैं। ये सब अभी अंडर स्टडी ही बोल सकते हैं, कुछ पेशेंट्स को इसमें बेनिफिट मिलता है, कुछ को नहीं भी मिलता है।
1: ये कुछ उम्र के अनुसार भी हो सकता है बेनिफिट मिल सकता होगा।
0: जैसे हम नी की अगर बात करें, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है, तो उसमें मैं रिकमेंड करता हूँ ग्रेड 2 ग्रेड 3 तक मतलब पीआरपी इंजेक्शन के लिए, क्योंकि ग्रेड 4 में फिर उसका हेल्पफुल नहीं होता है। लेकिन इससे आपको फायदा होगा नहीं होगा, नुकसान कोई नहीं होता है। जैसे पहले हम लोग स्टेरॉइड्स वगैरह ज्यादा यूज करते थे, तो स्टेरॉइड्स में नुकसान मतलब फायदा भी करता है लेकिन नुकसान होने की संभावना होता है, इसका एक पॉजिटिव बेनिफिट है कि आपको नुकसान नहीं होगा।
1: तो डॉक्टर, चलते चलते जिनको स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है या फिर ऑर्थोपेडिक की जो समस्या है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: स्पोर्ट्स वाले को मैं बोलना चाहूंगा कि प्रॉपर टेक्निक से खेलें, लैंडिंग टेक्निक वगैरह जैसे वो इंपॉर्टेंट है, अच्छा लाइफ स्टाइल, ये सब चीज़ें ध्यान दें।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और ऑर्थोपेडिक की जो समस्या है और स्पोर्ट्स इंजरी के विषय में जो समस्याएं हैं और जो निदान है उनके विषय में आपने इतनी विस्तार से जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला और यहाँ तक आए।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ पे बुलाया इस चीज के लिए।
1: और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 9:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवा नियुक्ति, प्रशासन तथा कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल विधेयक पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
2: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई MDR लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
1: सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 स्थल सीमा चौकियां और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला की स्थल सीमा चौकियाँ शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में स्वीकृति दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल उचित गुणवत्ता, उचित मूल्य और उचित समय पर सही उत्पाद की खरीद दर्शाता है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10वें स्थापना दिवस पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि जेम के आने से पहले सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे सुशासन की कमी थी। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक ऑर्डर से 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के सामान और सेवाओं की खरीद में सहायता मिली है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो को तबियत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर बताई है। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर श्री महतो 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: कांवड़ मेले के 12वें दिन कल 63,60,000 शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए। आज सावन शिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़ है। मुख्य रूप से डाक कांवड़ियों की आवाजाही से शहर शिवमय हो गया है। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रमुख स्थान घाटों, कांवड़ मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। मौसम विभाग ने राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों तक बहुत तेज वर्षा की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 and the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing in the Lok Sabha today. Mr. Shah will move a motion for consideration of the bill seeking to alter the name of the state of Kerala. He will also move the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, which seeks to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. Rajya Sabha is scheduled to take up the Tribunals Reforms Bill 2026 for consideration and passing. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal will move the bill. The NDA Parliamentary Party's weekly meeting Mangal Milan is underway at the Parliament House premises in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen and other NDA leaders waved Tiranga during the meeting. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system will remain free for consumers. The Finance Minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 10:10 और 20 सेकेंड। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

0: जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ आपकी दोस्त आरती गौर। कार्यक्रम लेकर आई हूँ आपकी फरमाइश। आज हवाओं में एक अलग ही ठंडक है, बारिश की बूंदों में एक अलग ही ताजगी है, और हर तरफ एक ही गूंज है हर हर महादेव की। क्यों? क्योंकि आज है सावन की शिवरात्रि, जिसकी मैं दे रही हूँ आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। सावन का महीना हो, रिमझिम बारिश हो, साथ में भोलेनाथ का दिन हो, तो भाई फिर तो मन अपने आप ही एक अलग ही रंग में रंग जाता है। तो कैसे जा रहे हैं आपके ये सावन के दिन, आप हमें जल्दी से मेल करके बताइए। मेल कहाँ पे करना है? ipradiodelhi@gmail.com पर। जी हाँ, यहाँ पर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज के दिन आपने महादेव से क्या मांगा, या सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करने गए थे। अगर आप बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं। वैसे मुझे पता है मेरे पास संदेश बहुत सारे आ चुके हैं, तो उन सारे संदेशों को लेने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बढ़ेंगे एक छोटे से अंतराल की तरफ।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों बढ़ते हैं आप सबके संदेशों की तरफ जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं इस मेल बॉक्स में। फरुखाबाद शाहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू चौरसिया, लल्ला पवन गौड़ और योगेंद्र नायक। इसके साथ ही बलकेश्वर कॉलोनी आगरा से श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित वीर और अबीर और साथ में नवाबगंज कानपुर से श्रीमती सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया और पीहू और दिया, ये सारे चौरसिया परिवार के सदस्य इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। इसके साथ ही अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी और पूजा तामुरिया।

0: का साथी राधिका प्रभा देवी तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर भी शामिल हैं।
1: सवालों का जवाब बनके तू आई सजनिया
2: हमारी ही विड़ा में।

श्रोताओं, ये संदेश हमारे पास आया है। लिखते हैं आरती जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ऑलवेज बी हैप्पी। कहते हैं, मैंने सुबह उठते ही भगवान का शुक्राना किया कि आज एक और दिन जीने का मौका दिया। ऐसा कहना है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और तमन्ना भाटिया का। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप आज के खूबसूरत दिन को देख पा रहे हैं, ये ऊपर वाले की ही कृपा है और उसके लिए धन्यवाद तो बनता है। वैसे भी बहुत कुछ भगवान ने हमें दिया है, शुक्राना करना तो बनता है, क्योंकि हमेशा हम भगवान के पास मांगने जाते हैं। कभी कभी उनका शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कुछ आपके पास ऐसा है जो शायद दूसरों के पास होगा भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये संदेश आया है पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, और ये अनस हैं, आयजा हैं और सरोज चौक से ये लिखने वाले हैं। इसके साथ ही अगले जो हमारे पास संदेश आया है, राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और गोटना जैन का मुल्लापुर दाखा से। साथ ही अगला संदेश हमारे पास आया है ये टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज,

रीता बजाज, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अगले जो श्रोता हैं वो है हमारे साथ 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता, शोभा, वंदना कुमारी मराठा, देविका चौधरी और लड्डू चौधरी, साथ में स्वाति और प्रज्ञा चौधरी भी हैं। और ये किसी भी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं तो देखिए, सावन का ये खूबसूरत सा महीना चल रहा है, बादल छाए हुए हैं, ठंड ठंडी हवाएं हैं और बारिश का ये मौसम है। और इस सावन के मौसम की एक खासियत और भी है, इसमें हम शंकर जी को तो याद करते हैं क्योंकि उन्हीं का ये महीना कहा जाता है, लेकिन इस मौसम को याद करने के लिए हम पहनते हैं हरा रंग, हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग के कपड़े, क्योंकि हरा रंग कहते हैं खुशहाली का होता है, हरियाली का होता है, और जहाँ हरियाली होती है वहाँ खुशहाली अपने आप चली आती है। तो आप सब भी अगर इस मौसम को और भी अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो अपने जो कपड़े हैं या अपना जो रहन सहन है उसमें थोड़ा हरा रंग भी शामिल कर दीजिए। सच बताएंगे आपको बड़ी खुशी मिलेगी, जैसे यहाँ पर खुशी मिल रही है इस गीत को सुनने के बाद।

गोरी है कलाइया मिला दू तुझे हरी हरी चूड़िया, गोरी है कलाइया मिला दू तुझे हरी

हाँ दोस्तों, हरी हरी चूड़ियाँ, हरे हरे से कपड़े और साथ ही लगे हों झूले, तो ये सावन और भी ज़्यादा प्यारा लगने लगता है। फिलहाल प्यारे लग रहे हैं आपके ये मेल। हमारे पास आया है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान, अरजान, अबान और समस्त अब्बासी परिवार के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अगला जो मेल हमारे पास है वो है लाजवाब कार्यक्रम चल रहा है, बेहतरीन गीत की पेशकश इनको लग रही है और ऐसा लिखना है जवाहर नगर दुर्ग से आरती कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े का। हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हैं वाइट फील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति पौरुष, ये कहते हैं आरती गौड़ जी नमस्कार। बेंगलुरु में दक्षिण के राज्यों में किसी भी मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक की व्यवस्था नहीं है। शिवलिंग मंदिर के अंदर है और वहाँ भक्तों का प्रवेश भी निषेध है। तो वैसे भी जो आपने ये सूचना हमको दी है, जो आपने बात बताई है, ये मेरे लिए बहुत नई है क्योंकि मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन मैं ये कहूँगी कि उन्हें जलाभिषेक की शायद ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि जब आसमान से खुद बारिश बरस रही हो और खुद उनका जलाभिषेक सावन के ज़रिए हो रहा हो और आप दिल से अगर उन्हें याद करेंगे तो आपको शायद मंदिर में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर ही आपको शिव नज़र आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये संदेश है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, ये हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने एक छोटी सी शिकायत भी लिखी है कि पिछले कई दिनों से माइक पे आवाज़ बराबर नहीं आ रही है। तो चलिए, अगर ऐसा है तो हम ध्यान देंगे कि आज आ रही है नहीं, ये आप हमें बताइए ताकि हमें भी पता चले कि हमारे श्रोताओं तक हमारी आवाज़ पहुँचती भी है नहीं। अगर कोई तकनीकी खराबी होगी तो हम ज़रूर उस पर ध्यान देंगे। ये हमारे पास जो अगला संदेश आया है वो है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी का। और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा था कि आज जो सावन का सोमवार है, और माफ़ कीजिएगा, सावन की शिवरात्रि है, उस पर आपने महादेव से क्या मांगा है। तो ये लिखते हैं, हम भगवान शिव का हर सुबह धन्यवाद मानते हैं कि उन्होंने हमें खूबसूरत ज़िंदगी दी, आगे कुछ दे या ना दे इसी में हम खुश हैं। देखिए, खूबसूरत ज़िंदगी दी है, जीने का मौका मिला है, ये बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता, आपको मिला है, आपकी आंखें आज खुली हैं और आप इस दिन को देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो है, जीवन में सही और गलत का निर्णय लेने के लिए विवेक मांगा है इन्होंने। अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को नष्ट करने की शक्ति भी मांगी है। और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जगपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा वृक्ष खलीफा, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अगले जो संदेश में हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं वो हैं सतप्रकाश सनौठिया, रोहिणी दिल्ली से जुड़े हैं। अगला जो संदेश है वो है, भोले बाबा की कृपा आप सभी पे बनी रहे, हमने आज और कल हरी शर्ट डाली, बहुत ही खुशी मिली, आनंद आया। और इनको गीत भी पसंद आ रहे हैं, लिखना है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, मीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना और रुचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। जी हाँ, आपको हरी शर्ट पहनकर बहुत अच्छा लगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक खुशी मिलती है जब हम उस मौसम को उसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं जैसा वो मौसम हमसे कुछ कहना चाहता हो। तो फिलहाल ये गीत आपसे कुछ कहना चाहता है, ज़रा सुनते हैं इसे।

0: ही लिया जा चुका है।
1: अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो है किशोरनगर अमरावती से हीरामन शेंडे सिद्धार्थ गुंडाड़े। ये कहते हैं, उसके दर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत में नूर मिलता है, जो झुक गया भोले के दरबार में उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। जय भोलेनाथ। जी हाँ, भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। आप उन्हें देखें ना, एक लोटा जल से ही प्रसन्न कर लेते हैं और वो आपके दोस्त बन जाते हैं, आपके साथी बन जाते हैं, आपके संरक्षक बन जाते हैं। तो बस इसी तरीके से भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बरसती रहे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास संदेश आया है ग्राम लसूड़िया पाला तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कोमलपुरी कृतिका रमेश चंद्र डांगी, ये हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार मलकीत कौर आरती रानी राघव हरमन और परिवार के सभी सदस्य इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा कपिल छीपा ईशान छीपा और पूजा परिहार जुड़े हैं। कहते हैं, बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रहे हैं, बेहतरीन नगमे आप सुनवा रहे हैं, हम भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और आनंद उठा रहे हैं, साथ ही साथ सावन के महीने का आनंद उठा रहे हैं। ये महीना भगवान शिव जी की आराधना का होता है और इस महीने में बहुत से त्यौहार होते हैं। भगवान शिव से सभी के सुख शांति की मंगल कामनाएँ ये करते हैं। जी हम भी आपकी, आपके परिवार की, अपने सभी श्रोताओं के परिवार की और उनकी मंगल कामनाएँ मांगते हैं शिव जी से। और साथ ही सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, जिसे सुनने के बाद आपको भी अपना हर सावन याद आना शुरू हो जाएगा, जब भी आपने काले काले बादल आसमान में देखे होंगे।

जैसे सावन अधूरा है बारिश की बूंदों के बिना, हरे रंग के बिना, और सबसे बड़ी चीज़ हरी चूड़ियों के बिना, झूलों के बिना, उसी तरीके से ये मौसम अधूरा है मेहंदी के बिना, क्योंकि इस मौसम में लड़कियां जो हैं वो मेहंदी लगवाती हैं, और उस मेहंदी की जो खुशबू है वो एक अलग ही आपके अंदर जादू कर जाती है। और हमारे पास जो जादू हो रहा है वो है इन संदेशों का। ये हमारे पास आया है संदेश भिलाई गढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन कहते हैं, आपने जो पूछा था उसका जवाब, हे भोलेनाथ हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस रेडियो के सभी उद्घोषक उद्घोषिकाएं हमेशा हमेशा स्वस्थ खुश और प्रसन्न रहें, हमारे सभी श्रोता मित्रों के जीवन में सुख शांति समृद्धि और खुशियाँ बनी रहें। साथ ही महादेव से ये भी मांगा कि आकाशवाणी की मधुर आवाज़ यूं ही देश के कोने कोने तक पहुंचती रहे और रेडियो तथा श्रोताओं का ये अनमोल रिश्ता आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहे। रेडियो हमारे लिए सिर्फ एक माध्यम नहीं है बल्कि ये हमारी सुबह की मुस्कान, दिन की जानकारी, संगीत की मिठास और अपनों जैसा एहसास है। जी आपने तो इतनी खूबसूरत बातें हमारे रेडियो के बारे में लिख दी हैं कि अब तो मन इतना खुश हो गया है कि सावन के साथ साथ इतनी सारी खुशी आपने भर दी है। तो चलिए थैंक यू सो मच, और हम भी यही चाहेंगे कि आपके जीवन में भी हमेशा खुशियाँ बनी रहें। आगे जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित और सबसे पवित्र और पावन महीना है जो जुलाई और अगस्त के दौरान आता है। इस दौरान प्रकृति में चारों ओर हरियाली रहती है, ऐसा कहना है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा और पूजा वर्मा का। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, हीरामन शेंडे, किशोर धनाड़े, हिम्मत राव शिंगारे, संजय कुमार गोदाम और किशोर गुप्ता, दीपक कुराडे ये हमारे साथ जुड़े हैं। तो बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, कार्यक्रम उन्हें पसंद आ रहा है। और चलिए अब झूले हमने झूल लिए हैं, इसके साथ ही हमने हरे रंग की चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, चलिए थोड़ी सी मेहंदी भी लगा ही लेते हैं।

कार्यक्रम से विदाई लेने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने के वक्त पे शुरू हो गई है टिप टिप टिप टिप बारिश। जी हाँ, और बरसात की ही कुछ यादें आज भी दिल के किसी कोने में भीगी हुई पड़ी हैं, जहाँ मिट्टी की खुशबू, कागज की कश्तियाँ और अपनों की हंसी अब भी महकती है। और ऐसा कहना है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू का तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त और आप इस टिप टिप बारिश का आनंद लीजिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवानियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
2: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
3: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 स्थल सीमा चौकियां और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी तथा अगरतला के स्थल सीमा चौकियां शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में स्वीकृति दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जैम पोर्टल उचित गुणवत्ता, उचित मूल्य और उचित समय पर सही उत्पाद की खरीद दर्शाता है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में जैम पोर्टल के 10वें स्थापना दिवस पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि जैम के आने से पहले सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे सुशासन की कमी थी। श्री गोयल ने कहा कि जैम पोर्टल के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक ऑर्डर से 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सामान और सेवाओं की खरीद में सहायता मिली है। मौसम विभाग ने राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक बहुत तेज बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 and the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing in the Lok Sabha today. Mr. Shah will move a motion for consideration of the bill seeking to alter the name of the state of Kerala. He will also move the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, which seeks to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. Rajya Sabha is scheduled to take up the Tribunals Reforms Bill 2026 for consideration and passing. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal will move the bill. The NDA Parliamentary Party's weekly meeting Mangal Milan was held today at the Parliament House premises in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen and other NDA leaders waved Tiranga during the meeting Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the Money Bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system will remain free for consumers. The Finance Minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman also said that the government doesn't intend to impose any MDR charges on small merchants as they remain central to UPI's inclusive growth.
2: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
4: A massive wave of devotion has swept through Haridwar during the Kanwad Yatra. By yesterday evening, over 4,43,78,000 devotees had departed Haridwar carrying holy Ganga water for their respective destinations. Today, on the occasion of Savan Shivratri, a large number of devotees are offering water to Lord Shiv, marking the conclusion of the Kanwad Yatra.
5: On the 12th day of the Kanwad Mela, 63,60,000 devotees departed Haridwar yesterday carrying holy Ganga water for their destination. Haridwar is witnessing a heavy rush of Kanwadiyas today on the occasion of Savan Shivratri. The city is witnessing a strong presence of dark Kanwadiyas. Security, traffic, health and sanitation arrangements are being closely monitored at various bathing ghats, Kanwad routes and sensitive locations to ensure a safe and orderly Kanwad Yatra. Meanwhile, in the state capital, Dehradun, traffic has been diverted at several places due to the movement of a large number of Shiv devotees on the occasion of Savan Shivratri. The devotees who have departed Haridwar with holy Ganga water are offering it to Lord Shiva at various Shiva temples at their respective destinations today. With this year's Kanwad Yatra is also coming to an end. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
4: News just in, the Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. The Jharkhand student agitation over alleged irregularities in JPSC and JSSC examinations continued for nearly 10 hours yesterday. The BJP has called for a statewide bandh today against police action during yesterday's Assembly Gherao. The Assembly Gherao, which continued for nearly 10 hours yesterday, saw protesters reaching the vicinity of gate number 1. Police used water cannons, tear gas and lathi charge to clear the area. India has made a strong start at the Under-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria, winning 17 medals, including 4 gold on the opening day. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 11:10 और पूरे 14 सेकंड, और आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरस। सबसे पहले सुनते हैं जसवीर जस्सी की आवाज़ में ये पंजाबी गीत।

तो भारती सिंह के आवाज़ में आपने ये गीत सुना, और आइए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ जिसे गाया है बैली सागू और रामाश्री ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, जिसमें अभी आपने सुना फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में ये गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, DRM 810 किलो हर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरमंजरी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद लेंगे उज्ज्वल नागर के गायन का, राग गुर्जरी तोड़ी, तराना राग में मियाँ की तोड़ी।

Sare gama da ni da ni da ma ga ma da ni da ni da ma da ni da ma da.

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर मंजरी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आपने अभी आनंद लिया उज्ज्वल नागर द्वारा गायन का राग गुर्जरी तोड़ी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
4: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल BSC की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल BSC की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
3: श्री बिरला ने संसद में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सदन में लगातार इस तरह की स्थिति से वे व्यक्तिगत रूप से आहत हैं। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस समय सदन की कार्यवाही जारी है। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवा नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड विधानसभा के पास कल हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
5: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए। आज तड़के पुणे बंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक से जा टकराई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha assembled at 11 a.m., the Lok Sabha speaker tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests. The opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah in this regard. Mr. Birla said Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju yesterday made it clear that Union Home Minister Amit Shah is ready to respond to the issues concerning students. He appealed to opposition members to cooperate in the smooth functioning of the House. The Speaker said question hour is the most important time as it ensures government accountability. He said bringing placards and banners into the House is not in accordance with parliamentary decorum.
4: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं। इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन चलना चाहिए।
6: The speaker expressed concern over repeated disruptions, saying that he is personally saddened over the continuous disruption in the house. As the pandemonium continued, the speaker adjourned the house till 2 p.m. The proceedings of the Rajya Sabha have resumed after being adjourned till 12 p.m. The government has notified 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. The Home Ministry said it includes 9 land ports and 2 airports. This includes airports at Bhopal and Tirupati and land ports at Attari and Agartala. The Ministry said the addition of ports further enhances the attractiveness and utility of electronic visa. It noted that India provides approximately 95% e-visa applications in less than 72 hours. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall in Rajasthan and West Madhya Pradesh for today. Meanwhile, rain has been occurring intermittently across most parts of Himachal Pradesh since last night. A report.
7: Continuous rainfall across Himachal Pradesh has affected normal life. As many as 106 roads remain blocked due to landslides at several places, while 66 transformers and 19 drinking water supply schemes have also been affected. Concerned departmental teams are working to restore these essential services at the earliest. Meanwhile, the Meteorological Center Shimla has issued an orange alert for rainfall in 3 districts, Kangra, Sirmaur and Mandi, during the next 24 hours. A yellow alert for heavy rainfall has also been issued for 6 other districts. The administration has urged people to exercise caution in view of the possibility of heavy rainfall. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
6: At least 132 people were killed after a powerful 7.4 magnitude earthquake hit western Colombia yesterday. More than 570 others have been injured, according to the U.S. Geological Survey. The epicenter of the quake was near San Jose del Palma in the Chocó region, about 400 kilometers west of the capital, Bogota. The quake damaged hundreds of buildings and trapped several people under debris. We have news just in. The Rajya Sabha has been adjourned till 2 p.m. India has made a strong start at the Under-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria, winning 17 medals, including 4 gold on the opening day. The Indian contingent has secured 4 gold, 4 silver,

0: ஆங்கன். कार्यक्रम घर आंगन के सुनहरे सफर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति पुरी।
1: और मेरा भी नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रश्मि।
0: और हम दोनों एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इंद्रप्रस्थ के हमारे श्रोता हमें मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। वहीं डिजिटल परिवार के हमारे साथी एआईआर न्यूज़ लाइव 24x7 यूट्यूब चैनल पर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं।
1: श्रुति, हर दिन अपने साथ कुछ नए पल, नई यादें लेकर आता है, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारे दिल में ताज़ा बने रहते हैं। जैसे कोई पुरानी तस्वीर, कोई गीत, कोई छोटी सी बात हमें उसी पल में वापस मिल जाती है और चेहरे पर अचानक मुस्कान आ जाती है।
0: तो आज आप भी अपनी यादों की पोटली खोलिए और हमें बताइए आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा पल या ऐसी कौन सी घटना है जिसे आप आज भी याद करते हैं और याद करके रोमांचित हो जाते हैं, यानी आपको एकदम से खुशी होती है आपको उसे याद करके। तो अपने जवाब, अपनी यादें हमें fmgoldga@gmail.com पर, मेल ID दोबारा लिखिए fmgoldga@gmail.com पर लिख भेजिए। और रश्मि, आज जानती हो कि आज शिवरात्रि का जो जल है ना, आज सावन की
1: शिवरात्रि है। जी बिल्कुल जी। आज मंगलवार 11 अगस्त और सावन शिवरात्रि का ये पावन पर्व मना रहे हैं, क्योंकि सावन शिवरात्रि पर जो कांवड़ यात्रा चल रही है ना, ये संपन्न होती है और देश भर के जो शिव भक्त और कांवड़िए हैं पवित्र नदियों में, जैसे हरिद्वार में गंगा नदी है, उनसे जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। और भाई, इस जो साल कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी 30 जुलाई से और ये आज संपन्न हो रही है, तो ये बहुत ही मान्यता है।
0: इस समय भी आप देख रहे हो रस्ते में कितने कांवड़िए हैं,
1: तो मीलों पैदल यात्रा करकर और कंधे पर
0: कितनी मेहनत करते
1: हैं। हाँ, और कठिन नियमों का पालन करते हुए शिवालयों तक आज पहुंचेंगे और भगवान शिव के जलाभिषेक करेंगे। तो हम सब इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो सभी सुनने वाले।
0: और ये तो देखो भाव है ना, तो भाव को हम भी नमन करते हैं और भोले बाबा को याद करते हैं।

0: सत्यम शिवम सुंदरम। इस फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे।
1: और बात हो जाए आज के विशेष दिनों की, श्रुति जी
0: जी
1: पहले याद कर रहे हैं हम लोग 11 अगस्त की ये तारीख।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस तारीख में आप जानते हैं कि हमने आज एक सुविचार लिया है।
1: जी
0: किसका सुविचार है आप बताइए।
1: जी तो याद कर रहे हैं आज क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को, वो कहा करते थे कि दुश्मन की गोलियों को का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। तो कभी कभी कुछ शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते श्रुति जी, वो पूरे दौर की आवाज़ बन जाती है।
0: और देखिए इसी दौर की बात 11 अगस्त की तारीख जो आज भी है हमें याद दिलाती है इसी जज्बे की। 1908 में इस दिन महज 18 साल की उम्र में क्रांतिकारी खुदीराम बोस ने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया था। हाथ में गीता और चेहरे पर मुस्कान, उनकी शहादत ने देश के नौजवानों के भीतर आज़ादी की लौ और तेज कर दी थी।
1: और आज एक और विशेष दिन है, विश्व स्टील पैन दिवस। ट्रिनिदाद और टोबैगो में जो पुराने धातुओं के पीपों से बना ये अनोखा वाद्य आज दुनिया भर में संगीत रचनात्मकता और लोगों को जोड़ने की पहचान बन चुका है।
0: हाँ तो एक ही तारीख हमें हक के लिए डटे रहना और अपनी रचनात्मकता से दुनिया भर में रंग भरना बताती है। बस इरादा मजबूत हो तो छोटी सी कोशिश भी एक बड़ी पहचान बन जाती है ना।

0: मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्ण मूर्ति को अभी आप सुन रहे थे फिल्म कर्मा में।
1: जी, और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये संगीत जो गीत था, और
0: कितना अच्छा लगता है ना,
1: देशभक्ति
0: एकदम से जज्बा पैदा हो जाता है देशभक्ति
1: जी
0: का। और यही जो है ना, तिरंगे को देख के यही भाव मन में आता है
1: जी
0: कि
1: बिल्कुल
0: घर की छत पर लहराता तिरंगा जो होता है ना, वो सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, वो उस घर की आवाज़ बन जाता है जो कहती है कि हम भी इस देश की कहानी का हिस्सा हैं। और ये विचार साकार हुआ 2022 में, जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था।
1: जी आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, उसके तहत जन्मे इस अभियान का उद्देश्य सीधा था, हर भारतीय को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना, ताकि देशभक्ति जो है वो केवल सरकारी दफ्तर स्कूलों तक सीमित ना रह जाए, हर आंगन तक पहुँचे।
0: और सरकार ने 13 से 15 अगस्त 2022 के बीच लगभग 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा था, पर नतीजा उम्मीद से भी आगे निकला। 23 करोड़ घरों से भी ज्यादा घरों में तिरंगा फहराया गया, और वेबसाइट पर 6 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी साझा हुई थी।
1: जी बिल्कुल, और वही जोश अभी तक बरकरार है। भाई चंडीगढ़ में तो जो मानव श्रृंखला से बनी तिरंगे की तस्वीर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना दिया। एक दिलचस्प बात जो है झंडे के नियमों से जुड़ी है श्रुति। पहले जो ध्वज संहिता के अनुसार झंडा सिर्फ हाथ से बुने खादी, सूती या रेशमी कपड़े से बनता था, और उसे केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था।
0: और करोड़ों घरों तक झंडा पहुंचाने के लिए 20 जुलाई 2022 को ये नियम बदला गया, और अब मशीन से बने झंडे जो थे ना, वो भी मान्य हो गए। और जानते हो कि 1.6 लाख डाकघरों ने भी झंडों को दूर दराज तक गांवों में पहचाने में, अपनी पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी।
1: सबसे सुंदर बात ये रही इस अभियान की, ये साल का उत्सव नहीं बनकर रह गया, बल्कि हर साल लौटता है और अब एक स्थायी परंपरा बन चुका है। और जो इसकी असली ताकत है वो श्रुति आंकड़ों में नहीं है, बल्कि उस भावना में है, उस देशभक्ति की, जिसमें वो किसी एक दिन की मोहताज नहीं होती,
0: बिल्कुल
1: बल्कि
0: बिल्कुल।
1: दिलों में बसती है, वो हर घर की छत पर सहजता से उतरती
0: तो
1: है।
0: आइए इस बार भी हम हर घर तिरंगा अभियान में सहभागी बने, और अपने घर में झंडा फहरा कर देशभक्ति की भावना से अपने आप को ओतप्रोत करें।

0: रोजा फिल्म में अभी आप AR रहमान और हरिहरन को सुन रहे थे। देखो, हमने प्रश्न किया था रश्मि के, आपकी ज़िंदगी का ऐसा कौन सा पल है जिसको याद करते ही आपको खुशी मिलती है या आपको रोमांच हो जाता है? तो
1: और जवाब आ गए हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह नवीन भाटिया जी मोतीनगर से, वो कह रहे हैं कि मैं 10वीं क्लास में था तो DTC का 12.5 वाला पास जो था वो बनवा लिया, और फिर जो घूमा तो वो आज भी याद है मुझे, अच्छा लगता है। वाकई में श्रुति जी, वो समय ऐसा था कि जो स्टूडेंट्स होते थे ना उनको DTC का 12.5 का पास इशू होता था, और मुझे भी याद है वो
0: आप भी बनाया होगा,
1: जी बिल्कुल
0: आपने
1: नवीन जी, मैंने भी बनवाया था। और तब ना हरी और पीली बसेस चलती थी, और हम जो छात्र छात्राएं थे ना वो तो ऐसे महसूस करते थे बिल्कुल राजा की तरह कि हम कहीं भी जा सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: वाह,
0: बिल्कुल।
1: मजेदार याद आपकी मेरी माटी।
0: और एक मेल हमारे पास भी आया है, ये लिखने वाले हैं राजू अग्रवाल, केशव प्रियांशी चौधरीवास, हिसार हरियाणा से। लिखते हैं कि मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है जो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। 2012 में मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गए थे, अवसाद में आ गए थे ये। और लिखते हैं कि आकाशवाणी रोहतक के किसी प्रस्तुतकर्ता ने मुझे कहा कि राजू जी, रेडियो हमेशा आपके साथ रहेगा, रेडियो ने मुझे ज़िंदगी दी है। और FM गोल्ड तो मैं अब रोज़ाना सुनता हूँ, सबसे पहले साल भर पहले से मैंने ईमेल भेजनी शुरू कर दी
1: जी,
0: थी।
1: आपकी हमेशा ईमेल आती है, और सुदर्शन मुखी जी जुड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो बचपन के स्कूल जाने की वो पल याद हैं जो बहुत अच्छा लगता था, और क्योंकि बचपन से सुंदर समय जीवन में कभी नहीं मिलता। जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: और एक मेल और है उग्रसेन यादव जी की, ये लिखते हैं कि वैसे तो जिंदगी में छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कभी नहीं भूला मैं, पर दोस्तों के साथ बिताए जो पल हैं वो उनके साथ आम खाना।
1: अरे वाह जी, आम तो अभी भी मौजूद
0: बिल्कुल
1: है, अभी भी
0: बिल्कुल
1: खा सकते
0: बिल्कुल। तो
1: हैं।
0: वो कह रहे हैं कि वो इनकी एक ऐसी याद है जो ये कभी नहीं भूले
1: और एक
0: हैं।
1: और मेल आ गई है, उमेश कुमार खयाला से कह रहे हैं कि पहले हम तालकटोरा गार्डन के पास रहते थे और सारे दोस्त गार्डन में खेलते थे, और हम वहाँ ही नहीं खेलते थे बल्कि कभी वहाँ जाते थे तो बहुत अभी भी अच्छा लगता है और मन खुश हो जाता है। एक और मेल आई है, दिलावर खान जी कह रहे हैं कि मेरे जीवन की याद है कि जब हम छोटे थे तो दिल्ली की DTC की डबल डेकर बस चला करती थी। हाँ मुझे भी याद है, और उसमें 15 पैसे की टिकट लेते थे और ऊपर जाकर बैठते थे, बड़ी खुशी होती थी वो दिन, आज भी याद है। कह रहे हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिसा नायब और लड्डू भाई। वाह क्या बात है, डबल डेकर बसेस याद दिला दी
0: बिल्कुल
1: इन्होंने।
0: बिल्कुल। और देखिए, यही तो छोटी छोटी यादें होती हैं जो जीवन में हमेशा रंग भरती हैं। और रश्मि, देखो अब समय है हमारी श्रृंखला संकल्प का,
1: जी
0: तो हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं संकल्प की अगली कड़ी।
2: संकल्प। एक उड़ान अपने हुनर की सिद्धि से समृद्धि के आसमान तक। संकल्प।
0: आज के समय में जब मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमारे पढ़ने की आदत को कहीं पीछे छोड़ दिया है, ऐसे में किताबों को फिर से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना अपने आप में एक खूबसूरत पहल है। ऐसी ही एक कोशिश है एक बुक क्लब की, जिसकी शुरुआत शिल्पा गुप्ता ने 6 लोगों के साथ मिलकर की थी। आज इस पहल को 3 साल हो चुके हैं। हर महीने इस क्लब के सदस्य एक फिक्शन और एक नॉन फिक्शन किताब चुनते हैं, उसे पढ़ते हैं और फिर साथ बैठकर उस पर खुलकर चर्चा करते हैं। क्या अच्छा लगा, क्या नहीं, कहानी कितनी असरदार रही और किताब हमें क्या सोचने पर मजबूर कर रही है। यानी किताब को पढ़ना ही नहीं, उसे समझना, परखना और उस पर अपने विचार साझा करना इस क्लब का हिस्सा है। पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने और किताबों से लोगों को जोड़ने की ये कोशिश वाकई दिलचस्प है। तो आइए संकल्प श्रृंखला के अंतर्गत सुनते हैं शिल्पा गुप्ता से इस बुक क्लब की शुरुआत और अब तक के उनके अनुभव।
3: मैं एक बुक क्लब पिछले 3 साल से लखनऊ शहर में चलाती हूँ, जिसका नाम है बुक अ ट्रीट। वेबसाइट भी है और सोशल मीडिया पे भी हम काफी एक्टिव हैं। ये बुक क्लब का बेसिकली स्टार्ट करने का मेरा उद्देश्य ये था कि मेरी खुद की आदत जो बुक्स पढ़ने की बहुत ही शुरुआत से ही बचपन से ही वो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि जिंदगी के रोजमर्रा के कामों की वजह से ना कम हो रही थी और मैं उसको खत्म नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसमें मुझे एक अलग सा उत्साह और एक अलग सा पैशन था। तो ये सोचा कि चलिए कुछ लोगों के साथ मिलके बैठूंगी, बात करूंगी और बुक्स के ऊपर जब चर्चा करूंगी तो शायद वो जो पैशन है उसको फिर से रीइग्नाइट करने का मुझे मौका मिलेगा। और ऐसे ही मैंने एक बस मैसेज बना के अपने ग्रुप्स में डाला और मेरे 5-6 लोग जो थे जो इक्वली पैशनेट थे बुक रीडिंग को लेके वो तैयार हो गए और हमने 3 साल पहले इसको स्टार्ट किया 6 लोगों में। और स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे जितने लोग किताबों के प्रशंसक, किताबें पढ़ने वाले भले वो फिक्शन या नॉन फिक्शन रहे हों, सब जुड़ते चले गए और आज 3 साल के बाद हम लोग अराउंड 30-32 लोग अब मेरे ग्रुप में हैं। बुक क्लब में हम, श्रुति जी, एक्चुअली बुक रीड करते हैं तो हमारा मेन फोकस वैसे तो फिक्शन और नॉन फिक्शन पे रहता है जो ज़्यादातर लोग आजकल पढ़ते हैं। तो सारे मेम्बर्स की राय से ही हम एक फिक्शन और एक नॉन फिक्शन 1 महीने के लिए उठाते हैं जो सब लोग रेकमेंड करते हैं और फिर हम लोग वो पूरा महीना या आप फिक्शन पढ़ें या नॉन फिक्शन या अगर आपके पास टाइम हो तो आप दोनों पढ़ें, मेंबर्स उसको पढ़ के आते हैं और एक मंथली हडल करते हैं। हडल का मतलब है जहां सारे मेंबर्स हम लोग मिलते हैं और उन किताबों पे जो हमने चयन की होती है पिछले महीने उन पे पूरा डेप्थ तक के पूरा डिस्कशन करते हैं कि उनको लेखक कैसे लगे, उनकी राइटिंग स्टाइल कैसा लगा, जो उन्होंने लिखा क्या वो आपकी जिंदगी के मापदंड में सही है, गलत है, आप उसमें क्या चाहेंगे। तो हर पहलू पे हम बात करते हैं और उसको अपने निजी जीवन से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि लेखक क्या कहना चाह रहा है और हम उस सीख को अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं। तो जब मेंबर्स आते हैं, बेसिकली हमने एक ईयरली सब्सक्रिप्शन रखा है ताकि हमको ये पता चले कि ग्रुप में यूनिफॉर्मिटी क्या है, कौन मेंबर हमसे जुड़े हुए हैं। तो वो छोटा सा एक मिनिमल सब्सक्रिप्शन है जो साल में एक बार आपको देना होता है और उसके बाद जब हम लोग महीने में मिलते हैं तो उसमें जो भी चाय पानी का खर्चा आता है जितने लोग वहां पर होते हैं वो सब उसको आपस में बांट लेते हैं। और जब हम उसको बांट लेते हैं तो वो किसी के ऊपर बहुत पड़ता नहीं है और इसको अब हम लोग थोड़ा सा और उभार के दूसरे शहर तक लेके जाना चाहते हैं क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट भी खोल ली है। तो अब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहाँ पे देश से भी लोग हमसे जुड़े और हम जो बुक्स डिसाइड करते हैं वो लोग पढ़ें और मे बी हम एक ऑनलाइन मीटिंग, जो अभी हम एक फेस टू फेस हडल करते हैं उसको हम एक ऑनलाइन हडल के रूप में भी लेके जाना चाहते हैं। मैंने जो अब एक जगह बनाई है उसमें उसके जरूर बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि एक बहुत सेफ स्पेस है। लोग जब पढ़ के आते हैं, अगर आप कोई भी किताब उठाएं उसको पढ़ें और बंद करके रख दें तो वो किताब वहीं ख़त्म हो जाती है और हम जब किताब उठाते हैं उसको इतनी डेप्थ तक पढ़ते हैं कि आप में खुद में एक ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे पता है ज़िंदगी में क्या हो रहा है और मैं किस तरफ जा रहा हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है लोगों को लगता है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, या हमें अपनी रोज़मर्रा में ना एक पुश चाहिए होता है रोज़ रोज़ कि हाँ नेगेटिविटी नहीं जाना है, स्पाइरल आउट नहीं होना है। तो किताबें हमें कहीं ना कहीं वो तो एक मेंटल पॉजिटिविटी ज़रूर देती हैं और आई थिंक ये ग्रुप से मुझे ये समझ में आया कि जब आप साथ में बैठते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि मैं कहीं छूटा हुआ हूँ, सब मेरे साथ हैं और सब मुझे अपने साथ ही लेके चल रहे हैं। सही बताऊं तो जब शुरू किया था तो वो बहुत एक पर्सनल एंडेवर था बट अब मैं इसको उस जगह पर लेके जाती हूँ जहाँ पे हम इतनी मेंटल हेल्थ को लेके अब हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई है, मैं उसको ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि जिस कोविड के बाद हम लोगों को एक अकेलेपन में रहने की और एक वो आदत पड़ रही थी और उससे हमारा मेंटल लेवल डिस्टर्ब हो रहा था, थ्रू बुक्स और थ्रू ऐसे कम्युनिटीज़ के मैं उस चीज़ को, मैं लोगों को एक स्पेस, एक नॉन जजमेंटल स्पेस और एक ऐसी अपनी स्पेस देना चाहती हूँ जहाँ वो खुल के कुछ भी बोल सकते हैं और उसमें उनको ना डर होगा और ना ही उनको ये लगेगा कि कोई मुझे किस नजरिए से देखेगा। तो बहुत पॉजिटिव और बहुत एक इंटेलेक्चुअल और बहुत एक अपनेपन की जगह अब मैं इसको उसकी तरह लेके जाना चाहती
0: हूँ। अभी आप संकल्प श्रृंखला के अंतर्गत शिल्पा गुप्ता से बुक क्लब के सफर और किताबों को लेकर उनके अनुभव सुन रहे थे। सच तो यह है कि किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वे हमारे सोचने और चीजों को देखने का नजरिया भी बदलती हैं। और जब पढ़ने के साथ अपने विचार साझा करने और दूसरों के नजरिए को समझने का मौका मिले तो किताब का अनुभव और भी समृद्ध हो जाता है। शिल्पा जी और उनके साथियों की ये पहल हमें याद दिलाती है कि पढ़ने के लिए बस एक किताब और उसे पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए और अगर साथ में कुछ अच्छे साथी मिल जाएं तो सफर और भी खूबसूरत हो जाता है।
2: संकल्प। एक उड़ान अपने हुनर की सिद्ध से समृद्धि के आसमान तक। संकल्प।

0: यार मेरा इस फिल्म में अभी आप मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को सुन रहे थे।
1: जी। और जब पढ़ने की बात आती है तो भाई हमारे युवा लगातार पढ़ाई भी करते हैं, करियर भी बनाते हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: हम लोग युवा देश हैं श्रुति
0: बिल्कुल
1: जी, और
0: बिल्कुल
1: किसी भी देश का जो भविष्य होता है उसकी युवा पीढ़ी के हाथों में होता है। जो जेंजी हैं भाई वो

0: एक देश को मजबूत बनाने के लिए युवाओं की भूमिका सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं है, उनकी सबसे बड़ी ताकत है सोचना, सवाल करना और अपनी बात को जिम्मेदारी से रखना।
1: जी, जब युवा अपने आसपास की समस्याओं को समझते हैं, समाधान के लिए आगे आते हैं, समाज में बदलाव की पहल करते हैं तो और दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं
0: बिल्कुल
1: तो देश मजबूत होता है। हालांकि देश में असहमति भी होती है, कई बातों पर आप राजी नहीं भी होते।
0: और देखो, हर बात पे सहमत होना ही देश में बात रखना नहीं है, बल्कि अलग अलग विचार रखने वाले व्यक्ति की बात को सुनना, उसका सम्मान करना एक लोकतांत्रिक सोच है।
1: तो जो जिंजी है युवा, इस सोच को जितना अपनाएंगे हमारा समाज उतना ही स्वस्थ और मजबूत होगा। लेकिन श्रुति जी, देश में अधिकारों के साथ बहुत जरूरी है कर्तव्य भी अपनाना, उसकी तरफ ध्यान
0: हाँ,
1: देना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अपने देश, समाज और पर्यावरण के लिए जिम्मेदार होना, कानून और संविधान का सम्मान करना और जरूरत पड़ने पर सामाजिक सरोकारों के लिए शांतिपूर्वक तरीके से एक आवाज उठाना, यही एक जागरूक युवा की पहचान भी तो है।
1: जी, उनकी बहुत जिम्मेदारी भी है भाई, उनको शिक्षा और कौशल हासिल करके देश के विकास में योगदान देना है, संविधान कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना है, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को मजबूत करना है भाई, जल ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की बचत करनी है और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने के बजाय सही और प्रामाणिक जानकारी साझा करनी है।
0: और बिल्कुल यही बात बिल्कुल आपने ठीक कही रश्मि, कि इसीलिए जो युवा है ना, वो आज देश का सहभागी भी है और प्रहरी भी है। उसकी जागरूकता, जिम्मेदार और सकारात्मक सोच ही देश को, हमारे देश को एक नई ऊर्जा दे रही है। और ऊर्जा हमें मिलती है सावन के गीतों से भी।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

0: मंजिल फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे, और रश्मि जी कुछ मेल आई है, मुझे लग रहा है ऐसा कि हमारे श्रोता
1: जी
0: बिल्कुल मेल कर रहे हैं, तो किसकी मेल आई है अभी?
1: जी गौरी शंकर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ नागलोई से। वो कह रहे हैं कि मैं नागलोई से बहादुरगढ़ जा रहा था और स्कूटर पर घरवाली पीछे बैठी हुई थी, तो आगे पेट्रोल भराने के लिए रुका और घरवाली जो थी वो नीचे उतर गई, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं आगे चल दिया और जब दूसरे पंप पर पहुंचा तो वहां खड़े आदमी ने कहा कि आपका तो फोन बज रहा है। तो उन दिनों टच फोन वाले मोबाइल नहीं थे, तो भाई हमारी घरवाली ने हमें फोन किया किसी से फोन लेकर, तब आवाज़ जब उनकी सुनी तो समझ में नहीं आई कि आप कहाँ, आपको किससे बात करनी है। फिर पता चला कि वो पिछले पंप पर ही रह गई है। मैं वापस जाकर फिर उन्हें लेकर आया, आज भी याद आती है तो बहुत हंसी आती है।
0: और एक ये मेल हमारे पास आई है इदरिस सैफी जी की, और ये लिख रहे हैं कि पिछले 3 महीनों से मैं हर महीने एक पौधा लगाता हूँ, और जब वो लगाता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है।
1: वाह, और ऐसी सावन की एक याद हमारे साथ बांट रही हैं सुरभि मयूर विहार से। वो कह रही है कि सावन का झूला जो है वो मेरी बहुत प्यारी याद है। हरे भरे पेड़ रहते थे नीम के, उस पर झूला पड़ता था और हम बारी बारी से झूलते थे और सावन के गीत गाते थे। झूला जितना ऊपर जाता हमारी हंसी भी उतनी ही ऊंची हो जाती।
0: देखो रश्मि, सावन की बात हो और घूमने फिरने का मन तो स्वतः कर
1: जी
0: उठता
1: जी
0: है, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: ऐसा है ना कि बारिश में लॉन्ग ड्राइव पे कहीं निकल जाओ या कहीं घूमने निकल जाओ
1: जी,
0: तो
1: मन
0: मजा आता
1: मचलने
0: है।
1: लग जाता है भाई।
0: बिल्कुल,
1: पहाड़, झरने, हरियाली और ठंडी ठंडी हवा सब कुछ भुलाने लगती है आपको।
0: लेकिन देखो मानसून के सफर का मजा तभी है जब थोड़ी सी तैयारी भी साथ हो, क्योंकि बारिश में रास्ते खूबसूरत जरूर होते हैं लेकिन कई बार मुश्किल भी हो सकते
1: तो
0: हैं।
1: फिर क्यों ना सबसे पहले मौसम का हाल देख लें, फिर अगर बहुत तेज़ बारिश हो या बाढ़ या भूस्खलन की चेतावनी हो तो सिर्फ घूमने के शौक शौक में जोखिम लेना अच्छी बात नहीं है। खासकर
0: बिल्कुल
1: पहाड़ी इलाकों में निकलने से पहले सड़क की स्थिति और स्थानीय प्रशासन की सलाह जरूर मान लें।
0: हाँ, और अगर सफर पर निकल रहे हैं तो छाता और रेनकोट और पानी से बचाने वाला बैग और मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ कवर, ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती हैं। जूते ऐसे पहने जिसकी पकड़ अच्छी हो, क्योंकि गीली सड़क पर फिसलन भरी सीढ़ियां भी होती हैं, कई बार वो परेशानी खड़ी कर सकती
1: और
0: हैं।
1: गाड़ी से जा रहे हैं तो भाई ब्रेक, टायर, वाइपर, हेडलाइट एक बार ज़रूर जांच लें और बारिश में गाड़ी की रफ्तार जो है वो
0: बिल्कुल
1: धीरे रखें। और एक और ज़रूरी बात, बारिश के दौरान उफनती नदी, नाले या झरने के बहुत करीब जाकर भाई फोटो लेने का जोखिम मत उठाएं।
0: बिल्कुल, और शांत पानी जो दिखाई दे रहा हो वो कभी भी अचानक उसका बहाव तेज हो सकता है, इसलिए स्थानीय चेतावनी और सुरक्षा निर्देशों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें।
1: और बारिश में ट्रैफिक अक्सर धीमा हो जाता है, रास्ते बंद हो सकते हैं, अचानक रुकना पड़ सकता है। तो मानसून में सफर का सबसे अच्छा नियम है नो जल्दबाजी, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आखिर घूमना फिरना यादें बनाने के लिए ही तो होता है, जोखिम उठाने के लिए थोड़ी होता है। तो बरसात का आनंद लीजिए और इस मौसम में घूमने फिरने निकल ही पड़िए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। केवल बीजेडी के डॉ. संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक के बाद ये मार्च निकाला गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया।

0: मोदी जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
1: नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में कल रांची में छात्रों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री महतो झारखंड विधानसभा के पास पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एसआईआर से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की याचिका पर संज्ञान लिया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जो स्वामित्व और किराए सहित आवास के विकल्प प्रदान करे। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की कमी आई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 413 अंक गिरकर 78,130 पर और निफ्टी 133 अंक गिरकर 24,451 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Lok Sabha and the Rajya Sabha have been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha assembled at 11 a.m., the Speaker tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests. The opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah in this regard. Mr. Birla said Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju had made it clear yesterday that Union Home Minister Amit Shah is ready to respond to the issue concerning students.
3: There should be a proper discussion in the House on important issues, questions and regulations, especially those that bring significant changes to the nation. Such matters deserve thorough and meaningful discussion. However, I would like to reiterate that yesterday the issue concerning students was raised and discussed. Parliamentary Affairs Minister and the Finance Minister clearly stated that the Honorable Home Minister is ready to respond to the matter.
2: Mr. Birla repeatedly appealed to all opposition members to cooperate in ensuring the smooth conduct of proceedings. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. over the same issue. When the upper house reassembled after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan took up the question hour amid the opposition uproar, but it could not be conducted due to sloganeering. Minister of State for New and Renewable Energy, Sripad Yesso Naik, tried to reply to a question on offshore wind energy development, but he could not complete his reply. Amidst the uproarious scene, the chairman adjourned the house till 2 p.m. The government has said more than 10 crore 33 lakh farmer IDs have been created across the country till date. It enables the integration of direct benefit transfer schemes such as registrations under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, minimum support price based procurement, and

0: access to credit delivery and disaster relief. In a written reply, Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Ramnath Thakur, said the farmers can register for a farmer ID themselves using their mobile phone. The NDA today held a march inside the parliament premises over alleged police action against students in Jharkhand. The MPs were carrying placards alleging the opposition is avoiding discussion despite the government's assurance that Home Minister Amit Shah is ready to respond to the student protests. The march took place after the NDA parliamentary meeting Mangal Milan. Union Minister Anupriya Patel accused the opposition of deliberately disrupting the functioning of parliament. The Supreme Court today directed the Election Commission to provide details of appeals decided so far by tribunals appointed to hear pleas against voter deletions. The appeals relate to deletions made during the special intensive revision of electoral rolls in West Bengal. A bench headed by Chief Justice Suryakant took note of a plea by Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary seeking faster disposal of SIR-related appeals. The court scheduled the plea for further hearing on the 25th of August. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over Odisha during the next 2 to 3 days. The Met Department also predicted heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over the Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Rajasthan over the next 2 days. At least 9 people have been killed and dozens injured in Russian overnight attacks across Ukraine. According to regional governor Ivan Fedorov, in Zaporizhia, 6 people were killed and 19 injured. In tennis, Canadian Open 2026, former world number one Iga Swiatek stormed into the semifinals with a 6-2, 6-1 win over Russia's Diana Schneider. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% lower in afternoon trade today. The Sensex lost 413 points to 78,130, while the Nifty dipped 133 points to 24,451 when reports last came in. And with that, we end.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर. श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का. तो आज ये कार्यक्रम लेकर मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम सभी का मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से. साथियों, एक ही फिल्म से कार्यक्रम शुरू करने से पहले लेते हैं छोटा सा अंतराल, उसके बाद शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम.
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ. वाह, दिल बन गया.
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है.
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
1: श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम. साथियों, कभी कभी फिल्मों के नाम ही अपने भीतर एक कहानी समेटे होते हैं और जब नाम हो भाई भाई तो जाहिर है बात होगी रिश्तों की, बिछड़ने की, संघर्ष की और आखिरकार अपनेपन की. जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में हम आपको लेकर चल रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस दौर में जब फिल्मों में बड़े बड़े सेट से ज़्यादा महत्व कहानी, अभिनय और संगीत का हुआ करता था. साल था 1956 का और इसी साल आई थी एक खूबसूरत पारिवारिक सामाजिक फिल्म भाई भाई.

दोस्तों, फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी संभाली थी एमवी रमन ने, और इसे बनाया था एमवी मैयप्पन की एमवी एम प्रोडक्शन ने। कहानी मूल रूप से तमिल फिल्म से जुड़ी थी, जिसका हिट हिंदी रूपांतरण किया गया पटकथा में जवाहर सीतारामन, और संवाद व गीतों में राजेंद्र कृष्ण का महत्वपूर्ण योगदान था। और सबसे खास बात, इस फिल्म में एक साथ दिखाई दिए दो भाई, जी हाँ साथियों, अशोक कुमार और किशोर कुमार। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसमें असल जिंदगी में जो भाई थे।

साथियों, अब बात करते हैं इस फिल्म के खूबसूरत संगीत की। फिल्म का संगीत दिया था उस दौर के बेहद संवेदनशील और मधुर संगीतकार मदन मोहन साहब ने, और गीत लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने। दोस्तों, फिल्म के गीतों में लता मंगेशकर, गीता दत्त, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जैसे महान गायकों की आवाज़ें सुनाई दी। फिल्म में लगभग 12 गीतों का उल्लेख मिलता है, और जो हमने आपको सबसे पहले गीत सुनवाया था, उस गीत को गाया था गीता दत्त ने। यह गीत मदन मोहन के शुरुआती लोकप्रिय गीतों में गिना जाता है, और इसकी धुन आज भी पुराने फिल्म संगीत के श्रोताओं को अपनी ओर खींचती है।

दोस्तों अमित कुमार, अशोक कुमार उस समय तक हिंदी सिनेमा के बेहद अनुभवी अभिनेता बन चुके थे। वहीं किशोर कुमार की पहचान धीरे धीरे एक अलग तरह के कलाकार के रूप में मजबूत हो रही थी। सदियों किशोर कुमार का अंदाज पारंपरिक नायक जैसा नहीं था। उनमें एक सहज शरारत थी, एक अलग तरह की कॉमिक टाइमिंग थी और अभिनय में स्वाभाविकता थी। और भाई भाई में उनका किरदार राजा कहानी का बेहद महत्वपूर्ण

हिस्सा बन जाता है। फिल्म की कहानी में एक बदलाव जब आता है, असल जिंदगी में भी दोनों कलाकार भाई थे और फिल्म में भी उन्हें भाइयों का ही जो अभिनय था वो करने को मिला। साथियों, किशोर कुमार अपने अनोखे व्यवहार और मजाकिया अंदाज के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। भाई भाई की शूटिंग के दौरान भुगतान को लेकर किशोर कुमार के नाराज़ होने का एक किस्सा भी बहुत मशहूर है।

शादियां जो हम बात कर रहे थे उनकी नाराजगी के किस्से की, वो यूं था कि उस समय उनके कुछ पैसे बाकी थे और शूटिंग का कुछ काम भी बचा हुआ था। किशोर कुमार ने अपने खास अंदाज में अपनी नाराजगी जताई। किस्सा चाहे जितना मजेदार लगे, लेकिन इससे किशोर कुमार के उस सिद्धांत की झलक मिलती है कि वह अपने काम के भुगतान को लेकर काफी स्पष्ट रहते थे। यही तो थे किशोर कुमार का अंदाज, कभी गंभीर, कभी शरारती, कभी रहस्यमयी और कभी बिल्कुल बच्चों जैसे।

दोस्तों, फिल्म में निरूपा रॉय ने लक्ष्मी का किरदार निभाया था। उनके अभिनय में एक पत्नी और माँ की भावनाओं को प्रमुखता मिलती है। निमी ने रानी की भूमिका निभाई। ओम प्रकाश भी फिल्म में महत्वपूर्ण कलाकारों में शामिल थे। श्यामा, डेविड, डेजी रानी और शिवराज ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं। खास तौर पर बाल कलाकार के रूप में डेजी रानी की मौजूदगी फिल्म को परिवार और बच्चों से जुड़ा भावात्मक पक्ष देती है।

0: बहुत अच्छे मगर तुम रुक क्यों जाती हो?
1: मुझे जाने दो अशोक बाबू।
0: ना जो
1: वो

श्रोताओं, आज की हमारी फिल्मी यात्रा यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी दोस्त शिल्पा गोस्वामी को इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लेकिन जाते जाते एक बात कहूँगी, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। पार्लियामेंट में बहुत से मामलों पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा किए जाने के दौरान कामकाज में रुकावट अब भी जारी है। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है कि हर लापता शख्स की FIR उम्र और सिंफ से कतई नज़र फौरी तौर पर लाजमी दर्ज की जाए। यूक्रेन में रूस के रात भर के फिजाई हमलों में 9 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज और उड़ीसा में अगले 3 दिन तक शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र अलर्ट जारी किया है। और कैनेडियन ओपन टेनिस में पोलैंड की एगा स्वैतिक

0: सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने रूस की डायना श्राइडर को सीधे सेटों में हराया। अब खबरें तफसील से। नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई समेत कई मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। लोकसभा का इजलास जब दिन में 11 बजे शुरू हुआ तो ऐवान के स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई का मामला उठाया। अपोजिशन अरकान इस सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से बयान दिए जाने का मुतालबा कर रहे थे। जनाब बिरला ने कहा कि पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कल ये बात वाजह कर दी है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह तलबा से मुतालिक मामलात पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो ऐवान की कार्रवाई चलाने में ताउन करें। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की दोनों अहम मांगें मान ली गई हैं। स्पीकर ने कहा कि वक्फे सवालात इंतहाई अहम वक्फा होता है क्योंकि ये हुकूमत की जवाबदेही को यकीनी बनाता है। उन्होंने कहा कि ऐवान में प्ले कार्ड्स और बैनर्स लाना पार्लिमानी उसूलों के मनाफी है।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: जब शोरगुल का सिलसिला जारी रहा तो स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दिन के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर राज्यसभा की कार्रवाई भी इसी मामले पर दिन के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। एनडीए पार्लिमानी पार्टी का हफ्तावार इजलास मंगल मिलन आज नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुनाकिद हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन और एनडीए के दिगर रहनुमाओं ने इजलास के दौरान तिरंगा लहराया। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है कि लापता अफराद के मामलों में फौरी एफआईआर दर्ज करने से मुतालिक उसकी हिदायत हर एक के लिए है और इसका किसी उम्र या सिन्फ से कोई ताल्लुक नहीं है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस आर महादेवन पर मुश्तमिल एक बेंच ने उन रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिदायत दी जो इस हिदायत पर अमल करने में नाकाम रहे हैं कि वो अपने चीफ सेक्रेटरीज़ और पुलिस सरबराहान को हिदायत दें कि वो अदालत में हाजिर होकर ये वजाहत करें कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत से मुतालिक कार्रवाई क्यों ना की जाए। अब इस मामले की समाअत 5 अक्टूबर को होगी। इससे पहले अदालत ने पुलिस को हिदायत दी थी कि वो लापता अफराद के सभी मामलात में बगैर किसी इब्तदाई तफ्तीश के फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज करें। उसने लापता बच्चों को तलाश करने और उनकी हिफाजत के लिए भी अहकाम जारी किए हैं जिसमें इन बच्चों को उनके कुंभों से जल्द अज जल्द मिलाना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इंतखाबी कमीशन से कहा है कि वो उन ट्राइब्यूनल्स की तरफ से अभी तक जिन अपीलों पर फैसला कर लिए गए हैं उनकी तफसीलात फराहम करे जिन्हें मगरबी बंगाल में इंतखाबी फहरिस्तों पर खसूसी तफसीली नजरसानी SIR के दौरान वोटरों के नाम हजफ करने की दरख्वास्तों की सुनवाई के लिए मुकर्रर किया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में एक बेंच ने कांग्रेस रहनुमा अधीर रंजन चौधरी की एक दरख्वास्त पर गौरखोज किया। इस दरख्वास्त में SIR से मुतालिक अपीलों को जल्द निपटाने के लिए कहा गया था। अदालत ने अब इस अपील पर सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के दौरान मामूल की ज़िंदगी मुतासिर हुई है। बारिश की खबरें रियासत के ज़्यादातर इलाकों से मिल रही हैं जिनमें राजधानी शिमला भी शामिल है। पिछले 24 घंटे के दौरान चंबा ज़िले के भटियात इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश 95.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज कुल्लू सब डिवीज़न में मूसलाधार बारिश की वजह से सभी तालीमी इदारे बंद रहे। रियासत के हंगामी हालात में काम करने वाले मरकज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीनी तोदे खिसकने और बारिश के सबब रियासत भर की 259 सड़कों पर रुकावट आ गई। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर्स और पीने के पानी के 54 जखायर भी मुतासिर हुए हैं। मंडी कुल्लू कौमी शाहरा 21, झलौगी इलाके के नज़दीक बंद है क्योंकि सड़कों पर पत्थर गिर रहे हैं। इसी दौरान शिमला के मौसमियाती मरकज़ ने 5 ज़िलों में मूसलाधार बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दीगर 4 ज़िलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो मौसम की ख़राब सूरत हाल के दौरान एहतियात बरतें और हसास इलाकों में गैर ज़रूरी तौर पर न जाएं। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक के साथ शदीद से इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उसने अंडमान और निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और राजस्थान में भी अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक के साथ शदीद बारिश की पेशगोई की है। छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, सिक्किम और मध्य प्रदेश में इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड और बिहार में जुमेरात तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की तवक्को है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। यूक्रेन में रूस की तरफ से रात भर किए गए हमलों में कम से कम 9 अफराद हलाक और दसियों जख्मी हो गए। इलाकाई गवर्नर एवान फेदरोफ के मुताबिक ज़फरेशिया में 6 अफराद हलाक और 19 जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि इन हमलों में रॉकेटों और गाइडेड एरियल बमों का इस्तेमाल किया गया। अफसरान ने बताया कि खित्ते में रूसी ड्रोन और बख्तरबंद गाड़ियों के हमलों में 3 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। कीफ में मिज़ाइल विताली क्लिशको ने बताया कि राजधानी पर एक बैलिस्टिक हमला किया गया। इमरजेंसी खदमात ने बताया है कि एक गोदाम में आग लग गई और एक शख्स जख्मी हो गया। मगरबी कोलंबिया में कल 7.4 शिद्दत का जलजला आने से कम 132 अफराद की जानें चली गईं, 570 से ज़्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। अमेरिका के अर्जियाती सर्वे के मुताबिक जलजले का मरकज़ राजधानी बोगोटा के तकरीबन 400 किलोमीटर मगरब में चोको खित्ते में सैन जोस डेल पलमार के नज़दीक था। कैनेडियन ओपन 2026 में साबिक आलमी नंबर 1 के ईगा स्वायतिक 6-2, 6-1 से जीत हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने 64 मिनट में रूस की डायना श्राइडर को शिकस्त दी। 6 मर्तबा की ग्रैंड स्लैम चैंपियन का मुकाबला अब यूक्रेन की 9वीं दर्जे की एलिना स्वेतोलिना से होगा, जिन्होंने एकातेरिना अलेक्जेंड्रोव को 3-6, 6-0, 6-3 से शिकस्त दी। भारत ने नाइजीरिया के शहर लागोस में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की दौलत मुश्तरका फेंसिंग चैंपियनशिप में अच्छी शुरुआत की है। उसने खेल के पहले दिन सोने के 4 तमगों समेत 17 तमगे जीते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने सोने के 4, चांदी के 4 और कांसे के 9 तमगे जीते हैं। चैंपियनशिप कल शुरू हुई है और जुमे को ख़त्म हो जाएगी। खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट में बहुत से मामलों पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा किए जाने के दौरान कामकाज में रुकावट अब भी जारी है। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है कि हर लापता शख्स की FIR उम्र और सिंफ से कतई नज़र फौरी तौर पर लाजमी दर्ज की जाए। यूक्रेन में रूस के रात भर के फिजाई हमलों में 9 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज और उड़ीसा में अगले 3 दिन तक शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र अलर्ट जारी किया है। और कैनेडियन ओपन टेनिस में पोलैंड की ईगा स्वायतेक सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने रूस की डायना श्राइडर को सीधे सेटों में हराया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार है, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
3: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को बधाई दे रहे हैं, जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
4: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृहमंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
5: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
6: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं केश कुमार बल।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मानसून की बदलती स्थिति और अनलीनों के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्र

0: राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
1: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शुरू करते हैं हम सभी का मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज ये कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ, आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये कार्यक्रम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म के ऐसे एक कलाकार की। जब भी हम अच्छी बॉडी या फिटनेस की बात करते हैं तो हमारे जो दिमाग में, जो जहन में जो कलाकार सबसे पहले आते हैं, आज हम उन्हीं की बात करेंगे और वो हैं हमारे सबके प्यारे कलाकार सुनील शेट्टी। जी हाँ, सुनील शेट्टी का जन्म 11 अगस्त 1961 को मैसूर राज्य के मुल्की में एक तुलु भाषी परिवार में हुआ था। दोस्तों, उनके पिता वीरप्पा सेठ जो शेट्टी मुंबई में अपना एक खुद का व्यवसाय संभालते थे। शेट्टी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश में सनावर स्थित लॉरेंस स्कूल में प्राप्त की थी। बाद में उन्होंने मुंबई में एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से वाणिज्य में डिग्री हासिल की। दोस्तों, अपनी युवावस्था के दौरान शेट्टी ने खेलों, विशेष रूप से क्रिकेट और मार्शल आर्ट में रुचि विकसित की और किक बॉक्सिंग में उन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल की। फिल्म में करियर शुरू करने से पहले वे अपने पिता के साथ कुछ टाइम के लिए उनका जो अपना पारिवारिक व्यवसाय था वो संभालते थे।

दोस्तों, सुनील शेट्टी ने अपने हिंदी फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में दिव्या भारती के साथ एक्शन फिल्म बलवान से की थी, जो एक सफल फिल्म रही। उन्हें 1994 में ब्लॉकबस्टर फिल्म मिली मोहरा और एक्शन कॉमेडी फिल्म मिली गोपी किशन से उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी, जो कि लोगों को बहुत ही पसंद आई थी। 1990 के दशक के दौरान वे हिंदी सिनेमा के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक थे। दोस्तों, मुख्य और सह मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देने वाले, विशेष रूप से एक्शन फिल्मों जैसे वक्त हमारा है, अंत, दिलवाले, कृष्णा और बॉर्डर जैसी फिल्मों में वो काफ़ी पसंद किए जाने वाले कलाकार थे। बॉर्डर में जिसमें उन्होंने कैप्टन भैरव सिंह की भूमिका निभाई थी, वो काफ़ी बेहद पसंद की गई थी दर्शकों द्वारा। और विनाशक में, धड़कन में उन्होंने एक जुनूनी प्रेमी खलनायक की भूमिका के लिए उन्हें एक जी सिनेमा की तरफ से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी मिला था।

दोस्तों बात करें फिल्म बॉर्डर की, तो उन्होंने हर भारतीय का दिल इस बॉर्डर फिल्म से अपने किरदार से जीत लिया था। और फिर आया साल 2000, जहां एक तरफ फिल्म धड़कन में देव के रूप में उन्होंने दर्शकों को खूब रुलाया, वहीं प्रियदर्शन की कॉमेडी मास्टर फिल्म हेरा फेरी

दोस्तों, सुनील शेट्टी जो थे वो अपनी फिल्मों में सारे जो जितने भी खतरनाक स्टंट होते थे वो खुद ही किया करते थे। और 1900 से 2000 के शुरुआती दौर में सुनील शेट्टी ने मुंबई पुलिस की भी काफ़ी सहायता की थी। सुनील शेट्टी ने अपनी जो उनकी पत्नी है उनके साथ 9 साल पहले एक दूसरे

डेट किया करते थे और 9 साल बाद उन्होंने शादी की। सुनील शेट्टी सफल बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने मुंबई में अपने खुद के क्लब, रेस्टोरेंट, फिटनेस क्लब भी चलाए।

दोस्तों, सुनील शेट्टी केवल एक्शन तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाने की कोशिश की और वो हर किरदार में फिट बैठे, चाहे वो हंसाने का हो चाहे रुलाने का।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार से, और आज मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। अब समय हो रहा है आपसे अनुमति लेने का, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त अर्चना गोयल। दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सावन के मौसम में सावन के ही एक गीत से, और ये फिल्म है चुपके चुपके। जब भी बारिश का मौसम हो तो इस गीत के बिना ये कार्यक्रम पूरा नहीं लगेगा। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके में गीत को आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने। एसडी वर्मन का संगीत और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया ये गीत आज भी वही ताजगी लिए हुए है। शर्मिला टैगोर की शरारती इमेज में ये गीत बेहद खूबसूरत बना है। करीब 5 दशक के बाद भी ये उतना ही कर्णप्रिय और मधुर लगता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी गीत से।

मालूम है कि किशोर कुमार की शरारतों के किस्से फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर थे। एक बार एक निर्देशक ने उन्हें कार सीन के लिए निर्देश दिया। निर्देशक ने कहा कि गाड़ी चलाइए और जैसे ही मैं कट कहूँ तो रुक जाइए। लेकिन किशोर दा ने गाड़ी चलानी शुरू की और कट कहने के बाद भी नहीं रुके। वो गाड़ी लेकर कंदाला पहुँच गए। निर्देशक ने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो कंदाला पहुँच गए हैं, आप कहाँ हैं। तो ऐसे थे हरफन मौला किशोर कुमार। वैसे आपको ये भी बता दें कि किशोर कुमार हर चीज़ अलग ही अंदाज में करते थे। वो अपने बाल भी खुद काटा करते थे। कहते हैं कि वो अपने चारों ओर 3 शीशे रख कर अपने बाल खुद काट लिया करते थे, जिसके लिए उन्होंने

एक दिलचस्प बात मैटनी मेलोडीज़ में ख़ास आपके लिए बता दें कि देवानंद साहब की फ़ैन फॉलोइंग में लड़कियों में उनके लिए ख़ास दीवानगी थी। कई बार ऐसे किस्से भी हुए जिसमें उन्हें देखकर लड़कियों ने सुसाइड तक कर लिया। ऐसे ही एक घटना फिल्म काला पानी के लिए हुई। देवानंद के लिए एक महिला ने अपनी जान तक दे दी। बाद में कोड ने उन पर काला कोट पहनने तक पर भी बैन लगा दिया था। तो ये थी बॉलीवुड के अजीबोगरीब किस्से।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मीना कुमारी जी कभी विदेश नहीं जा सकी। वो बस एक बार ही विदेश यात्रा के लिए जा सकी, वो भी सिर्फ एक बार। इंग्लैंड गई थी, वो भी अपने एक ट्रीटमेंट के लिए। उस समय वो अपने लीवर की प्रॉब्लम से जूझ रही थी। वहाँ के डॉक्टर्स ने उन्हें शराब को हाथ न लगाने के लिए मना किया था, लेकिन शराब की आदत को छुड़ा ना पाने के कारण वो और भी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज और मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल। और अब बात साधना की। बॉलीवुड एक्ट्रेस साधना ने अपने करियर में कई बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन वो कभी राज कपूर की हीरोइन नहीं बनना चाहती थी। किसी घटना की वजह से वो राज कपूर से नफरत करती थी और उनकी कुछ बातें उन्हें चुभती थीं। एक दौर था जब राज कपूर अपनी फिल्मों के लिए टॉप पर बने हुए थे, एक्टिंग के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर का काम भी कर रहे थे और कई फिल्मों का निर्माण भी किया, साथ ही कई कलाकारों को लॉन्च भी किया। साधना भी उस दौर की लीड एक्ट्रेस थी। एक बार राज कपूर ने उनको लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके कारण उनके मन में वो बात बैठ गई और उन्होंने उनके साथ काम न करने की कसम खा ली।

कभी सुना है कि किसी गीत को नींद में गाया गया हो? जी हाँ, एक ऐसा गाना जिसने एक साधारण सी फिल्म को रातों रात ब्लॉकबस्टर गीत बना दिया। हाँ जी, बात हो रही है मोहम्मद रफ़ी के गाए उस मास्टरपीस की जिसको लेकर बॉलीवुड में अफवाह रही। आखिर उस दिन रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या हुआ? बात हो रही है 1970 में बन रही फिल्म खिलौना की, जिसमें एक पागल का किरदार निभाया था संजीव कुमार ने। लोगों का ये मानना था कि इस गीत की रिकॉर्डिंग के समय रवि साहब बेहद थके हुए थे, वे गाते और बीच में झपकी ले लेते, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। इस गीत को गाते समय रफ़ी साहब ने एक पागल इंसान की तरह तड़प टूटा हो और

दोस्तों ये था मैटनी मेलोडीज़ का सफ़र। उम्मीद है आपको बॉलीवुड से जुड़ी ये बातें पसंद आई होंगी। फिलहाल आपकी दोस्त अर्चना गोयल आपसे अनुमति चाहेगी। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।
1: उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है ज़िंदगी का सोजो दरूं। तो सामईन कराम, इसी के मद्देनज़र आज ये उर्दू मजलिस की मजलिस को ख्वातीन की बज़्म से हमने सजाई है और आपके ज़ौक के मुताबिक हम लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम बज़्म ख्वातीन। सामईन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको ख्वातीन के अफकार व ख़्यालात से रोशनास कराते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो भी रंग है, बकौल अल्लामा इकबाल के वजूद जन से ही है, अदब व सकाफ़त के साथ साथ अमली दुनिया में हमारी ख्वातीन क्या सोचती है और ज़माने को किस नज़रिए से देखती हैं और साथ ही अपने एहसासात को किस तरह पेश करती हैं, जिससे हमारा अदब और समाज असर अंदाज होता है। तो सामईन, इसी के मद्देनज़र आज हमने एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया है जिसका मौजू है ख्वातीन की रहनुमाई और ख़ुद मुख्तारी, रास्ते और चुनौतियाँ। इस मुज़ाकरे की शुरका हैं

0: डॉक्टर शाहिना खान, डॉक्टर भावना शर्मा, अमीना माजिद और इनसे महवे गुफ्तगू हैं रेशमा फारूकी। तो लीजिए समाप्त कीजिए।
1: समीन आदाब। उर्दू मजलिस के इस खसूसी मुजाकरे में आप सबका हम इस्तकबाल करते हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान रेशमा। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे मुआशरे बल्कि आने वाले कल की तामीर से भी जुड़ा हुआ है। हमारा आज का मौजू है ख्वातीन की रहनुमाई और माशी खुद मुख्तारी, रास्ते और चुनौतियाँ। समय क़यादत की बात करें या फिर रहनुमाई की बात करें, यह सिर्फ किसी मनसब का नाम नहीं बल्कि एतमाद, बसीरत और ज़िम्मेदारी का इजहार है। इसी तरह माशी खुद मुख्तारी सिर्फ आमदनी हासिल करने तक महदूद नहीं बल्कि अपने फैसले खुद करने, अपनी सलाहियतों को पहचानने और मुआशरे में बावकार किरदार अदा करने का नाम है। आज हमारे साथ इस मुजाकरे में कई शोबों से वाबस्ता मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जो अपने तजुर्बात और ख्यालात की रोशनी में इस अहम मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं पर हमसे गुफ्तगू करेंगे। आपको हम बता दें कि हमारे साथ हैं प्रोफेसर शाहिना खान साहिबा। आप IIMC में प्रोफेसर रही हैं और आप आज भी एक सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं। कई इदारों में आपकी रहनुमाई से ब्रॉडकास्टिंग का काम किया जाता है। मैम, आपका हम इस्तकबाल करते हैं।
2: बेहद शुक्रिया रेशमा, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इतना अच्छा मौजू चुना है इस मुजाकरे के लिए, और मैं मुबारकबाद देती हूँ ऑल इंडिया रेडियो को और उर्दू मजलिस को भी कि ऐसे खूबसूरत टॉपिक को लेके आए हैं।
1: बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर भावना शर्मा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपका भी हम इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा अमीना माजिद साहिबा। आप एक सहाफ़ी हैं और आप भी मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही हैं, तो आप तीनों का एक बार फिर मैं इस्तकबाल करती हूँ और खैर मकदम करती हूँ। तो प्रोफेसर शाहिना खान साहिबा, सबसे पहले आपसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं आज के समाज की और समाज में जब हम देखते हैं कि ख्वातीन का जो एक मुकाम है वो क्या है, और दूसरी बात जो ख्वातीन की क़यादत की जब हम बात करते हैं, रहनुमाई की बात करते हैं, तो आज के मुआशरे में उसे किस नज़र से देखा जाता है।
2: रेशमा, बेहद शुक्रिया। और ये जो मौजू है, जैसा मैं कह चुकी कि ये क़यादत ख्वातीन की रहनुमाई और माशी खुद मुख्तारी
1: जी
2: कहाँ से आती है और कहाँ नहीं थी, अगर हम शुरू में बात करें तो ये है कि तकरीबन 40 साल पहले समझिए हमारे मुल्क में ये एक नया वलवला आया, और वलवला ये है कि जब तक हम एजुकेशन नहीं पाएंगे, तालीम वो बहुत बड़ी चीज़ है, और एक ज़माना था जब ख़वातीन को तालीम नहीं दी जाती थी 40-50 साल पहले, और जब इतना ज़्यादा जब से अब बदलाव आ गया है, और मैं उसकी जड़ वहीं ले जाऊंगी कि तालीम जब तालीम याफ्ता होने लगी औरत, तो आहिस्ता आहिस्ता समाज में बदलाव आने लगा, क्योंकि सामाजिक जिम्मेदारियां पहले होती थी कि भाई मर्द ही कमाता है और घर का काम औरत ही करती है, बच्चे पालती है वगैरह वगैरह, और पहले ये भी यूं भी होता था कि जिसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो पूरा एक ही जगह रह रहे हैं और सास भी हैं, बहू भी हैं, बेटियाँ चली गई, तो वो एक चीज़ थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब एजुकेशन बढ़ी और लड़कियों ने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, या कुछ लोग निकलने देते थे कुछ नहीं निकलने देते थे, तो उसमें ये हुआ कि नौकरी की वजह से या और माशी वजहों से अलग होने लगे, मतलब
1: बिल्कुल
2: बच्चे अपने माँ बाप से अलग रहने लगे, तो उसमें जब जिम्मेदारियाँ आती हैं घर चलाने की, वहाँ पर फिर पैसे की बात आ जाती है कि घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, और अगर एक आदमी कमाता है या फिर दो आदमी कमाएं, दो शख्स कमाएं, तो उस पे घर में समाज में बहुत फ़र्क आता है। तो मैं ये कहूँगी कि ये सामाजिक जिम्मेदारियाँ हैं घर की, घर चलाने की, घर बच्चों को पालने की, पढ़ाने की वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब होते होते अब एक जल्दी से मैंने सिनेरियो खींच दिया कि 40-50 साल से पहले जो जो हो रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते होते यहाँ तक आ गया कि अब अमूमन लड़कियाँ काम करती हैं, घर की जिम्मेदारियाँ संभालती हैं और रुपए पैसे से दोनों ही घर में लाते हैं, तो खुशहाली आती है और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि एक औरत का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। पहले भी तालीम दिया जाता था बहुत सारी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं उनको घर से बाहर निकलने तक की आज़ादी नहीं थी, वो घर में रहा करती थी। उस लिहाज से घर की जो एक माली या फिर ये कह सकते हैं एक माशी कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। लेकिन वक्त बदला, वक्त के साथ साथ ख़वातीन ने अपने आप को बदला, उनको एक नई सोच दी। भावना साहिबा, मैं आपके पास आना चाहूँगी अब, जिस तरह से अभी शाहिना खान साहिबा ने बात की कि औरत धीरे धीरे उसने ख़ुद को कहीं ना कहीं अपने आप को बदला, तालीम का एक शऊर पैदा हुआ, तो कहीं ना कहीं हालात बदले, घर के भी हालात बदले और उसके अंदर ख़ुद मुख्तारी आई, आप क्या कहना चाहेंगी?
3: सबसे पहले तो मैं शाहिना मैम के ही वेंटेज पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूँगी कि एजुकेशन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा। एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो एक इंसान को अवेयर करता है, ठीक है? तो अवेयरनेस के साथ जो कॉन्फिडेंस है, ऑफ लेट कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी था विमेन को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि कई बारी जब हम तालीम की या एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन किस डायरेक्शन में लेके जा रही है, क्योंकि महिलाओं को पहले ये भी एजुकेट किया जाता था कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप घर में रह के बच्चों को देखेंगी, घर परिवार की देखभाल करेंगी। अब एजुकेशन किस डायरेक्शन में उनको लेके जा रही है, क्या एजुकेशन उनका सशक्तिकरण कर रही है, एम्पावरमेंट कर रही है, ये ऑफ लेट हमने देखा है कि एजुकेशन विमेन को फैसिलिटेट कर रही है कि वो प्राइवेट डोमेन, हम पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म यूज़ करते हैं पब्लिक और प्राइवेट डाइकोटमी, जिसमें बोला जाता है कि पहले फीमेल्स को सिर्फ प्राइवेट डोमेन में रखा जाता था, उनको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता था। और जो पब्लिक डोमेन है वो एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे विमेन का जो एम्पावरिंग रोल है वो सबसे ज़्यादा उभर कर आता है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जब तक फीमेल्स नहीं आएंगी उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस का मतलब आज़ादी तो खैर हम बोलते ही हैं आज़ादी, पर उसका अर्थ ये है कि आप उस आज़ादी को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी बात कैसे रख रहे हैं। तो एजुकेशन ने एम्पावर भी करा है और उनको राइट वे में एजुकेट करा है।
1: बिल्कुल, और उनके अंदर फैसला साजी की भी कहीं ना कहीं कुवत आई है।
2: बिल्कुल।
1: अमीना माजिद साहिबा, आपसे बात करना चाहेंगे, आप एक सहाफ़ी हैं और नौजवान सहाफ़ी हैं, तो आप आज के सिनेरियो में जब आप अपने घर से बाहर निकली तो क्या आपको महसूस हुआ कि ख़वातीन की जो फैसला साजी है उसके अमल में बराबर की उनको शमूलियत हासिल है?
3: एक बात होती है कि तालीम की, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेन पॉइंट ये है कि ख्वातीन को तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे एक लड़की पढ़ती है तो पूरा ख़ानदान पढ़ता है
1: जी।
3: अब जैसे मैंने पढ़ाई की, मैंने मास्टर्स किया, तो उसके बाद मुझ में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया, मुझे लगा कि हाँ मैं भी अपनी बात कह सकती हूँ। जैसे आपने बात की कि हम बाहर निकलते हैं, क्या इक्वालिटी है? इक्वालिटी है, पर ये हमारे ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए रहनुमाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप फैसले लें, आप सही फैसले लें, अपने लिए आवाज़ उठाएं।
1: बिल्कुल।
3: और सही फैसले लेने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए सही फैसला लें, आप ऐसा फैसला लें जिससे समाज पे भी कुछ असर पड़े।
1: बिल्कुल।
3: तो यहाँ पे अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ, तो हम तीन बहनें हैं और हमारे जो वालिद हैं उन्होंने हमेशा से हमें ये बोला है कि आप लोग जो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो करिए, तब ये नहीं था कि आप पढ़ाई करिए और उसके बाद शादी हो जाएगी। उन्होंने हमेशा ये कहा ये फैसला आपका है, आपको शादी करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मेरी शुरुआत है एक तरीके से मेरे करियर की, तो उसका जो क्रेडिट है मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा दूंगी, मतलब मम्मी को तो मैं देती ही हूँ
1: जी जी,
3: पर पापा के ये कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा ये बोला तुम जो चाहती हो वो करो। एक वो पुरानी सोच होती है कि हाँ शायद वालिदैन जो है वो बेटियों को बोलते हैं कि हाँ तुमने पढ़ाई कर ली, 21-22 की हो गई है, अब तुम शादी करो। तो वो जो सोच है उसमें बहुत बदलाव आया। और मेरे घर में जैसे लोग बोलते हैं स्पेशली आपकी तीन बेटियां हैं, तो मतलब ये माना जाता है कि शायद तीन बेटियां हैं, जिम्मेदारियां ज़्यादा है, तो ऐसा मुझे आज तक मेरे वालिदैन ने महसूस नहीं कराया। और अभी भी मेरे ऊपर ऐसे कुछ प्रेशर नहीं है कि तुम ज़िंदगी में कुछ और करो, मतलब हमेशा मुझे एक पॉजिटिव उनकी तरफ से रिस्पॉन्स मिला है, और जिसकी वजह से जो समाज है उसकी सोच में ही बहुत बदलाव आया।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने अमीना, कि आज लोगों की जो सोच है वो काफ़ी हद तक बदल गई है। तो आज جو مرد حضرات ہیں ان کی سوچ بدلی ہے, بھائیوں کی سوچ بدلی ہے, اور آج خواتین اپنے راستے اپنے آپ بنا رہی ہیں, ان کو ایک کھلا آسمان مل رہا ہے اور وہ پنکھ لگا کر اڑ بھی رہی ہیں. وہیں شائنہ صاحبہ, جب قیادت کی بات ہوتی ہے تو قیادت کو یا پھر رہنمائی کو ہم صرف عہدے کی ہی نام دے سکتے ہیں یا پھر کسی ذمہ داری کا نام دے سکتے ہیں؟
2: دیکھیے ریشما صاحبہ, بات یہ ہے کہ میں نے بدلتا ہوا زمانہ دیکھا ہے, اس کی بات ذرا رک کے جو آپ نے سوال کیا کہ یہ جو چنوتی ہے اور آپ نے کہا امینہ کے والدین, ایک زمانہ تھا جب والدین دونوں ہی ہمیشہ سے سپورٹ کرتے تھے بچوں کو, اب بھی کرتے ہیں اور ہر طرح کے والدین ہوتے ہیں, آج کے زمانے میں بھی ہیں کہ لڑکیوں کو نہیں پڑھائیں گے یا کوئی پڑھ رہی ہے تو اس کو کیوں پڑھ رہی ہے, وہ رشتے داروں کو بھی دقت ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے, وہ بات پرسنل بات بات میں, لیکن یہ جو فیصلہ سازی ہے وہ معاشی جب آپ کے پاس مضبوطی ہے تب ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, اگر آپ نوکری نہیں کرتے, آپ گھر میں تنخواہ یا کچھ پیسہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگنور کر دیا جائے اور بڑے بڑے یا چھوٹے چھوٹے فیصلے اس کے بنا ہو جائیں. جب آپ گھر میں پیسہ لا رہی ہیں تو آپ کی مضبوطی بڑھتی ہے, پہلی بات, وقار بڑھتا ہے, اور جو آپ نے بھاونا بات کہی تھی, کانفیڈنس, کانفیڈنس ایک بہت بڑی چیز ہے اور وہ آتا ہے اس سے کہ آپ پیسہ لا رہے ہیں, آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں گھر میں, اور جب یہ ہے تو مضبوطی پھر یہ آتی ہے کہ آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے اس کو آپ پڑھائیں گی.
1: بالکل,
2: اور سرکار نے بہت اچھے پروگرام یہ چلائے پچھلے دنوں کا, کئی سالوں سے چل رہے ہیں, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, اور اس میں ریشما آپ نے بھی کام کیا ہے, میں نے بھی کام کیا ہے, اور بہت بڑا ہاتھ آل انڈیا ریڈیو کا بھی ہے اس میں, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ میں. تو کتنی لڑکیوں کی زندگیاں اور ان لڑکیوں کی جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں اگر ہم کہیں کہ انڈر پریولیجڈ, جن کے پاس اتنے وسیلے نہیں ہیں, وسائل, کئی لوگوں کا پڑھانا چاہتے ہیں بچوں کو لیکن وسائل نہیں ہوتے, تو وہ بھی مہیا کروائے گئے.
1: بالکل, سرکار کی طرف سے کئی ساری ایسی یوجنائیں بنائی گئی,
2: لاڈلی یوجنا کو دیجیے,
1: بالکل
2: لاڈلی یوجنا کو دیکھیے,
1: خواتین میں کہیں نہ کہیں مختاری آئی ہے. آپ بھاونا صاحبہ پروفیسر ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ستیہوتی کالج میں, تو آپ جب اپنے گھر سے باہر نکلیں, آپ نے تعلیم حاصل کی اور آج آپ کا ایک مقام ہے ماشاء اللہ, تو آپ نے کس طرح کی چنوتیوں کا سامنا کرا یا پھر آپ کو کب لگا کہ مجھے تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے؟
3: میں امینہ کی ہی طریقے سے, ہم دو بہنیں ہیں
1: جی,
3: اور میں بڑی بہن ہوں, اور میرے پتا جی نے ہمیشہ میری ایجوکیشن کو پرائم امپورٹنس دیا ہمیشہ, اور بائی ورچو آف ڈیوائن گریس میرا اکیڈیمک کریئر بہت برائٹ رہا. تو ایک طریقے سے ڈومیسٹکلی گھر کے اندر مجھے بہت سپورٹ ملا, مجھے میرے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے بہت سپورٹ ملا, میرے ٹیچرز وغیرہ سب نے میرا کو بہت زیادہ میرا کانفیڈینس بڑھایا ہمیشہ, دے موٹیویٹیڈ اس. اینڈ دا ادر تھنگ از کہ, اور جس وشو ودیالیہ جس کالج سے میں آتی ہوں وہاں پہ بوائز گرلس دونوں جینڈر کے لوگ ہوتے تھے, اور کبھی بھی بائسنس ہمیں نہیں دکھائی گئی. چنوتیوں کی جو آپ نے بات کری ہے, چنوتیاں ایز سچ ایکول سارے جینڈرس کے لیے سیم ہوتی ہیں. دی ادر تھنگ از جو کانفیڈینس کی میں بات کر رہی تھی, کانفیڈینس بہت ضروری ہوتا ہے, اور بہت باری جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں کو اوور لک بھی کرنا ہوتا ہے
1: جی,
3: آپ کو اپنے آپ کو لڑکا یا لڑکی نہیں دیکھنا ہوتا, آپ کو اپنے آپ کو ایک انڈیویجول دیکھنا ہوتا ہے.
1: بالکل,
3: جب تک آپ اپنے آپ کو ایز این انڈیویجول ہو از ایگر ٹو کمپیٹ ان دا ریئل ورلڈ نہیں دیکھیں گے تو آپ کا امپاورمنٹ ہو ہی نہیں سکتا, آپ اپنے لیے خود ہی بیریئرز کریٹ کر رہے ہیں اپنے مائنڈ میں.
1: بالکل,
3: منوستھتی مانسکتا بہت ضروری ہے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے.
1: بالکل آپ نے صحیح کہا بھاونا, کہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے اندر کتنا کانفیڈینس ہے یہ ضرور دیکھنا چاہیے, اور جب آپ کے اندر ایک کانفیڈینس ہوتا ہے, آپ کے اندر کوئی کلا ہوتی ہے, آپ آگے بڑھنے کا جذبہ آپ کے اندر ہوتا ہے, تو آپ اپنا مقام حاصل ضرور کرتے ہیں. آپ ایک صحافی ہیں امینہ, اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جرنلزم کی جو فیلڈ ہے, جو صحافت کی فیلڈ ہے, اس میں آج بھی خواتین کم نظر آتی ہیں, لیکن شاید اس کی وجہ سے کہ آج بھی بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جہاں خواتین کو اس فیلڈ میں جانے کے لیے منع کیا جاتا ہے, लेकिन आपको ऐसा नहीं मिला, आप आगे बढ़ी और आज अपने एक अच्छा मकाम आप बना रही हैं, लगातार आगे बढ़ रही हैं। तो आपको ऐसा कब लगा कि मुझे इस फील्ड में होना चाहिए, या फिर मैं अपने आप को किस तरह से मनवाऊँ?
4: जब मैंने देखा जो समाज

0: जैसे टॉपिक्स आए, जैसे मैं जामिया से ताल्लुक़ रखती हूँ, उस वक्त बहुत सारी चीज़ों पे बात उठती है, आए दिन उठती रहती है, कोई ना कोई टॉपिक होता है। तो जब मुझे लगा कि मेरी भी कुछ राय है और मुझे वो लोगों तक पहुँचानी चाहिए, तो तब मुझे लगा कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके ज़रिए आप लोगों तक पहुँच सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि और कोई भी फील्ड आप देखते हैं, आप इतनी जल्दी लोगों तक नहीं पहुँच सकते। और जैसे आज का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अगर आप प्रॉपर टीवी जर्नलिज्म में भी

0: कहीं ना कहीं आप कुछ काम करते हैं तो कुछ ना कुछ लोग बोलते ही
1: बिल्कुल
0: हैं
1: निगेटिविटी भी है आज,
0: जी,
1: बिल्कुल
0: और वो एक
1: बिल्कुल।
0: बात है कि जिसमें कोई बात होती है उसकी ही बात होती है। तो अगर आप कुछ करेंगे, 10 लोग अच्छा बोल रहे हैं तो 2 लोग कहीं ना कहीं बुरा बोलेंगे ही।
1: बिल्कुल
0: तो ये कि आप उन्हें नज़रअंदाज करें और आगे बढ़ें। मुझे भी चुनौतियाँ आई हैं, अभी तो खैर मेरी शुरुआत है करियर की, थोड़ी बहुत चुनौतियाँ आई। और कहीं ना कहीं घर वालों को भी कभी कभी रहता है, जैसे कोई प्रोटेस्ट है कहीं पे और वहाँ पे पुलिस बहुत है, तो घर वालों का रहता है तुम वहाँ पे मत जाना। पर मेरे अगर मैं वहाँ पे नहीं गई तो मुझे चीज़ें नहीं समझ आएंगी कि आगे क्या क्या चीज़ें और मैं क्या क्या फेस कर सकती हूँ आगे जाके। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे जाके अपनी बात लोगों तक पहुँचाना और लोगों को थोड़ा बहुत इंस्पायर करना, ये चीज़ ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं इस फील्ड में आई हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है शाइना साहिबा, आप एक प्रोफेसर भी हैं, सीनियर ब्रॉडकास्टर रही हैं, और आपका जो तजुर्बा है उससे हम अक्सर देखते भी हैं, आपसे बातचीत भी करते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में अब तक ऐसे ही न जाने आपने कितनी ख़वातीन को बहुत करीब से देखा होगा जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई होगी। तो आप क्या समझती हैं या आप क्या कहना चाहती हैं कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है या फिर जो ख़वातीन की रहनुमाई है उसमें क्या कभी आपने तब्दीली महसूस की है?
2: बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। डेकेड्स की बात कर रही हूँ, अगर हम 10 10 10 साल पिछले 50 साल के उठा के देखें तो उसमें जो वहाँ से शुरू होती है बात, जो अमीना कह रही है कि हिफाजत, आज भी वालदैन चाहते हैं ये लड़की है तो इनकी हम हिफाजत करें,
1: बिल्कुल
2: लड़का है तो वही कि देर से ना आओ। मैंने खुद इस बात को झेला भी है
1: जी
2: और बहुत साल झेला और फिर उसके बाद रिवोल्ट किया। तो क्योंकि समाज में जब तक, और एक मैं आप जानते हैं मैं शायरी भी करती
1: जी
2: हूँ,
1: जी जी
2: तो बहुत पहले 1975 में मैं लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ा करती
1: जी
2: थी,
1: जी
2: तो हरीशंकर पालिया गोल्ड मेडल की कंपटीशन था, इंटरनेशनल वीमेंस ईयर था 1975,
1: माशाल्लाह
2: तो मेरी आवाज़ तो तब से उठ रही है।
1: जी
2: तो एक लंबी नज़्म थी, मुझे वो गोल्ड मेडल भी मिला। तो उसमें है एक बंद है उसका कि हमें खुद अपनी मेहनत से बनानी है नई दुनिया, नई दुनिया को अपने जाविये से खुद सजाना है, मोहब्बत जिसकी हो बुनियाद शहर जिंदगानी में, नई तहजीब का वो कसरे आज़ादी बनाना
1: वाह
2: है।
1: क्या बात है, बहुत खूब
2: बेहद शुक्रिया। लेकिन हम उस पे आते हैं कि जो कॉन्फिडेंस की बात आपने
1: जी
2: की भावना, और पब्लिक डोमेन पे अगर मैं आऊँ तो पब्लिक डोमेन में अब यहाँ ऐसा भी है कि शाना बशाना औरतें मर्दों के साथ काम कर रही हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: और उसके बाद जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात हुई थी तो अब ये भी होता है कभी कि ये खर्चा नहीं करना है, अगर घर के बाकी लोग कह रहे हैं कि खर्चा नहीं करना है मगर औरत कहती है कि ये खर्चा करना है, मैं उठाऊंगी ये खर्चा, तो उससे एक जो खुद एतमादी
1: औरत में आई है जी
2: आई है उसकी मैं बहुत तारीफ करती हूँ। और मैं अमीना जैसी जो यंग लड़कियां हमारी,
1: जी जी
2: मेरी
1: जी
2: अगली जनरेशन है ये, तो इनको बहुत कामयाबी की तरफ आपके कदम रहें वो मैं चाहती हूँ। और एक और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगी कि ओवरलुक करने की बात, नज़रअंदाज करना जिसे हम उर्दू में कहते हैं, कि जब आपको कोई जद्दोजहद करनी है तो बहुत सारी बातें नज़रअंदाज करनी पड़ेंगी कि भाई आप क्या पहन रहे हैं, आपने मेकअप क्यों लगाया है, आप रात को क्यों आ रही हैं, आप इतनी देर से आईं तो क्यों आईं। माफ़ कीजिएगा रेशमा, ये चीज़ें मैंने खुद झेली हैं, मैं 40 45 साल से प्रोफेशन में हूँ
1: जी
2: तो
1: जी
2: मैंने खुद झेली हैं, और इधर उधर बाहर नहीं घर ही में
1: घर
2: झेली हैं,
1: में
2: और लेकिन उससे हमें मजबूती मिलती है।
1: बिल्कुल, यानी यही कह सकते हैं कि मुसलसल जो कोशिशें एक खातून अपने लिए कर रही है, और मुल्क में हम भी देख रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बात करें तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जिसकी वजह से आज ख़वातीन खुद मुख्तार हुई हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, तालीम की तरफ ना सिर्फ उनका बल्कि उनके घर वालों का भी रुझान बढ़ा है, और आज लड़का और लड़की में भी फ़र्क महसूस नहीं किया जाता।
2: माफ़ कीजिएगा मैं
1: जी
2: एक बात जोड़ूंगी कि घर वालों का रुझान, बहुत सारे घर वालों का रुझान पैसे की वजह से नहीं था, तो ये जो लाडली योजना है इसकी वजह से जब बताया जाता है वालदेन को कि भाई आपको पैसा नहीं देना है, बच्ची को आप स्कूल भेजने दीजिए, हम खर्चा उठा रहे हैं, सरकार खर्चा उठा रही है, नरेंद्र मोदी साहब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं
1: जी
2: उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाई हैं,
1: बिल्कुल
2: और लड़कियों को औरतों को पता नहीं कितनी ज़्यादा गैस, मतलब उन्होंने वो चूल्हा हटा के
1: जी जी जी
2: उससे धुएं से बचा के कहाँ
1: बिल्कुल
2: कहाँ तक गैस पहुँचाई है
1: बिल्कुल,
2: औरतों के लिए।
1: और लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो स्कीमें हैं ये ख़वातीन उससे फैज़याब हो रही हैं
2: बहुत ज़्यादा
1: और आगे बढ़ रही हैं।

0: भावना साहब आपके पास आना चाहेंगे। और जब ख़वातीन की हम क़यादत की बात कर रहे हैं, तो आज के सिनेरियो में या फिर आज के समाज में ख़वातीन के लिए मौाक़े ज़्यादा बढ़े हैं?
1: विमेन को हमें हर तबके की विमेन को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: बहुत जगहों पे ज़रूरी नहीं है कि कोई विमेन रिसेप्टिव हो टू एजुकेशन। हर महिला नहीं पढ़ सकती, मौका मिलने के बाद भी हो सकता है उनके अंदर एजुकेशन का कैलिबर ना हो। वहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है, आपका जो प्लेटफॉर्म है रेडियो का, उसके थ्रू बहुत डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जिनको प्रॉपर टर्म्स में कहा जाता है स्किल डेवलपमेंट। अगर हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट की, विमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, आपने नाम सुना होगा सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन,
0: जी
1: बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारी एनजीओस आर वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग विमेन स्किल्ड वर्कर्स। हम केवल एजुकेशन एक यूनिडायरेक्शनल अपना आउटसेट नहीं रख सकते, माइंडसेट नहीं रख सकते। हमें ये देखना है कि हम महिला सशक्तिकरण को डाइवर्सिफाई कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए विमेन स्किल डेवलपमेंट, विमेन एजुकेशन, जो भी एक महिला के अंदर क्वालिटी है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसको और पॉलिश किया जाए, तो उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आजकल हमारी सोसाइटी में आ रही हैं, गवर्नमेंट भी ला रही है। तो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जो सोशल मीडिया या दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ड्यूटी है वो ये है कि विमेन तक ये बात पहुंचाई जाए,
0: बिल्कुल सही कहा
1: क्योंकि
0: आपने।
1: पॉलिसी मेकर्स तो बहुत सारी पॉलिसीज़ बना रहे हैं विमेन के लिए, महिलाओं के लिए। विमेन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, वो पहुंच
0: बिल्कुल
1: नहीं पाती है।
0: बिल्कुल, कोशिश यही रहती है। हम रेडियो के ज़रिए बात करें या फिर
1: जी
0: बात करें, हम अपने दूरदर्शन के ज़रिए बात
1: जी
0: करें, तो
1: जी
0: आज ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं कि वो गांव का हर उस इंसान तक वो बात पहुंच सके कि आज जो सरकार है, आज जो गवर्नमेंट है, वो क्या कुछ कर रही है, ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए, उनकी तालीम के लिए और उनकी ख़ुद मुख्तारी के लिए। आप एक सहाफ़ी हैं अमीना, और आप आज एक अच्छा काम भी कर रही हैं, जैसा कि हम आप जानते हैं, सोशल मीडिया पर भी आप बहुत अच्छे प्रोग्राम्स देती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ख़वातीन को ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको बताई जाएं, जो उनको सिखाई जाएं कि वो अपने आप को मनवा सकें, अपने एक मकाम हासिल कर सकें?
1: कि इसमें सबसे पहले तो हमने एजुकेशन की हमने बहुत बात की, तालीम की
0: जी
1: हमने बहुत बात की, वो तो ज़रूरी है ही सबसे ज़्यादा। पर कुछ लोग हैं जो एजुकेशन में आगे नहीं जाना चाहते। जैसे अगर हम पुराने लोगों को देखें, तो अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है और वो पढ़ाई नहीं भी करना चाहते, सबकी अपनी मर्ज़ी है,
0: जी
1: तो उनमें कोई ना कोई एक स्किल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब हम देखते हैं कि ख्वातीन जो है जिन्हें सिलाई बुनाई आती है, तो अब वो अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर रही है, वो बुटीक स्टार्ट कर रही है, और जिससे वो खुद कमा रही है और उन्हें अच्छा भी लग रहा है कि जो काम उन्हें पसंद है वो कर रही है। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये कि अब लोग क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे
0: राइट
1: जो घर में ख्वातीन हैं उन्हें खाना बनाने का शौक़ है, ज़्यादातर लोगों को होता है, और ज़रूरी नहीं सिर्फ ख्वातीन को हो, सब ज़्यादातर लोगों को अब होता है। तो वो क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं, वो घर से खाना बना रहे हैं, जो चीज़ उन्हें पसंद है वो कर रहे हैं, और उससे वो पैसा कमा रहे हैं, और उससे उन्हें लग रहा है कि हाँ हम कुछ ज़िंदगी में कर रहे हैं, हम अब हाथ बटा रहे हैं घर में। आपको गवर्नमेंट बहुत हेल्प करी है, स्कॉलरशिप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, बहुत चीज़ें हैं, तो उनके ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: बिल्कुल शाइना साहिबा, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, अमीना ने।
2: बहुत सही कह रही हैं आप कि इसमें भी वही बात है कि जो न सिर्फ ख्वातीन, घर के बाकी लोगों का भी जो माइंड सेट चेंज हुआ है, माइंड सेट बदला है। नहीं तो पहले भी करती थी, जैसे मेरी वालिदा बहुत अच्छी बुनाई करती थी, बहुत अच्छी कढ़ाई करती थी, वो सब हमें सिखाया भी उन्होंने। लेकिन उस ज़माने में ये नहीं था कि भाई अरे तुम करके बेचोगी क्या, तुम फला हो, कोई प्रोफेशन का नाम नहीं मैं ले रही। लेकिन अब ये है, जैसे अमीना बता रही हैं, कि क्योंकि समाज में वो बदलाव आया है, इस चीज़ को नीची नज़र से नहीं देखा जाता। नहीं तो पहले ये होता था कि अगर कोई अपने घर चलाने के लिए सिलाई करके, बहुत ज़माने से औरतें कपड़े घर
0: जी
2: पे सी के करती थी, मगर वो छुप छुप के करती थी क्योंकि उसको अच्छा नहीं माना जाता था। बदलाव समाज में इसीलिए आया है कि ज़्यादा लोग तालीम पा रहे हैं
0: जी
2: और फिर ये चीज़ बुरी नहीं लगती।
1: मुझे लग रहा है कि समय के साथ जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हमारे टॉप नॉच मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बहुत अलग स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स रन करते हैं पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए, जिसमें उनको एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज के बारे में सिखाया जाता है। पैसा कमाना एक बात होती है, पैसा किस तरीके से यूज़ किया जाए, पैसा जब ना हो वो क्रंच को कैसे संभाला जाए। तो मुझे लगता है फ्यूचर बहुत ब्राइट है, प्रोवाइडेड प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत दिया जाए,
0: ये प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा दी जाए।
3: तो कोई ना कोई स्किल में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।
0: बहुत अच्छी बात कही कि स्किल होना बहुत ज़रूरी है। शाहिना साहिबा, आपसे भी यही सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि क्या हिकमत अमली अपनाई जाए
2: इसमें, जो वो हिफाजत वाली बात है कामकाजी औरत की, कि उसमें जो दूसरा सेक्स है मतलब मर्दों की, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ती
0: है। बिल्कुल, यानी हमारी जो तहजीब है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, वो हमें अपने घर से मिलती हैं, और औरत की जो इज्जत करना है वो एक घर ही सिखा सकता है, घराना सिखा सकता है। तालीम आपको शऊर दे सकती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो इज्जत करना नहीं सिखा सकती। इज्जत आपको आपके घरानों से मिलती है और वैल्यूज़ आपको आपके घर से मिलती हैं।
2: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत शुक्रिया फ़िलहाल इस खूबसूरत मुज़ाकरे के लिए। और मैं तो बस इतना ही कहूँगी हर उस खातून के लिए कि फलक भी छूट जाएंगे बुलंदी के तेरे पीछे, तू अपने बाजुओं में क़ुव्वत परवाज़ पैदा कर। हमें अपनी सोच भी बदलनी है, समाज की सोच भी बदलनी है, और अपने आप को सिक्योर रखते हुए, अपने आप को सेफ रखते हुए ज़िंदगी में मुसलसल आगे बढ़ते रहना है। फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। प्रोफेसर शाहिना खान साहिबा हमारे साथ थी, आप IIMC में प्रोफेसर रही हैं और आप सीनियर ब्रॉडकास्टर भी हैं। डॉक्टर भावना शर्मा हमारे साथ थी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप DU के सत्यवती कॉलेज में, और बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमारे साथ अमीना माजिद साहिबा मौजूद थी, आप एक सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया अपनी राय और अपना जो आपने खूबसूरत इजहार किया है हमारे साथ, हमारे जो सामईन हैं उन तक आपकी राय पहुंची है, इसके लिए मैं दिल से आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।
4: सामईन इकराम, अभी आप समाप्त कर रहे थे ख्वातीन की रहनुमाई और ख़ुद मुख्तारी, रास्ते और चुनौतियाँ मौजू पर ये दिलचस्प गुफ्तगू निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रही थीं रेशमा फारूकी। आपको ये भी बताते चलें कि इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था इंतज़ार सैफ़ी ने, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और मेहमानों के साथ, कुछ और मौजूआत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
5: मैं विशाल शर्मा, लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक के तहत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पर बोलते हुए कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह अनुरोध इसलिए किया गया क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है, जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों विधेयक बिना चर्चा के पारित हो गए। कार्यवाही पूरी होने के बाद लोकसभा को आज दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को सुचारू बनाना भी है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
6: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों

0: और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की SIR से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की याचिका पर संज्ञान लिया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। झारखंड में JPSC JSSC परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात पर असर पड़ा। राजधानी में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। 10 लाख रुपए के इनामी माओवादी सलुका कायम समेत 4 माओवादियों ने चाईबासा पुलिस केंद्र में सिंहभूम संभाग के उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा के समक्ष आत्मसमर्पण किया। श्री अनुरंजन ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने समर्पण किया है। यूक्रेन में रूस के हमले में 9 लोगों की मौत हुई है और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिजिया में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए हैं। पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। स्वियातेक ने रूस की डायना श्राइडनर को 6-2, 6-1 से हराया। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Lok Sabha today passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said the Kerala Legislative Assembly had passed a resolution in 2024 requesting the centre to change the name of the state from Kerala to Keralam. He said the request in this regard was made because the name of the state in Malayalam is Keralam, while in the constitution it is written as Kerala. The lower house also passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid uproar by opposition over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET matter. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. Meanwhile, Rajya Sabha has taken up the Tribunals Reforms Bill 2026 for consideration and passing. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. The bill aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. Earlier, the upper house also witnessed continuous uproar over various issues. The NDA today held a march inside the parliament premises over alleged police action against students in Jharkhand. The MPs were also carrying placards alleging that the opposition is avoiding discussion despite the government's assurance that Home Minister Amit Shah is ready to respond to the student protests. The march took place after the NDA parliamentary meeting, Mangal Milan. Talking to the media, Union Minister Anupriya Patel said despite the acceptance of their demands, opposition parties are not ready for discussion.
3: The government has accepted all the demands regarding the paper-related issues and has introduced a strict new law. The government has also repeatedly raised concerns regarding the Home Minister's speech. Our government has made it clear that the Home Minister should come to the Parliament and participate in a discussion. However, he is neither willing to listen to the concerns being raised nor ready to participate in the discussion. His sole aim appears to obstruct the functioning of the Parliament.
2: Congress MP Pawan Kheda alleged that the Home Minister was avoiding making a statement on the matter. In news just in, the Parliament has passed the Tribunals Reforms Bill 2026, with Rajya Sabha approving it today. The Supreme Court has clarified that its direction for immediate registration of FIRs in missing person cases applies to everyone, irrespective of age or gender. It ordered chief secretaries and police chiefs of states and union territories that have failed to comply to appear before the court and explain why contempt action should not be initiated. The matter will be heard on the 5th of October. Meanwhile, during hearing of another matter, the Apex Court asked the Election Commission to provide details of appeals decided so far by tribunals which were appointed to deal with the pleas of voter deletions during the special intensive revision of electoral rolls in West Bengal. In Ukraine, 9 persons lost their lives and several others are injured in overnight strikes by Russia. Russia's defense ministry said it struck defense industry and transport logistics targets in Kyiv and Zaporizhia. The India Meteorological Department has issued an orange alert for very heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over Odisha during the next 2 to 3 days. Amid widespread monsoon rains in Himachal Pradesh, normal life has been affected. The Mandi-Kullu National Highway 21 has been blocked near Jhalogi due to shooting stones falling on the road. In Canadian Open tennis, former world number one Iga Swiatek of Poland stormed into the semi-finals after registering win over Russia's Dina Schneider. The sixth-time Grand Slam champion will face Ukraine's 9th seed, Elena Svitolina. And that is the end of this news bulletin.
4: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। पहली सूचना श्री रमेश चंद शर्मा सूचित करते हैं कि उनका पुत्र जिनका नाम मुरारी लाल शर्मा है, वह बरौला नोएडा गली नंबर 8 से 29 अप्रैल 2026 से लापता है। मुरारी लाल की उम्र 43 वर्ष, एक गहरा बदन, कद 5 फुट 5 इंच है। उनके विषय में कोई भी सूचना थाना सेक्टर 49 नोएडा को दी जा सकती है। सूचित किया जाता है कि प्रतिमा देवी जिनकी उम्र 31 वर्ष, शरीर मजबूत, कद 4 फुट 5 इंच है, उनको अंतिम बार सदरपुर सेक्टर 45 में देखा गया। सूचना देने वाले को 50,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। सूचना थाना 39 गौतम बुद्ध नगर को दी जा सकती है या इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। फ़ोन नंबर है 9410490214। ये सूचना हमें मिली है थाना जारचा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से। कोमल पुत्री स्वर्गीय श्री मान सिंह जिसकी उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम नूरपुर, शरीर औसत, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा व चेहरा गोल है तथा लाल रंग का सलवार सूट पहने हुए है। उसके विषय में कोई जानकारी या सूचना अगर आपके पास हो तो थाना प्रभारी का नंबर है 8433218281। दूसरा फ़ोन नंबर है 8595902550। लापता का नाम है शीतल, पुत्री राम बाबू साहनी, मकान नंबर 10C, पंचकूला कॉलोनी 3, ग्राम छपरौला, थाना बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। शीतल की आयु 18 वर्ष, शरीर सामान्य, कद 4 फुट है। उनके बारे में कोई सूचना या जानकारी हो तो कृपया जानकारी को थाना बादलपुर गौतम बुद्ध नगर को सूचित करें। ये सूचना हमें प्राप्त हुई है थाना सेक्टर 63 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से। एक अज्ञात शव ग्राम हिजारसी मेट्रो लाइन के नीचे फुटपाथ पर पाया गया है। शव की आयु करीब 45 वर्ष है तथा पुरुष है। शरीर मजबूत व तंदुरुस्त, कद काठी, कद है 5 फुट 6 इंच। सूचना देने वाले को 5,100 नगद इनाम दिया जाएगा। एक अज्ञात शव मंगल मार्केट सर्विस रोड सेक्टर 25 नोएडा में 15 जुलाई 2026 को पाया गया है। शव की उम्र लगभग 30 वर्ष, शरीर एकहरा, कद 5 फुट 7 इंच, रंग गोरा। मृतक के शरीर पर सफ़ेद शर्ट तथा काले रंग की पैंट पहने हुए हैं। उससे संबंधित सूचना थाना सेक्टर 20 नोएडा को दी जा सकती है। थाना सेक्टर 20 नोएडा से उप निरीक्षक सूचित करते हैं कि एक अज्ञात शव पुरुष ग्रीन बेल्ट सेक्टर 25 नोएडा में पाया गया है। तारीख है 20 जुलाई 2026। शव की आयु करीब 40 वर्ष, शरीर सामान्य, कद 5 फुट 5 इंच और दाहिने हाथ में कलावा और काले मोती का ब्रेसलेट पहने हुए है। शव ने आसमानी रंग की शर्ट और काले रंग की हाफ पैंट पहने हैं। शव से संबंधित सूचना थाना सेक्टर 20 से प्राप्त की जा सकती है। ये सूचना हमें मिली है कोतवाली रघुपुरा से। एक अज्ञात शव फलेदा बम्बे पर मिला है। उम्र करीब 54 वर्ष तथा ये महिला का शव है। शरीर भारी है और कद 5 फुट 4 इंच है। उनसे संबंधित सूचना जानकारी थाना रघुपुरा या जांचकर्ता नंबर 9454403395 पर भी दी जा सकती है। ये थी गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं।

0: नमस्कार, मैं हूँ वान्या और स्वागत करती हूँ आपका आकाशवाणी के कार्यक्रम युववाणी में। और अगर इस वक्त आप हॉस्टल के कमरे में चाय की चुस्कियों के साथ हमें सुन रहे हैं, या मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, या फिर घर के किसी कोने में आराम से बैठे हैं, तो अगले कुछ पल हमारे साथ बिताइए, क्योंकि आज की मुलाकात सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि यादों, कहानियों और एहसासों का एक खूबसूरत सफ़र है। और इस सफ़र में मेरा साथ देंगी मेरी दोस्त, मेरी को होस्ट स्वाक्षी। नमस्कार वान्या, आज तुम्हारी आवाज़ से ही लग रहा है कि आज का शो थोड़ा खास होने वाला है। वैसे बताओ, आज हम किस सफ़र पर निकलने वाले हैं?
1: अगर अभी बता दूँ तो फिर मज़ा ही क्या आएगा साक्षी। लेकिन हाँ, आज का सफ़र जुड़ा है कहानियों से, कला से, साहित्य से और उन एहसासों से जो कभी किसी किताब के पन्नों में मिलते हैं तो कभी हमारी यादों में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल साक्षी, बचपन में ड्राइंग बनाना पसंद था?
0: बहुत, और मेरी हर ड्राइंग में कुछ चीज़ें तो पक्की होती थी। दो पहाड़, बीच में सूरज, एक नदी, एक छोटा सा घर और आसमान में दो उड़ते हुए पक्षी।
1: अरे बिल्कुल, मेरी भी आज तक समझ नहीं आया हम सबकी ड्राइंग एक जैसी कैसे होती थी। ना किसी ने सिखाया, ना किसी ने बताया और ना ही किसी किताब में देखा, फिर भी हर बच्चे की कॉपी में वही नज़ारा।
0: और सबसे मज़ेदार बात वानिया, जब रंग लाइन के बाहर भी निकलते थे ना, तब भी घर जाके एक ही बात सुनने को मिलती थी, बहुत सुंदर बनाया है। और बस उस एक तारीफ के बाद लगता था हम भी बड़े कलाकार हैं।
1: बिल्कुल, और शायद वही हमारी सबसे पहली आर्ट गैलरी थी, जहाँ ना कोई प्रतियोगिता थी, ना कोई नंबर, बस खुशी थी।
0: जानती हो वाना, मुझे आज भी नई किताबों की खुशबू ना बहुत पसंद है। स्कूल खुलने के बाद नई किताबों पे कवर चढ़ाना, नाम लिखना और फिर बिना वजह पन्ने पलटते रहना, उसकी अलग ही खुशी थी ना।
1: हिंदी की किताब में जब कोई कविता आती थी साक्षी, तो पहले उसकी तस्वीर देखते थे, फिर सोचते थे कि चलो अब पढ़ भी लेते हैं, है ना?
0: लेकिन उस समय की कविता समझना कम और याद करना ज़्यादा ज़रूरी होता था, है ना?
1: और आज देख लो, वही कविता दोबारा पढ़ो तो लगता है अरे ये तो हमारी ही ज़िंदगी की बात कर रही है।
0: वान्या, शायद इसीलिए तो कहते हैं ना, किताबें नहीं बदलती, उन्हें पढ़ने वाले बदल जाते हैं।
1: बिल्कुल साक्षी, और यही तो कला और साहित्य की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करते, ये हमें समझते भी हैं, कभी किसी पेंटिंग के रंगों में, कभी किसी कहानी के किरदारों से, और कभी किसी ऐसी कहानी से जो हमें अपने इतिहास से जोड़ देती है।
0: सही कहा वान्या, क्योंकि कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं होती, कुछ कहानियाँ लोगों की जिंदगियों में लिखी जाती हैं, कुछ संघर्षों में, कुछ आंदोलनों में और कुछ ऐसे लोगों के साहस में जिन्हें शायद इतिहास के बड़े पन्ने में उतनी जगह नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा था।
1: बिल्कुल, जब हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो हमारे सामने कई बड़े नाम आते हैं, लेकिन इस आज़ादी की कहानी में कुछ आंदोलनों में और कुछ लोगों के साहस में जिन्हें शायद इतिहास के पन्नों में उतनी जगह नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान हमारे लिए बहुत बड़ा रहा।
0: वान्या, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ऐसा कौन सा नायक है जिनकी कहानी हमें और लोगों तक पहुंचानी चाहिए, तो तुम किनका नाम लोगी?
1: साक्षी, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे याद आते हैं बिरसा मुंडा। उन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई और अंग्रेज़ों के अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटी सी जगह से उठी आवाज़ भी एक बड़ा बदलाव ला सकती है।
0: बिल्कुल वान्या, और एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है मातंगिनी हाजरा की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके जिस साहस का परिचय दिया उन्होंने, वो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है।
1: सही कहा साक्षी। और जब हम युवाओं की बात करते हैं तो कनकलता बरुआ का नाम भी याद आता है। बहुत कम उम्र में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। उनकी कहानी बताती है कि देश के लिए कुछ करने की भावना उम्र की मोहताज नहीं होती।
0: और 1857 के संघर्ष में उदा देवी पासी जैसी वीरांगनाओं ने भी तो अपनी बहादुरी दिखाई। इनकी कहानियाँ हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ तारीखों का नाम नहीं, बल्कि उन लोगों का साहस और संघर्ष का भी नाम है।
1: और शायद यही कला और साहित्य का काम भी है कि वो ऐसी कहानियों को संभाल कर रखे, कभी कविता बनकर, कभी गीत बनकर और कभी किताब के पन्नों में।
0: तो लिसनर्स, आप भी एक पल के लिए सोचिए, क्या आपके परिवार में या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कहानी बहुत खास है लेकिन शायद दुनिया उसे कम जानती है? क्योंकि हर इंसान के अंदर एक कहानी छुपी होती है।
1: तो आज के सफ़र में हम कला और साहित्य की दुनिया से होते हुए ऐसी ही कई कहानियों से जुड़ेंगे। तो क्यों ना इन खूबसूरत बातों को थोड़ा सा विराम दें और संगीत के साथ इस सफर को आगे बढ़ाएं। पेश है फिल्म जागृति का मशहूर गाना आओ बच्चों तुम्हें दिखा।

0: नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है अभी का गीत आपको पसंद आया होगा। कई बार कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो खत्म होने के बाद भी मन में धीरे धीरे गूंजती रहती हैं।
1: बिल्कुल वानिया, जैसे कोई अच्छी किताब जिसका आखिरी पन्ना पढ़ने के बाद भी उसके किरदार बहुत दिनों तक हमारे साथ रहते हैं।
0: सही कहा तुमने साक्षी। वैसे साक्षी, एक बात बताओ, तुम्हें किताबों की सबसे अच्छी बात क्या लगती है?
1: मुझे लगता है हर किताब हमें बिना कहीं जाए एक नई दुनिया की सैर कराती है, कभी किसी गांव में, कभी किसी महल में, तो कभी किसी इंसान के मन में, जिससे हम असल जिंदगी में शायद ही कभी मिल ना पाए। लेकिन मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम किताबें कैसे चुनती हो? नाम देखकर, कवर देखकर, या किसी के सलाह से?
0: सच बताऊं, पहले तो मैं सिर्फ कवर देख कर ही किताबें उठा लेती थी। लगता था जिसका कवर अच्छा है कहानी भी अच्छी होगी, लेकिन बाद में समझ आया कि असली खूबसूरती तो उसके पन्नों के अंदर होती है।
1: बिल्कुल, जैसे इंसानों के साथ होता है, पहली नज़र में हम बहुत कुछ तय कर लेते हैं, लेकिन असली पहचान बात करने के बाद ही तो होती है।
0: और शायद यही बात साहित्य भी हमें सिखाता है। हर कहानी हमें किसी और की नज़र से दुनिया देखना सिखाती है।
1: वान्या, तुम्हें याद है स्कूल में लाइब्रेरी पीरियड का कितना इंतज़ार हुआ करता था?
0: अरे बिल्कुल, और सबसे पहले यही देखते थे कि आज कौन सी किताब मिलेगी। कभी कहानी का किताब, कभी कहानी की किताब, कभी कविताओं की, और कभी ऐसी किताब जो सिर्फ तस्वीरों से ही दिल जीत लेती थी हमारी।
1: और कुछ लोग तो ऐसे भी होते थे जो किताब लेकर सीधा आखिरी पन्ना खोलते थे, ये देखने के लिए कि कहानी का अंत क्या है।
0: हाँ, और फिर पूरा मजा ही खराब कर देते थे। वैसे लिसनर्स, आप भी जरा याद कीजिए कि क्या आपने भी कभी कहानी का आखिरी पन्ना पहले पढ़ लिया था? अगर किया है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं।
1: जानती हो वान्या, मुझे आज भी डायरी लिखने की आदत है। रोज नहीं, लेकिन जब भी मन में कुछ बहुत सारी चीजें चल रही होती है ना, तो दो चार पन्ने लिख लेती हूँ और उसके बाद मन एकदम से हल्का हो जाता है।
0: साक्षी, यही तो सबसे खूबसूरत बात है। जरूरी नहीं हर लिखी हुई चीज किताब बनकर छपे। कभी कभी हमारी अपनी डायरी का एक पन्ना भी हमारी सबसे सच्ची कहानी होता है।
1: पर देखो ना वान्या, आजकल तो लोग सोशल मीडिया पर एक छोटा सा कैप्शन लिखने में भी कितना समय लगाते हैं।
0: बिल्कुल, कैप्शन 5 शब्दों का होता है, लेकिन सोच आधे घंटे की। ये लाइन ठीक लगेगी, ये इमोजी ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या सोचते हैं साक्षी।
1: लेकिन मजाक अपनी जगह, एक बात मुझे हमेशा सोचने पे मजबूर करती है। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ बनाने की क्षमता होती है। कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा गाता है, तो कोई सुंदर चित्र बनाता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं।
0: और शायद यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि कला कभी तुलना नहीं मांगती, वो सिर्फ सच्चाई मांगती है। अगर आपने दिल से कुछ लिखा है तो वही सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर आपने दिल से कुछ

0: है।
1: तो वही आपकी सबसे बड़ी पहचान है।
0: और इसलिए तो हर कलाकार की बनाई हुई चीज़ अलग होती है। दो अलग लोग एक ही सूरज बनाते हैं, तो दोनों सूरज तो वही होगा, लेकिन रंग अलग होंगे, सोच अलग होगी और एहसास वो भी अलग होगा।
1: और यही बात लेखन पर भी लागू होती है। एक ही घटना 10 लोग देखेंगे तो 10ों उसे अलग अलग तरीके से देखेंगे, क्योंकि हर इंसान दुनिया को अपनी नज़रों से देखता है। तो चलिए, अब वक्त हो गया है अपने अगले म्यूजिकल ब्रेक का। पेश है गाना कचोरी गली। तो चलिए सुनते हैं और आनंद उठाते हैं इस गाने का।

0: वाह, कितना खूबसूरत गाना है ना कचौड़ी गली। विरह को कितने प्यार से पिरोया है इसमें। वैसे वान्या, अगर तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए समय में पीछे जाने का मौका मिले तो तुम कहाँ जाना चाहोगी?
1: शायद अपने स्कूल के दिनों में स्वाक्षी, जब छुट्टी की घंटी बजते ही बस्ता उठाकर हम सबसे पहले मैदान की तरफ भागते थे। जब ड्राइंग बनाते समय रंग खत्म हो जाए तो दोस्त बिना सोचे अपना रंग दे देता था, और जब किसी कविता का मतलब समझना आया ना स्वाक्षी, तो पूरी की पूरी क्लास साथ मिलकर उसका अंदाज़ा लगाती थी। वैसे स्वाक्षी, तुम कहाँ जाना चाहोगी?
0: मैं अपने दादाजी के पास। उन्हें ना किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, और जब वो देर रात तक लैंप में नॉवेल्स पढ़ते थे, कविताएं पढ़ते थे, और इसमें सबसे दिलचस्प बात की वही चीज़ें वो हम बच्चों को सुनाया करते थे। हमें ऐसा लगता था जैसे उनकी ज़ुबानी हम कोई कहानी जी रहे हों। शायद वहीं से मुझे पढ़ने का शौक़ मिला।
1: यही तो सबसे बड़ी बात है, कला और साहित्य सिर्फ किताबों में नहीं रहते,

0: दर पीढ़ी लोगों के साथ सफ़र करते, कभी दादी की कहानी बनकर, कभी नानी की लोरी बनकर, तो कभी पापा की सुनाई हुई किसी कविता बनकर। और लिसनर्स, आज का एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए, इस हफ्ते अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए। कोई किताब पढ़िए, कुछ लिखिए, कुछ चित्र बनाइए, या फिर बस किसी शांत जगह बैठकर अपने मन की बात सुनिए।
1: क्योंकि रचनात्मकता किसी बड़े मंच से शुरू नहीं होती, उसकी शुरुआत होती है एक छोटे से ख्याल से, एक खाली कागज से, एक पेंसिल से, या फिर मन में उठे किसी छोटे से सवाल से।
0: जानती हो वान्या, आज की बातचीत के बाद ना मुझे एक बात महसूस हुई। हम अक्सर कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि हम अपने लिए समय निकालना ही भूल गए हैं।
1: बिल्कुल साक्षी, शायद कला हमें यही याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ तेजी से आगे बढ़ने का नाम नहीं है। कभी कभी दो पल रुककर किसी गीत को सुन लेना, किसी कविता को पढ़ लेना, या किसी पुराने पन्ने को पलट लेना भी जिंदगी का ही हिस्सा है।
0: और कुछ लोग अपनी इसी संवेदनशील सोच, अपने शब्दों और अपनी रचनाओं की वजह से हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस जाते हैं।
1: बिल्कुल, अब वक्त है ऐसी ही एक शख्सियत से रूबरू होने का जिन्होंने अपनी लेखनी से न जाने कितने लोगों की भावनाओं को शब्द दिए हैं।
0: तो चलिए, बातों के इस सिलसिले में यहीं थोड़ा सा विराम देते हैं। संगीत के इस छोटे से पड़ाव के बाद हम मिलेंगे हमारे बेहद खास सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक में,
1: जहाँ आज हम बात करेंगे एक ऐसे रचनाकार की जिनके शब्द सिर्फ पढ़े या सुने नहीं जाते, बल्कि महसूस किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले सुनते हैं आज का अगला गीत। किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म गगन की छाओं का गाना आज चल के तुझे।

0: है अभी का गीत आपको पसंद आया होगा।
1: और सच कहूँ
0: तो कभी कभी ये गीत खत्म हो जाता है लेकिन उसके एहसास हमारे भीतर बहुत देर तक ठहरे रहते हैं।
2: बिल्कुल वान्या, और शायद यही एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। वो अपना काम पूरा कर देता है लेकिन उसका असर लोगों के दिलों में चलता ही रहता है।
0: और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक कलाकार की जिनके लिखे हुए शब्द कई पीढ़ियों के साथ बड़े हुए। हमारे आज के मन से माइक्रोफोन तक की शख्सियत हैं गुलजार साहब।
2: वान्या, मुझे हमेशा से एक बात सोचने पर मजबूर कर देती है। जब हम गुलजार नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है? किसी को उनके गीत याद आते हैं, किसी को उनकी नज़में, तो किसी को उनकी फिल्में। लेकिन शायद हर किसी का जवाब थोड़ा अलग होगा।
0: बिल्कुल साक्षी, और यही किसी बड़े रचनाकार की सबसे बड़ी पहचान होती है। वो सिर्फ एक काम से नहीं बल्कि अपनी सोच से पहचाना जाता है। वैसे साक्षी, क्या तुम्हें पता है गुलजार साहब का असली नाम क्या है?
2: हाँ, उनका असली नाम है संपूर्ण सिंह कालरा और उनका जन्म 18 अगस्त 1934 को आज के पाकिस्तान में स्थित दीना नामक स्थान पर हुआ था।
0: बिल्कुल साक्षी, फिर देश का विभाजन हुआ, हालात बदले और उनका सफर उन्हें मुंबई ले आया। लेकिन सोचिए, एक नया शहर, नई जिंदगी, नई चुनौतियाँ और ऐसे समय में बहुत से लोग हार मान लेते हैं।
2: लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने सपने को भी नहीं छोड़ा। शुरुआत आसान नहीं थी, उन्होंने छोटे छोटे काम भी किए, यहाँ तक कि मुंबई आने के बाद शुरुआत में एक गैरेज में भी काम किया। दिन में काम और रात में जब समय मिलता तो लिखना, लेकिन लिखना कभी नहीं छोड़ा।
0: और शायद यहीं से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हम अक्सर मंजिल को देखते हैं लेकिन उस मंजिल तक पहुँचने वाला रास्ता कितना कठिन रहा होगा ये भूल जाते हैं।
2: बिल्कुल। वैसे वान्या, अगर कोई आज तुमसे पूछे कि एक अच्छा लेखक बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो तुम क्या कहोगी?
0: मैं कहूँगी कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान लोगों की भावनाओं को समझता है वही उन्हें शब्द भी दे सकता है। तुम क्या कहोगी साक्षी इस बारे में?
2: मैं कहूँगी एक अच्छा श्रोता बनना। जो लोग को ध्यान से सुनता है वही उनकी कहानियाँ भी लिख सकता है।
0: वाह, बहुत सुंदर बात कही तुमने। शायद इसलिए गुलजार साहब की रचनाओं में हर उम्र का इंसान खुद को कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेता है।
2: लिसनर्स, जरा आप भी सोचिए, क्या कभी किसी कविता या किसी गीत की कोई पंक्ति आपके दिल को इतनी गहराई से छू गई है कि आज भी याद हो? हो सकता है आपको पूरी कविता याद ना हो लेकिन उसका एहसास आज भी याद होगा।
0: और यही तो एक लेखक की सबसे बड़ी सफलता है, उसके लिखे हुए शब्द कागज तक सीमित नहीं रहते, वो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं।
2: वान्या, जानती हो, मुझे गुलजार साहब की एक बात बेहद पसंद है। उन्होंने हमेशा मुश्किल भावनाओं को भी बहुत आसान शब्दों में पिरोया, ऐसे शब्द जो सीधा दिल तक पहुंचते हैं।
0: और शायद यही वजह है कि उन्हें सिर्फ गीतकार कहना या सिर्फ लेखक कहना उनके व्यक्तित्व को छोटा कर देना होगा। वो एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने शब्दों को भावनाओं की आवाज़ दी।
1: वाह,
2: सच कहूँ वान्या, किसी कलाकार की सबसे बड़ी पहचान शायद यही होती है कि उसके शब्द उसके जाने के बाद भी लोगों के साथ चलते रहते हैं।
0: हाँ साक्षी, और गुलजार साहब की रचनाएं भी कुछ ऐसा ही एहसास छोड़ जाती हैं। उन्हें पढ़िए या सुनिए, हर बार कोई नया मतलब, कोई नई बात दिल तक जरूर पहुंचती है।
2: तो क्यों ना उनकी बात करते करते अब उनके लिखे एक खूबसूरत गीत का भी आनंद लिया जाए।
0: जी हाँ, फिल्म हम आपके हैं कौन से पेश है मौसम का जादू, और इस गीत के बाद हम लौटेंगे क्विक बज के साथ।
3: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

0: इतना सुहाना मौसम और ये मौसम का जादू है मितवा, क्या बात है। वैसे वान्या, इतनी देर से हम किताबें, कविताएं और कलाकारों की बातें कर रहे हैं, जरा देखते हैं तुम्हारी साहित्य की क्लास कितनी मजबूत है।
1: अच्छा जी, अब इसका मतलब कि तुम मेरी परीक्षा लोगी साक्षी?
0: सिर्फ तुम्हारी ही नहीं वान्या, हमारे लिसनर्स की भी, क्योंकि अब वक्त हो गया है हमारे पसंदीदा सेगमेंट क्विक बस का। तो चलिए शुरू करते हैं राउंड वन। पहला सवाल, अगर तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए सिर्फ एक चीज चुननी हो तो वो क्या होगी, किताब या फिल्म?
1: बिना सोचे बोलूंगी किताब।
0: इतनी जल्दी जवाब, कारण भी बताओ।
1: क्योंकि फिल्म हमें कहानी दिखाती है साक्षी, लेकिन किताब उसे अपनी कल्पना से जीने का मौका देती है। अरे अब तो तुम देखो ना, बहुत सारी किताबों की कहानी

0: कंपनियों से अब फिल्में भी बन रही हैं। अभी वो फिल्म आई जिसका नाम था मुसाफिर कैफे, पुरानी किताब गुनाहों के देवता पर ही तो आधारित है उसकी कहानी। अब यही सवाल हमारे लिसनर्स के लिए भी, आप क्या चुनेंगे, किताब या फिर फिल्म? अब राउंड टू में चलते हैं साक्षी, अब मेरी बारी है और एक आसान सा सवाल है तुमसे, बताओ गोदान किसने लिखी?
1: ये तो बहुत ही आसान है, मुंशी प्रेम।

0: अगर तुम्हें किसी एक लेखक के साथ एक कप चाय पीने का मौका मिले तो किसके साथ बैठना चाहोगी?
1: ये तो बहुत मुश्किल सवाल है साक्षी, लेकिन शायद गुलजार साहब, क्योंकि मैं उनसे बातें कम ज़्यादा सुनना चाहूँगी। और तुम?
0: मैं मुंशी प्रेमचंद जी के साथ, क्योंकि मैं जानना चाहूँगी कि उनके किरदार आखिर उनके मन में आते कैसे थे।
1: चलो चौथा राउंड करते हैं और एक लाइन में जवाब देना तुम। बताओ आर्ट क्या है?
0: आर्ट जो बिना बोले दिल तक पहुँच जाए। और लिटरेचर?
1: लिटरेचर जो किसी और की कहानी पढ़कर हमें खुद से मिलवा दे।
0: आखिरी सवाल, और इसका जवाब हमारे लिसनर के मन तक को भी ज़रूर पहुंचना चाहिए। और अगर आपको एक दिन के लिए किसी किताब का किरदार बनने का मौका मिले तो आप किस कहानी का हिस्सा बनना चाहोगे?
1: और अगर आप खुद एक किताब लिखें तो उसका नाम क्या होगा ये भी बताइए। ज़रा सोचिए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी की सबसे दिलचस्प कहानी अभी लिखी जानी बाकी हो।
0: सच कहा, क्योंकि हर इंसान अपने आप में एक पूरी किताब है, बस उसे पढ़ने वाला होना चाहिए।
1: इसी खूबसूरत बात के साथ अब वक्त है एक और प्यारी सी गीत।

0: संदेशे आते हैं, मतलब इंडिपेंडेंस डे आते हुए ये सारे गाने स्कूल के दिन की याद दिलाते हैं ना। और वान्या, पूरे शो में हमने कभी किताबों की बात की, कभी गीतों की बात की, तो कभी कलाकारों की, लेकिन एक बात बार बार महसूस हुई है।
1: क्या थी वो बात साक्षी?
0: यही कि हर अच्छी रचना अपने समय की कहानी होती है। कोई कविता किसी दौर का आईना बन जाती है, कोई गीत किसी पीढ़ी की याद बन जाती है, और कोई किताब सालों बाद भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है।
2: और शायद इसी वजह से इतिहास भी हमें आकर्षित करता है, क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीखों का नाम नहीं, वो उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपने फैसलों से पूरे समाज पर असर छोड़ा। और इसी के साथ अब समय हो गया है टुडे इन हिस्ट्री का। आज ही के दिन 11 अगस्त 1908 को भारत के वीर क्रांतिकारी खुदीराम बोस को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दी। सिर्फ 18 वर्ष की आयु में उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
0: 18 साल, सोचकर ही हैरानी होती है ना, जिस उम्र में हम अपने करियर, दोस्त या आने वाले कल के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में उन्होंने पूरे देश के भविष्य के बारे में सोचा।
2: और शायद यही इतिहास हमें सिखाता है कि इंसान की पहचान उसकी उम्र से नहीं, उसके इरादों से होती है।
0: तो इसी के साथ मैं हूँ साक्षी
2: और मैं हूँ वान्या।
0: मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए,
2: और अपनी जिंदगी में कला, साहित्य और अच्छे विचारों के लिए हमेशा थोड़ी सी जगह जरूर बनाए रखिए।
0: फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई कहानियों और एक नए एहसास के साथ।
2: लेकिन जाते जाते आपको भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद,
0: जय भारत।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। 5 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और उसके स्थिति पर कोई भी बदलाव संभव नहीं है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कोई भी तथ्यों को नहीं बदल सकता कि अरुणाचल भारत का हिस्सा है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है।
1: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता जारी है और इसकी प्रगति संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारना भारत की प्राथमिकता है। श्रीलंका और भूटान के साथ रिश्ते और बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को ब्रिक्स आउटरीच सत्र का निमंत्रण दिया गया है। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी और लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 2015 में अधिकरणों के युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। उन्होंने कहा कि आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए विधेयक लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
3: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
1: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायालय की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया है। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। 10 लाख रुपए के इनामी माओवादी सलूका कायम समेत 4 माओवादियों ने चाईबासा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। श्री अनुरंजन ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश का और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Lok Sabha today passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said, "The Kerala Legislative Assembly had passed a resolution in 2024 requesting the centre to change the name of the state from Kerala to Keralam." He said the request in this regard was made because the name of the state in Malayalam is Keralam, while in the constitution it is written as Kerala. The lower house also passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act of 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid uproar by opposition over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET matter. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. Parliament has passed the Tribunals Reforms Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. When the House met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. The bill aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. The legislation also proposes to establish a National Tribunals Commission. After passing the bill, the House took up special mention in which various members raised the issues of public importance. The chair adjourned the House for the day after completing its business to meet again at 11 a.m. tomorrow. The NDA today held a march inside the Parliament premises over alleged police action against students in Jharkhand. The MPs were also carrying placards alleging that the opposition is avoiding discussion, despite the government's assurance that Home Minister Amit Shah is ready to respond to the student protest. The march took place after the NDA parliamentary meeting Mangal Milan. Talking to media, Union Minister Anupriya Patel said, despite the acceptance of their demands, opposition parties are not ready for discussion.
5: The government has accepted all the demands regarding the paper-related issues and has introduced a strict new law. The government has also repeatedly raised concerns regarding the Home Minister's speech.

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, सावन का महीना है और आज तो बहुत ही पवित्र दिन, जल जो कहते हैं आज जलाभिषेक है। सब मंदिरों में जो भी हमारे शिव भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो कांवड़ लेके लौट रहे हैं, आज शिव जी का जलाभिषेक कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, सावन की शिवरात्रि पर लोक रंजनी कार्यक्रम भी शुरुआत करते हैं एक शिव भजन से, और कलाकार होंगे राम सिंह।
0: आइए सुनते हैं।

0: शिव शंकर भोले भाले दुनिया के रखवाले, और ऐसे ही हमारी सरहदों के रखवाले हैं हमारे सैनिक। और अगर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें तो अगस्त का महीना बिल्कुल हम पूरे जोश और जुनून के साथ मनाते हैं अपना
1: जी
0: स्वतंत्रता
1: बिल्कुल
0: दिवस भी, और पूरा अगस्त ही हमारा इन्हीं जश्नों के साथ मनता रहता है।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो महीना होता है ये पावन महीना तो कहते हैं सावन का, लेकिन ये देशभक्ति से भी ओतप्रोत होता है, क्योंकि 15 अगस्त इस महीने में हम मनाते हैं और अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। इसी कड़ी में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं गोपाल सिंह बर्मन की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: मेरा देश हुआ आज़ाद, खुशियों के दिन आए हैं। यकीनन ये गाना जो लोकगीत हम सुन रहे थे और ये मंथ जो महीना चल रहा है अगस्त का, हर किसी की ज़ुबान पर ये गाना होगा और ये देशभक्ति गीत होगा।
1: बिल्कुल, देखिए हमने देशभक्ति भी बात की और शिव भजन भी अपने श्रोताओं को सुनवाया। और ये सावन का महीना है जिसमें तीज का त्यौहार भी आता है। हमारी जो महिलाएं होती हैं वो सजती संवरती हैं और साथ साथ झूला झूलने की भी परंपरा जो
0: इस
1: सदियों से
0: हाँ
1: चली आ रही
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल, इस महीने में, सावन के महीने में और तीज के त्यौहार पर तो बहुत ही कहते शुभ माना जाता है। जो सुहागन महिलाएं होती हैं तीज के त्यौहार पर सब इकट्ठी होती हैं, गीत गाती हैं और झूला झूलती हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला लोकगीत केशव कुमार की आवाज़।

0: श्रोता सुन रहे थे केशव कुमार की आवाज़ में ये सावन गीत।
1: के साथ ही आज का लोकरंजनी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
0: नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए आप प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अमीषा पटेल।
3: नमस्कार।
2: और अमीषा, आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम हॉकी वर्ल्ड कप से, और हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो शुरुआत तो हॉकी वर्ल्ड कप की बहुत पहले हुई थी, और भारत ने भी जो इसमें स्वर्ण पदक जीता है हॉकी वर्ल्ड कप में, वो भी बहुत पहले जीता था। हॉकी वर्ल्ड कप में हमने एक ही मात्र स्वर्ण पदक जीता है, और वो जीता था हमने 1975 में।
3: जी बिल्कुल अजय जी, और इस वर्ष भी जो भारत की दोनों टीमें, महिला हों चाहे पुरुष, उन दोनों से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी। जैसा कि 15 अगस्त 2026 में जो बेल्जियम और नीदरलैंड है, उसके ऐतिहासिक मैदानों में एक बार फिर सबसे बड़े हॉकी महाकुंभ का गवाह बनने जा रहे हैं वहाँ के मैदान। और हॉकी इतिहास में यह तीसरी बार होने जा रहा है कि जब दुनिया की टॉप 16 पुरुष और 16 टीमें एक साथ एक ही समय पर विश्व विजेता बनने के लिए मैदान पर उतरेंगी। और अजय जी, दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों ही भारतीय टीमों को पूल डी में रखा गया है, जहां पुरुष टीम 51 साल के सूखे को खत्म करने की जिद के साथ उतरेगी, वहीं हमारी जो महिला टीम है वह अपनी खोई हुई साख वापस पाने के इरादे से मैदान पर होंगी। लेकिन इस बार चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं, टूर्नामेंट का फॉर्मेट नया है और दोनों टीमों पर उम्मीदों का भारी दबाव है। क्या आपको लगता है कि इस बारी टीम इंडिया का यह जो अवतार है इतिहास रचेगा?
2: बिल्कुल रचेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है अमीषा कि भारतीय टीम लगातार 2 ओलंपिक्स में पदक जीत चुकी है, यानी कि अब भारतीय टीम वो भारतीय टीम है जो कभी भी विश्व विजेता बन सकती है। हमारे पास 2 युवा गोलकीपर हैं इस बार, और साथ ही हमारी जो टीम है वो बहुत ही बैलेंस है, और जिस तरह से हमारे डिफेंडर्स हैं, जर्मन है डिफेंडर में, हरमनप्रीत है और संजय है, बहुत ही अनुभवी हमारे पास डिफेंडर हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हॉकी हो, फुटबॉल हो, जो फील्ड गेम्स होते हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो मिडफील्डर्स का होता है। मिडफील्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक ज़माना था जब हम कहीं ना कहीं हॉकी में थोड़ा सा पीछे रह जाते थे, क्योंकि हॉकी की अगर स्किल की बात करें तो स्किल तो हमारी हमेशा से ही अच्छी है। जब हम पुराने ज़माने की अगर हम बात करें, जब ओलंपिक्स में हमने इतने सारे

0: स्वर्ण पदक जीते, हमारे महानतम खिलाड़ी भारत में पैदा हुए हैं हॉकी के, तो वो स्किल की हमारे पास कभी भी कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक बात की कि जब एस्ट्रो टर्फ आया 80 के दशक में, तो उस समय ये बात शुरू हुई कि एस्ट्रो टर्फ पर गेंद बहुत तेज़ ट्रैवल करती है, स्किल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि घास के मैदान पर और एस्ट्रो टर्फ पर स्किल को थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा फास्ट हो जाता है स्किल। तो उस समय हमारे खिलाड़ियों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये थी, एक तो एस्ट्रो टर्फ बहुत कम थे, बहुत कम जगहों पर एस्ट्रो टर्फ पर प्रैक्टिस कर पाते थे, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी स्टेमिना और जो हमारा एंड्योरेंस, हमारी फिटनेस थी। लेकिन उसके बाद लगातार चीज़ें बदलती गईं और पिछले 1 दशक में तो हॉकी का एकदम रिवाइवल हो गया है भारत में, और बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हॉकी के निकल के आए हैं। और सबसे बड़ी बात, आज अगर हम फिटनेस की बात करें तो चाहे हमारी महिला हो या हमारे पुरुष, दोनों का ही फिटनेस का जो स्तर है किसी भी यूरोपियन टीम से कम नहीं है, बल्कि कई स्तर पर तो हम यूरोपियन खिलाड़ियों से भी अधिक हमारी फिटनेस है, क्योंकि अब अवेयरनेस आ गई है। पहले होता था कि हम फिट रहने के लिए खेलते थे, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, अब हम खेलने के लिए फिट हो रहे हैं। तो ये जो मानसिकता बदली है, इससे हमारे खेलों में बहुत सुधार आया है, और हॉकी में तो अब हम बहुत बड़ी एक पावर हाउस के रूप में दोबारा उभर के सामने आए हैं।
1: जी बिल्कुल। और जो सीनियर टीम के सामने एक चुनौती भी होगी कि यूरोप में जो उन्हें टर्फ है वह काफ़ी कठिन मिलता है, और जो हॉकी की ज़मीनी बुनियाद की अगर हम बात करें अजय जी, तो अभी कोयम्बतूर में संपन्न हुई जो 16th यानी कि 16वीं हॉकी इंडियन जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी 2026 की, उसका खिताब उड़ीसा ने जीता है। ये जो फाइनल है ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में हुआ था, जिसमें उड़ीसा जो है उसने जीत दर्ज की है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे आजकल हम देख रहे हैं जो उड़ीसा मॉडल है, ये मॉडल मेरे ख्याल में तो ये सारी स्टेट्स को अपनाना चाहिए, ताकि ऐसे ही नए टैलेंट उभर कर आगे आते रहें। और हो सकता है कि हम जो ये भारत में हमें सूखा देखने को मिल रहा है वर्ल्ड कप में मेडल्स का, ये भी हमें जल्दी ही इसका सूखा खत्म होगा।
0: आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, और जिस तरह से आपने बताया मध्य प्रदेश की टीम फाइनल में थी, तो मध्य प्रदेश में भोपाल में साई का सेंटर है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर है हॉकी का, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी वहाँ से ट्रेनिंग करके आगे बढ़े हैं। ठीक इसी तरह से उड़ीसा ने हॉकी को, एक तरह से हम कहें तो उड़ीसा आज हॉकी का पालना बन गया है। हॉकी के बहुत अच्छे बड़े खिलाड़ी उड़ीसा से आते हैं, और वो एक क्षेत्र है उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया, और ये एक पूर्वी भारत का और मध्य भारत का एक क्षेत्र है। यहाँ से बहुत सारे बड़े खिलाड़ी, दिलीप तिर्की जो इस समय हमारे हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो खुद उसी ही क्षेत्र से आते हैं। वहाँ पे हॉकी के लिए दीवानगी है, छोटे छोटे स्कूलों के मैचों में भी आप देखेंगे कई सौ लोग उन मैचों को देखने आते हैं। तो जब ये चीज़ें धरातल पर आती हैं, क्योंकि इतनी दीवानगी अगर हमारे लिए, हमारे पास किसी खेल के लिए है, तो हम उन लोगों को देखने तक ही क्यों रखें, उनको बोलें कि आप खेलने आइए, अपने बच्चों को खेलने भेजिए। यही वो उड़ीसा का हॉकी मॉडल है, जहाँ पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और लोगों को बोला कि आप खेलने आइए, और जो खेलने आया उसको सुविधाएं दी। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं भारत सरकार की, खासतौर से खेलो इंडिया जब से शुरू हुए हैं, जितने भी खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया लीग्स होती हैं, तो वहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी आज राष्ट्रीय टीम में खेल रहे हैं। तो ये एक पूरी एक अलग जागृति आ चुकी है हॉकी में, और किस तरह से हॉकी में चीज़ें हो सकती हैं, वर्ल्ड कप में क्या क्या हो सकता है, इस पर हमने बात की एक बहुत ही खास मेहमान गुणदीप सिंह, जो ओलंपियन है, जिन्होंने ओलंपिक खेला हुआ है और बड़े खिलाड़ी रहे हैं हॉकी के। हमने उनसे पूछा इस बार क्या संभावनाएं हैं हमारी पुरुष हॉकी की, और क्या महिलाओं के अंदर भी वो दमखम है कि वो वर्ल्ड कप जीत सकती हैं, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: जो पिछले समय से देख रहा हूँ भी भारतीय टीम आगे से बहुत अच्छी खेल रही है, पर इस बार थोड़ा सा बात करते हैं गोलकीपर पे। गोलकीपर का मेरे को लगता है भी उसका शायद हमें थोड़ी कमी महसूस होगी गोलकीपर के साइड।
0: हमने पिछले काफी लंबे समय से देखा है कि श्रीजेश ने जिस तरह से हमें कई अहम मौकों पर जीत दिलाई, साथ ही जिस तरह से पाठक खेलते आ रहे थे, अब दो नए युवा गोलकीपर हैं, कितना प्रेशर होगा इन दोनों के ऊपर?
2: दोनों पे बहुत होगा। सूरज वैसे तो काफी देर से टीम के साथ है, मैं ये सोच मेरी ये सोच है कि वो बेटर परफॉर्म करेगा, पर फिर भी एक खुद पे या पाठक ना होना उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी।
0: इतनी फास्ट हॉकी हो गई है कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में काउंटर अटैक आ जाता है, और गोलकीपर एक बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं उस अटैक को रोकने के लिए। तो गोलकीपर के लिए क्या कुछ अलग से ट्रेनिंग भी कराई जाती है?
2: बिल्कुल।

0: आज के जो मॉडर्न ट्रेनिंग है उसके लिए बहुत सी स्किल्स हैं जो गोलकीपर को स्पेशली तैयार किया जाता है उसके लिए, खासकर जैसे काउंटर का। आज गोलकीपर वो नहीं है, अभी गोल में खड़े हो आप, गोल में अब 2-1 में भी गोलकीपर गोल रोक सकता है। जैसे हमारा सीरीज था, वो तो उसको तो आप बात में एक्सीलेंट, वो तो उसके जैसा गोलकीपर तो शायद दोबारा कब आएगा हम देख पाएंगे, वो बड़ा मुश्किल होगा। पर श्रीजेश जैसा कोई नहीं, पर ये लड़के पाठक उससे बेटर खेल रहा था और अच्छा खेल रहा था, वो भी हम उसकी लाइन में था। और ये मैं सूरज और दूसरा गोलकीपर जो नया मोहित है आया है, मैं उस पर बात करूंगा। क्योंकि अगर ये लड़के अच्छा खेलते हैं, अगर प्रो लीग में इन्होंने परफॉर्म किया है, ऐसी बात नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूँ। पर ये वर्ल्ड कप कुछ और होता है, जिसमें हम उम्मीद ये करते हैं कि वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें इनको बहुत धैर्य से खेलना होगा।
1: भारतीय टीम हमारी अब पूरी तरह से तैयार है। लगातार हमने 2 बार अपने ओलंपिक्स में लगातार पदक जीते हैं, और अब भारत का जो पूल है उसमें इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स की टीम है। तो आपको लगता है सर कि हमारा जो पूल है वो कहीं ना कहीं इस तरह से है कि हम वहाँ पर आसानी से जीत सकते हैं, या कम से कम हम उस पूल की सबसे बेस्ट टीम है?
0: अभी तो मैं ये कहूंगा कि हम उस पूल की सबसे बेस्ट टीम है। बाकी जो अभी नया फॉर्मेशन आया है उसके हिसाब से इंडिया को बहुत फायदा होगा, क्योंकि अभी जो फायदा आया हुआ है, जो पूल में अगर इंडिया ऊपर जाता है, इंडिया और पाकिस्तान आते हैं, जैसे आपको मालूम होगा, उसमें अगर पाकिस्तान को जीत के इंडिया ऊपर जाता तो वो अपने 3 अंक लेकर ऊपर ग्रुप में जाएगा।
1: फिटनेस का लेवल बहुत अच्छा हो गया है, और एक समय था जब हम कहते थे कि यूरोपियन खिलाड़ी हमसे फिटनेस में बहुत आगे हैं, लेकिन आज सब कुछ बराबर हो गया है। हमारे खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है, आप जैसे बड़े खिलाड़ी, कोचेज बहुत मेहनत करा रहे हैं खिलाड़ियों से। तो सर आज की डेट में अगर हम वर्ल्ड हॉकी को देखते हैं तो कितनी उम्मीदें लगती हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे और वर्ल्ड कप जीते?
0: मैं पहली बात करूंगा, वर्ल्ड कप के पहले 4 में तो भारत को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये भारत की टीम फाइनल खेलने वाली है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे जो युवा खिलाड़ी ना, उन्होंने हॉकी को बहुत चेंज किया, ये स्पेशली ये पिछले 3 सालों में जो हमारा 21 में मेडल आया उसने हमें बहुत चेंज कर, हम जो उम्मीद करते हैं, जो युवा खिलाड़ी हमारे आ रहे हैं वो इतने अच्छे हैं, मैं आपको बोलूँ हमसे भी अच्छे होंगे शायद।
1: जो कई स्कीम्स इस समय भारत सरकार की चल रही हैं, खेलो इंडिया या हॉकी को बढ़ाने के लिए और भी कई सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सर अब उनका रिजल्ट आना शुरू हो गया है।
0: बिल्कुल कुछ तो है ना, क्योंकि देखो स्टेट्स भी, मैं खेलो इंडिया के अगर होने से स्टेट भी अपनी बाकी स्पोर्ट्स में, ये नहीं हॉकी में, सब सारी स्पोर्ट्स में भी वो करवाने लग गई हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट की होती हैं, स्टेट की गेम्स अब दोबारा रिवाइव हो गई हैं, उससे ये सब खेलो इंडिया, अब उनको मालूम है अभी खेलो इंडिया में जाना है तो ये सब करवाना पड़ेगा और हम वहां पहुंचेगा। खेलो इंडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
1: सर आपके हिसाब से भारतीय टीम में वो कौन से 3 ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जो हमारी जीत में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं?
0: मैं इसमें सबसे ज्यादा अपने हरमनप्रीत मंदीप, अपना मंदीप और आप जो मनप्रीत है, 3 मेरे मेरे लिए ये सबसे बड़े हैं, क्योंकि ये डिफेंस 2 है और जो हमारे मनदीप है वो गोल स्कोरर है, ये सबसे बड़े, इन पे बहुत ज्यादा डिपेंड होगी। बाकी भी हमारे फॉरवर्ड अच्छे हैं, ये नहीं मैं कहूंगा बाकी नहीं अच्छे, पर ये 3 सबसे मेन है।
1: आप हॉकी के बड़े जानकार हैं, आज वर्ल्ड हॉकी में वर्ल्ड कप की बस पूरी तरह से तैयारी जो हो चुकी है और सारी बड़ी टीमें वर्ल्ड कप खेलने के लिए अब आ रही हैं, कौन सी 4 ऐसी बेहतरीन टीमें हैं आपके हिसाब से जो सेमीफाइनल तक पहुंचेंगी?
0: मैं जो अभी अभी जो देख रहा हूँ, जो अभी प्रो लीग के हिसाब से, वो हॉलैंड, स्पेन को भी मैं करूंगा, इंडिया और बेल्जियम, पर मैं अभी जर्मनी को उतना नहीं कह रहा, पर बेल्जियम और जर्मनी, ये 5 टीमें मैं बता दूं।
1: सर थोड़ी सी बात महिला हॉकी की भी कर लेते हैं। पिछले कुछ समय से महिला हॉकी में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी आए हैं, काफ़ी तरक्की हुई है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी अब भारतीय महिला हॉकी के जो खिलाड़ी हैं वो खेलते हैं।
0: जैसे देखो पिछली ओलंपिक्स में हमने उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इंडिया वहां तक पहुंच सकता है, पर उन्होंने, लड़कियों ने करके दिखाया, तो इसलिए मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं भी लड़कियां इस बार पहले 4 में आ सकती, बहुत अच्छा खेल रही हैं। मैं उनके उन पे डिपेंड कर, मेरी कहें वो उन पे है, क्योंकि लड़कियों में अभी क्या जोश दोबारा आया है, क्योंकि पहले हमें लगता था अभी यार ये भाग नहीं, पर तो अब वो तो अब यूरोपियन से ज्यादा या बाहर ज्यादा भाग रही है, ज्यादा फिटनेस है लड़कों की, जैसी फिटनेस है उनकी।
1: ये थे पूर्व ओलंपियन गुणदीप सिंह जो बता रहे थे कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम बिल्कुल सक्षम है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, वर्ल्ड कप का गोल्ड मेडल जीतने के लिए, और वहीं भारतीय महिलाएं भी अब किसी

0: कम नहीं है। जो फिटनेस का एक इशू था वो अब बहुत पीछे हो चुका है, क्योंकि अब भारतीय खिलाड़ी बहुत अच्छी मेहनत करने के बाद बहुत अच्छी फिटनेस उन्होंने अचीव कर ली है। और वहीं अब टेबल टेनिस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस देनी आरंभ कर दी है। और इस समय जो मुकाबला चल रहा है वो मानुष शाह और फेंग यी के बीच मुकाबला चल रहा है, जो चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी हैं। यूरोपियन स्मैश ये टूर्नामेंट है, स्वीडन में ये खेला जा रहा है। और इस समय का जो सूरत हाल है वो ये है कि बिल्कुल एक कड़ा मुकाबला चल रहा है राउंड ऑफ 64 का। और यहाँ पर मानुष शाह ने पहला मुकाबला 11-3 से जीता, दूसरे सेट में 7-11 से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी ने तीसरा सेट भी अपने नाम किया 6-11 से, लेकिन मानुष शाह ने हार नहीं मानी और चौथे सेट में उन्होंने वापसी करते हुए 11-5 से ये सेट अपने नाम कर लिया है। और अब ये मुकाबला पांचवें सेट की तरफ चला गया और गेम फाइव अब होने वाला है। गेम फाइव में अब जो भी खिलाड़ी जीतेगा वो इस मुकाबले को जीत जाएगा। तो वहीं पर ये मैन सिंगल्स की बात है, और वहीं वुमेन सिंगल्स में जो खिलाड़ी हैं जर्मनी की, उस समय वो खेल रही हैं रोमानिया के खिलाड़ी से, और जर्मनी के खिलाड़ी और रोमानिया के खिलाड़ी के बीच पहला राउंड ऑफ 64 में पहला इस समय गेम चल रहा है। और पहले गेम में जर्मनी के खिलाड़ी रोमानिया के खिलाड़ी से अभी 2 पॉइंट पीछे हैं। लेकिन यहाँ पर हमेशा बात करनी होगी मानुष शाह की, जिस तरह से उन्होंने दो गेम गंवाने के बाद उसके बाद फिर उन्होंने वापसी की चौथे गेम में, और पांचवा जो अब गेम है उसमें शुरुआत हालांकि बहुत अच्छी हो गई है चाइनीज ताइपे खिलाड़ी की। अब देखते हैं कि मानुष शाह कितना अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हैं और इस मुकाबले को वो जीत सकते हैं। और वहीं हमारे खिलाड़ी एक खेल ऐसा है जिसमें और तेजी से भारतीय खिलाड़ी उभर रहे हैं, और वो खेल है जिसको हम कहते हैं फेंसिंग। फेंसिंग हालांकि भारत में बहुत प्राचीन समय से खेला जाता है, फेंसिंग का मतलब है तलवारबाजी। इसमें कई विधाएं होती हैं, सेबर, और इसमें कई तरह से फेंसिंग की जाती है। लेकिन जिस समय भवानी देवी ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था, उस समय बहुत कम लोगों को पता था कि फेंसिंग भी कोई खेल होता है। लेकिन आज वो समय आ गया है जब हम पूरी दुनिया में पदक के प्रबल दावेदार बन गए हैं। और फेंसिंग किस तरह से आगे बढ़ रही है, इस पर आपको सुनवाते हैं हमारे सहयोगी अमीषा पटेल की खास रिपोर्ट।
1: जब भी हम इंडियन स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्रिकेट के चौके छक्के, नीरज चोपड़ा का वो जादुई भाला, या फिर हमारी कड़क हॉकी। लेकिन इस बार हम बात करेंगे एक ऐसे खेल की जहां हमारे भारतीय खिलाड़ी इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का परचम लहरा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं फेंसिंग यानी तलवारबाजी की। नाइजीरिया के लागोस शहर में 2026 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, और हमारे लिए यह गर्व की बात है कि भारतीय फेंसिंग टीम इस प्रतियोगिता में पॉइंट्स टेबल में सबसे शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। भारत ने खेल के शुरुआती दिनों से ही यहां अपना दबदबा कायम कर लिया है। अगर हम इस खेल की बारीकियों की बात करें तो फेंसिंग में मुख्य रूप से तीन तरह के वेपन्स यानी हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, और तीनों के नियम काफी अलग है। पहला है फॉइल। इस इवेंट में खिलाड़ी सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी के धड़ यानी चेस्ट और पेट के हिस्से पर ही वार कर सकते हैं। इसके अलावा शरीर के किसी अन्य हिस्से पर टच करने से अंक नहीं मिलते। दूसरा है सेबर। यह फेंसिंग का सबसे तेज और आक्रामक फॉर्मेट माना जाता है। इसमें कमर के ऊपर किसी भी हिस्से जैसे हाथ, सिर या धड़ पर वार करके अंक हासिल किए जा सकते हैं। तीसरा है एपे। यह एक तरह से फुल बॉडी टारगेट गेम है। इसमें सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर पर कहीं भी वार किया जा सकता है और अंक मिल जाते हैं। यानी यह खेल पूरी तरह से एकाग्रता, गति और सही समय पर सटीक फैसला लेने का खेल है। भारत में फेंसिंग को इस मुकाम तक पहुंचाने के पीछे एक बहुत बड़ा नाम है, और वह नाम है भवानी देवी का। एक समय था जब हमारे देश में इस खेल को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन भवानी देवी ने अपने कड़े संघर्ष और असाधारण प्रतिभा के दम पर इतिहास रच दिया। वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली फेंसिंग खिलाड़ी बनी। उन्होंने देश के युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि हम इस खेल में भी दुनिया को चुनौती दे सकते हैं। आज लागोस में जो भारतीय टीम खेल रही है, वह कहीं ना कहीं भवानी देवी की उसी प्रेरणा की नई मिसाल है। अब बात करते हैं इस चैंपियनशिप

0: और गुडविन अनबकेज ने ब्रोंज मेडल्स अपने नाम किए। महिलाओं की स्पर्धाओं में भी भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। विमेन्स फॉइल में जॉयस आशिता ने गोल्ड और कनक लक्ष्मी ने सिल्वर जीतकर भारत को शानदार गोल्ड सिल्वर फिनिश दिलाई। वहीं विमेन्स सेबर में जेफरलीन ने गोल्ड, अखारी ने सिल्वर और श्रेया गुप्ता ने ब्रोंज मेडल अपने नाम किया। यानी 9 अगस्त को भारत ने फेंसिंग के तीनों वेपन्स सेबर, फॉइल और एपे में अपनी मौजूदगी दर्ज करते हुए शानदार शुरुआत की और भारतीय खिलाड़ियों का यह शानदार प्रदर्शन 10 अगस्त को भी जारी रहा। दूसरे दिन सीनियर इंडिविजुअल इवेंट्स में भारत ने 7 मेडल्स अपने नाम किए, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज शामिल थे। सीनियर विमेन सेबर में अखारी ने सिल्वर जबकि जेफरीन और श्रुति जोशी ने ब्रोंज मेडल्स जीते। सीनियर विमेन्स एपे में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। तनिष्का खत्री ने गोल्ड, खुशी दबादे ने सिल्वर और प्राची लोहान ने ब्रोंज मेडल अपने नाम किया। वहीं सीनियर मेन्स फॉइल में तेजस पाटिल ने ब्रोंज मेडल जीत कर भारत की पदक तालिका में एक और इजाफा किया। इस तरह 9 और 10 अगस्त के 2 दिनों में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 24 मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं, जिनमें 5 गोल्ड, 7 सिल्वर और 12 ब्रोंज मेडल शामिल है। और इसी शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत इस समय प्रतियोगिता की मेडल्स टैली में नंबर 1 पर बना हुआ है। भारत के बाद इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है, जिसके खाते में फिलहाल 2 गोल्ड मेडल्स हैं, जबकि मेजबान नाइजीरिया तीसरे स्थान पर है, जिसने 1 गोल्ड मेडल जीता है। यानी लागोस में भारतीय फेंसर्स ने शुरुआत से ही अपनी तलवार की धार दिखा दी है। अब चैंपियनशिप 14 अगस्त तक जारी रहेगी और जिस तरह भारत ने पहले 2 दिनों में प्रदर्शन किया है, उससे आने वाले मुकाबलों में भी देश को अपने फेंसर्स से शानदार प्रदर्शन की उम्मीदें रहेंगी।
1: फेंसिंग के बारे में ये थी हमारी सहयोगी अमीषा पटेल की खास रिपोर्ट। और अमीषा पटेल ने एक और अच्छी रिपोर्ट बनाई है और वो है सेपेक टेक्रो की। सेपेक टेक्रो एक ऐसा खेल है जिसमें एक गेंद टाइप एक गेंद है छोटी सी, उसको गेंद भी पूरा नहीं कह सकते और उसको क्या कहें, एक ऐसी चीज़ है जिसको हम केवल अपने पैरों से खेलते हैं। एक नेट होता है तकरीबन 5.5-6 फुट ऊंचा और उसको पार करने के लिए हमें अपने पैरों से, हाथों से नहीं, पैरों से, घुटनों से और सिर से हम उसको मार सकते हैं। बहुत ही रोमांचक खेल होता है और यदि आपको इस खेल को खेलना है, इसको सीखना है, तो दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसकी कोचिंग होती है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोचेज वहाँ पर इस खेल की ट्रेनिंग देते हैं और दिल्ली के बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर खेलने आते हैं। और उसमें अब किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है सेपेक टेक्रो में, हालांकि भारत में सेपेक टेक्रो की वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी हो चुकी है और भारतीय टीम भी अब लगातार सेपेक टेक्रो में आगे बढ़ रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही है अमीषा से सुनते हैं।
0: 39वें किंग्स कप यानी ISTAF वर्ल्ड सेपक टाक्रो चैंपियनशिप 2026 का समापन आज 11 अगस्त को बैंकॉक में हो गया है। जो लोग इस खेल से अनजान हैं, उन्हें बता दें कि सेपक टाक्रो को साधारण भाषा में किक वॉलीबॉल भी कहा जाता है, जिसमें वॉलीबॉल की तरह ही नेट होता है, लेकिन खिलाड़ी हाथ का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ अपने पैर, घुटने और सिर से हवा में उड़कर गेंद को नेट के पार पहुंचाते हैं। इस बार के वर्ल्ड कप में मेजबान थाईलैंड ने अपनी बादशाहत बरकरार रखते हुए पुरुषों के मुख्य 3 खिलाड़ियों वाले इवेंट में फिलीपींस को हराकर विश्व चैंपियन का खिताब जीता, जबकि महिला टीम इवेंट में वियतनाम को सिल्वर मेडल मिला। भारत के लिहाज से ये टूर्नामेंट बेहद ऐतिहासिक रहा, जहां भारतीय पुरुषों की 4 खिलाड़ियों वाली मेंस टीम ने, जिसे मेंस क्वाड्रेंट भी कहा जाता है, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और ब्रोंज मेडल जीता। सेमीफाइनल के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले सेट को 15-9 से जीतकर घरेलू दर्शकों को चौंका दिया था। हालांकि बेहतरीन अनुभव के दम पर थाईलैंड ने अगले दोनों सेट 15-9, 15-9 से जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। यह चैंपियनशिप के शानदार प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि विश्व स्तर पर भारतीय टीम का कद तेजी से बढ़ रहा है और अब सभी टीमों की नजरें अगले महीने जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 पर टिक गई हैं।
1: सेपेक टेक्रो के बाद अब बात कर लेते हैं सबसे पुराने टूर्नामेंटों में से एक, फुटबॉल के बल्कि यह कहें कि किसी भी गेम के जो सबसे पुराने टूर्नामेंट है उनमें से एक है ड्यूरेंट कप। ड्यूरेंट कप का 135वां संस्करण इस समय खेला जा रहा है और कल जो मुकाबले खेले गए थे उसमें मोहन बगान सुपर जाइंट का मुकाबला था CISF प्रोटेक्टर्स से, जिसको मोहन बगान सुपर जाइंट ने 6-0 के बड़े अंतर

से जीता। वहीं दूसरा मुकाबला कल था एससी दिल्ली का एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स की टीम से, जिसमें 7-1 से एससी दिल्ली ने जीत दर्ज की। इस समय जो मुकाबला खेला जा रहा है उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और एफसी वन के बीच ये मुकाबला है, और ये मुकाबला अब देखते हैं कि किस ओर जाता है। हालांकि दोनों ही टीमें बहुत अच्छी हैं, और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाना है उसके क्योंकि कल की इसमें और मुकाबला नहीं है, कल कोई और मुकाबला नहीं खेला जाएगा, कल का विश्राम का दिन है और उसके बाद 13 तारीख से फिर दोबारा से मुकाबले शुरू होंगे। तो आज जो मुकाबला खेला जाना है उसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मुकाबला होना है एफसी वन से। हालांकि लगातार डूरंड कप में बहुत शानदार मुकाबले खेले जा रहे हैं, और ये इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में खेला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और एफसी वन के बीच ये मुकाबला होगा। लेकिन जो मुकाबला कल खेला गया जिसमें मोहन बगान ने सीआईएसएफ को 6-0 से हराया, वो बहुत ही एक तरफा मुकाबला हो गया था, और दूसरा एक तरफा मुकाबला ऐसी दिल्ली और इंडियन एयरफोर्स के बीच हुआ। तो कुल मिलाकर दोनों ही मुकाबले कल हाई स्कोरिंग थे, आज देखते हैं कि किस तरह से ये मुकाबले आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर स्क्वाश के मैदान पर भी, बल्कि स्क्वाश के कोर्ट पर, क्योंकि स्क्वाश का कोर्ट कहा जाता है जहां पर स्क्वाश खेली जाती है, वहां पर पीएसए स्क्वाश टूर में इस समय जो सूरत हाल है वो ये है कि कई सारे खिलाड़ी जो हैं वो राउंड ऑफ टू को पार करके अब पहुंच चुके हैं क्वार्टर फाइनल में। हालांकि जो हमारे खिलाड़ी एके सुनील थे वो कहीं ना कहीं हमेशा थोड़े से अच्छा नहीं खेल पाए अपने राउंडों सेकंड राउंड के मुकाबले में, और एम गोहर के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और उसके बाद एस पलन्नवील रवि कुमार ने अपना मुकाबला जीता, और एम गोहर और एस पलन्नवील रवि कुमार ये दोनों अब अगले राउंड में एक दूसरे के आमने सामने होंगे और वो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाना है वो खेला जाएगा, ओ सैमुअल और आर दीक्षित के बीच मुकाबला था, लेकिन ओ सैमुअल ने ये मुकाबला जीत लिया, और दूसरी तरफ से मैंसवे और एस कुमार चंद के बीच ये मुकाबला था जिसमें एस कुमार चंद जीत गए, और अब दूसरा क्वार्टर फाइनल इन दोनों के बीच खेला जाएगा जो कल दिन में 3:30 पर खेलना निर्धारित हुआ है। उसके बाद थोड़ी सी बात अब कर लेते हैं दिल्ली प्रीमियर लीग की, यानी कि डीपीएल की। दिल्ली में बहुत ही शानदार क्रिकेट का एक टूर्नामेंट होता है जिसको डीडीसी है, जो दिल्ली के क्रिकेट एसोसिएशन है, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसमें जो कल मुकाबला था वो ईस्ट दिल्ली राइडर्स और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच में मुकाबला था। हालांकि वर्षा के बाधित मुकाबला था और बहुत आसानी से वेस्ट दिल्ली लायंस की टीम इसको जीत गई थी। दूसरा मुकाबला जो शाम के समय खेला गया उसमें आउटर दिल्ली वॉरियर्स और पुरानी दिल्ली 6 के बीच मुकाबला था, जिसमें पुरानी दिल्ली 6 ने बाजी मारी और ये मुकाबला जीत लिया। और आज जो मुकाबला इस समय चल रहा है वो चल रहा है न्यू दिल्ली टाइगर्स और सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बीच में। सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम इस समय बहुत अच्छा खेल रही है, और न्यू दिल्ली टाइगर्स ने हालांकि पहले खेलते हुए क्योंकि वर्षा बाधित मुकाबला था तो 18 ओवर्स का ही ये गेम किया गया, और जिसमें 185 रन नई दिल्ली की टीम ने बनाए हैं, और जवाब में अभी तक 4.3 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम ने 65 रन बना लिए हैं। हालांकि जवाब तो उन्होंने ज़ोरदार दिया है, और जिस तरह से सेंट्रल दिल्ली की टीम इस समय खेल रही है तो वो दर्शाता है कि बहुत ही अच्छी लय में खेल रहे हैं। कप्तान यश ढुल लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, बड़े स्कोर उन्होंने अपनी टीम के लिए बनाए हैं। और पहले जब न्यू दिल्ली टाइगर्स की टीम ने शुरुआत की थी तो शुरुआत में उन्हें झटके लगे, शिवम गुप्ता कुछ खास नहीं कर पाए, लक्ष्य तरेजा भी आज 0 पर ही आउट हो गए, केशव दलाल ने अच्छी बल्लेबाजी की, 39 रन का योगदान टीम के लिए दिया, हिम्मत सिंह ने जो कप्तानी पारी खेली आज 46 रन का योगदान दिया, और मनीष सहरावत जो लोअर ऑर्डर में आकर उन्होंने 37 रन बनाए। तो कुल मिलाकर निर्धारित 18 ओवर्स में 185 रन बनाने में कामयाब हुई नई दिल्ली टाइगर्स की टीम, और अब सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम 65 रन बना चुकी है 4.3 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद। तो कहीं ना कहीं हमेशा एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है ये हमारे दिल्ली में जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए, और बहुत अच्छे मुकाबले हो रहे हैं, और दिल्ली के सभी जो क्रिकेटर्स हैं, जो भी अच्छे क्रिकेटर्स दिल्ली में खेलते हैं, वो सभी यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं अलग अलग टीमों से।

0: वो खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ 21 20 तारीख से, 20 अगस्त से महिलाओं के भी मुकाबले शुरू हो जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी लीग इस समय चल रही है। और पॉइंट टेबल्स की बात करें तो पॉइंट टेबल्स में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 6 मुकाबले जीतकर 5 जीत के साथ 10 अंक अपने बना लिए हैं। पुरानी दिल्ली के 7 हैं, वेस्ट दिल्ली के 7 हैं, आउटर दिल्ली के भी 7 अंक हैं, नई दिल्ली के 5 हैं, और साउथ दिल्ली के 3, और न्यू दिल्ली के 2, और ईस्ट दिल्ली का केवल एक ही अंक है। हमेशा खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें स्टूडियो की घड़ी भी लगातार इशारा करती रहती है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, वो ये कि हम आपको जिस तरह से खेलों की बताते रहते हैं सारी जानकारियाँ, हमारी हमारी कोशिश होती है कि आप तक पहुँचा दें। और जिस तरह से मुकाबला चल रहा था यूरोपीय स्मैश में, मनुष्य वो मुकाबला अपना हार गए हैं। तो 2-3 से वो अपना मुकाबला हार गए हैं। खेलों की ढेर सारी खबरें हैं, लेकिन अब स्टूडियो घड़ी बता रही है कि हमें आपसे विदा लेनी होगी। मैं अजय तोमर, मेरी सहयोगी अमीषा पटेल और कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए विधेयक लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
4: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
3: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह भी विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
5: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:30 पर कार्यक्रम होगा ग्राम संसार, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा खुदीराम बोस बलिदान दिवस, साथ ही ग्रामीण सांस्कृतिक धरोहर एवं लोक परंपराओं का संरक्षण विषय पर बातचीत भी प्रसारित की जाएगी। विशेषज्ञ होंगे चंद्रकला बाबरी, संचार भवन नई दिल्ली, और साथ ही देशभक्ति गीत भी आप सुन सकेंगे।

किसान वाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7:05। प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जिसके विषय

होंगे आधुनिक कृषि में यंत्रीकरण की भूमिका और उपयोगिता। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर JP सिन्हा, प्रधान वैज्ञानिक कृषि अभियांत्रिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली। साथ ही राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन योजना के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और किसान मित्रों से भी बातचीत की जाएगी इस कार्यक्रम के अंतर्गत। इसके अलावा 8 बजे गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। रात्रि 9:30 पर मनी टॉक कार्यक्रम का समय रहेगा और मंथन सुना जा सकेगा 9:45 पर।

नवम्यां गोष्ठ्यां इसरो अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणन तथा अमेरिकीय राजदूतः सर्गियो गोरः भागम् अगृह्णीताम्। अवसरे निसार अभियानस्य सफलतायाः अनन्तरं आगामी मानव अंतरिक्ष प्रौद्योगिकीषु परस्पर सहयोगस्य विस्तारः स्वीकृतः। ऋतुविज्ञान विभागेन आगामीषु द्वित्रिदिवसेषु ओडिशा राज्ये वज्रपात मेघगर्जनाभ्यां सह अतीव तीव्र वृष्ट्यै नारंगवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। विभागेन तावत् आगामिदिनद्वयोः अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहे अरुणाचलप्रदेशे असमे मेघालये नागालैण्ड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा राजस्थानेषु च वज्रपात मेघगर्जनाभ्यां सह अतितीव्रतरवृष्टिः भविष्यतीत्यपि अनुमानितम्। कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगितायां पोलैंड देशस्य पूर्व विश्व प्रथम वरीया ईगा स्वीटेक रशिया देशस्य डायना श्नाइडर इत्येतां 6-2, 6-1 इति अंकैः केवलं चतुष्षष्टि निमेषेषु पराजित्य उपान्त्यचक्रं प्राविशत् इति वार्ताः।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर शाम के 6:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम। तो श्रोताओं, ग्राम संसार कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूँ आपके साथ शीतल और मेरे साथ हैं
0: प्रियंका।
1: तो आज हमारे भाई बहनों के लिए हमारे पास चर्चा है, वार्ता है और मनोरंजन है। कहने को जो बहुत कुछ हमारे श्रोताओं के लिए हमारे पास है, लेकिन शुरुआत हम करेंगे कि जो हमारी जो सरकार है वो किसानों के लिए बहुत कुछ पहल कर रही है, जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़े, उनका जीवन स्तर बढ़े, उनकी आय दुगनी हो। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो सरकारें हैं वो हमारे देश के छात्र जो हैं, युवा जो हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ कर रही हैं। इसी कड़ी में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि DBT द्वारा ICAR के छात्रों को फेलोशिप का वितरण माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। आइए सुनते हैं इस पर ये बाइट।
2: सत्ताईस अक्टूबर 2025 को हमने एक राष्ट्रीय कृषि विद्यार्थी सम्मेलन किया था। एक कमेटी हमने बनाई थी, हमारे 24 स्टूडेंट्स की एक कमेटी थी जो 22 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लिए गए थे और उन्होंने कई तरह के सुझाव दिए हमें। फेलोशिप को समान स्तर पर करने की बात थी, राबे प्रोग्राम को सबके लिए आवश्यक बनाने की चर्चा थी, उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी चाहिए, राबे प्रोग्राम को और ज़्यादा प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए, उसकी कोई वर्किंग प्लान बनना चाहिए, उस पर भी चर्चा हुई और अगले कुलपति सम्मेलन तक उसको फाइनल कर दिया जाएगा। एक बड़ी बात आई थी, एडमिशन समय पर हो, कोविड के समय से राग रंग सब बिगड़ गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम सब सही दिशा में आ गए। एडमिशन समय पर हो, सत्र समय पर चलें, परीक्षाएं टाइम पर हो, कई सुझाव मेरे बेटा बेटियों आए थे, उनको लागू करने की दिशा में काम निरंतर चल रहा है। लेकिन आज के युग में यह भी बड़ा अजीब लगता था, स्कॉलरशिप जाएगी स्टूडेंट्स के नाम, लेकिन जाएगी यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी से कॉलेज में, फिर कॉलेज फिर ढूंढेगा, इतना समय लग जाता था कि जब तक स्कॉलरशिप पहुंचती थी तब तक पता चला परीक्षा वरीक्षाएं सब निपट गई।

0: इस समय पर स्टूडेंट्स की सही जरूरत पूरी हो जाए पढ़ाई लिखाई की। मैं जाट साहब आपको और पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, सिंगल क्लिक से हर महीने समय पर बच्चों को स्कॉलरशिप पहुंचेगी और सच में तभी उसका बेहतर उपयोग होगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी रणनीति है कृषि को लेके, उसके तीन प्रमुख लक्ष्य हैं। नंबर एक, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, 140 करोड़ से ज्यादा भारतवासी है। दूसरी है पोषण आहार, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। तीसरा, किसानों की आजीविका सुनिश्चित करना। लेकिन आज हम कई बार कई चीज इतनी उगा लेते हैं कि जरूरत ही नहीं होती देश को। अब मैपिंग करेंगे हम, हमें कितना चाहिए, कौन सी चीज चाहिए, दलहन भी चाहिए, तिलहन भी चाहिए, कितना चाहिए और दुनिया को क्या चाहिए, वहां भी हमारी नजर रहेगी, ताकि आगे हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का अन्न और फल सब्जियां उत्पादित करके दुनिया के देशों में भी बेच सकें। लेकिन उसके लिए वैज्ञानिक भी चाहिए, तो एग्री स्टूडेंट्स से ही बनेंगे। आजकल तो एआई का चमत्कार चल रहा है, एआई मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, स्टार्टअप्स भी चाहिए, ये कौन करेगा। ये अगर देश आशा भरी नजरों से देखता है तो एग्री स्टूडेंट्स की तरफ ही देखता है, आपकी तरफ देखता है। भारत की कृषि के स्वरूप को तेजी से परिवर्तित हो रहा है और परिवर्तित करना है, और उसके लिए शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन। अगर 150 से 200 के बीच स्थान प्राप्त किया है तो हमारे लिए संतोष का विषय हो सकता है, गर्व का विषय तब होगा जब दुनिया कहे कि IRI की तरफ देखो। मैं आज आपको एक लक्ष्य और दे रहा हूं, अब कड़ी मेहनत कीजिए, सोचिए, विचारिए, टीम बनाइए, हम कम से कम 100 के अंदर IRI को ला पाए। क्या क्या सुधार की जरूरत है, क्या नई चीजें जोड़ने की जरूरत है, कोई रिसोर्सेज जुटाने होंगे तो कोशिश करेंगे हम लोग। और आज लगभग 10,000 विद्यार्थी पूरे देश से जुड़े हुए हैं, कृषि विद्यार्थी। मैं उनको भी आग्रह करना चाहता हूँ, जिंदगी चुनौती भी है तो अवसर भी है, ये सच में तुम कर सकते हो, जरूरत है हम ठाने। अपने जीवन का एक मकसद बनाए, एक लक्ष्य बनाए, उस लक्ष्य की पूर्ति का रोड मैप बनाए, उस रोड मैप पे चलने की कड़ी मेहनत करें तो दुनिया में सचमुच में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। इसलिए मैं सभी बेटे बेटियों से ये कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास से भरपूर रहो। हरियाली अमावस्या को हम और अर्थपूर्ण बना सकते हैं एक पेड़ लगा के। सबसे बड़ा खतरा पर्यावरण पर है, तो धरती को ऐसी छोड़ना है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी रहे, और उसका एक तरीका है पर्यावरण बचाना, और सबसे साधारण तरीका पेड़ लगाना है। आज मैं अपने सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अभी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: श्रोता सुन रहे थे ये बाइट शिवराज सिंह चौहान, जो कि हमारे किसान कल्याण मंत्री। तो सरकार का उद्देश्य जैसे कि बताया कि जो सीधा लाभ छात्रों को मिल सके, पहले की तरह बहुत लेट उनको ना हो, जैसे पहले पेपर हो जाते थे उसके बाद उनको वो स्कॉलरशिप मिलती थी। और इसके साथ ही उन्होंने एक अनुरोध किया छात्रों से और लोगों से कि एक पेड़ लगाएं जिससे पर्यावरण सुरक्षित हो। क्यों, और छात्रों श्रोताओं, ऐसा होता भी है कि जो सावन का महीना चल रहा है, मॉनसून चल रहा है, बरसात चल रही है, इस मौसम में अगर आप पेड़ लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी पनपता है और बढ़ता है।
2: बिल्कुल, और देखिए आपने संरक्षण की बात की तो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण संस्कृति का संरक्षण भी बहुत ही जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि भारत गांव का देश है और हमारे गांव केवल खेत खलियानों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी जाने जाते हैं।
2: बिल्कुल, हमारी लोक कलाएं, हस्तशिल्प, पारंपरिक कृषि पद्धतियां और सामुदायिक मेल मिलाप को, जीवन रेखा को हमें अपनी नई पीढ़ी तक जोड़ के रखना है, और इसी के संदर्भ में एक वार्ता आपके लिए लेकर आए हैं।
1: जी बिल्कुल, और उसका विषय है ग्रामीण सांस्कृतिक धरोहर एवं लोक परंपराओं का संरक्षण, और इसमें हिस्सा ले रहे हैं चंद्रकला बाबरी, आप संचार भवन नई दिल्ली से। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
3: दोस्तों, जब हम संस्कृति शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? सीधे शब्दों में कहें तो तो संस्कृति कोई किताबी या जड़ चीज नहीं है, ये तो हमारे पूर्वजों के वो अनुभव हैं, वो अच्छे संस्कार, विचार और जीने का तरीका है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिले हैं। आज जब पूरी दुनिया सिर्फ मशीनों, चकाचौंध और भौतिकता के पीछे भाग रही है, तब हमारा भारत अपनी इस

आध्यात्मिक चेतना अपनी अतिथि देवोभव के संस्कार और वसुधैव कुटुंबकम की सोच के कारण पूरे विश्व रंगमंच पर सिर उठाकर खड़ा है और एक मजबूत सॉफ्ट पावर के रूप में चमक रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। ये बात आज भी 100% सच है। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की जड़ें और उनकी असली ऊर्जा हमारे ग्रामीण अंचलों में ही बसी है। अगर हम अपने गांवों की इस अनमोल विरासत को समझना चाहें तो इसे दो आसान भागों में बांट सकते हैं। पहली है हमारी मूर्त ग्रामीण विरासत, यानी वो चीजें जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, जैसे गांवों के पुराने मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें, स्तूप, हमारी जनजातीय कलाकृतियां और पानी को सहेजने के पुराने तरीके जैसे कुएं, बावड़ियां और अहरपाइन। इसी में हमारी हस्तशिल्प विधाएं भी आती हैं, चाहे वो बिहार की खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग हो, महाराष्ट्र की वारली आर्ट हो, ओडिशा की पट चित्रकला हो या फिर हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों का बांस और बेंत का शानदार काम हो। ये सब हमारे गांव के हुनर की जीती जागती मिसाल हैं। दूसरी है हमारी अमूर्त ग्रामीण विरासत जो हमारे एहसास और कला में बसी है, जिसे हम देख तो नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। जैसे हमारे लोकगीत, बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले सोहर, सावन की कजरी, चैती और आल्हा के वीर रस के गीत। इसके साथ ही नौटंकी, स्वांग, यशगान और तमाशा, जैसे कि हमारे पारंपरिक नाटक और पोंगल, लोहड़ी, बिहू व ओणम जैसे फसलों के त्योहार। यही नहीं, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने वाली हमारी पारंपरिक खेती की पद्धतियां और जड़ी बूटियों का वो पुराना आयुर्वेदिक ज्ञान भी इसी का हिस्सा है। जरा सोचिए, हमारा देश कितना रंग बिरंगा है। उत्तर में कश्मीर के गांवों का रऊफ नृत्य और पंजाब की जोश से भरी गीत भांगड़ा और गिद्दा परंपरा है, तो दक्षिण में कर्नाटक का यक्षगान और केरल की कलरी पायट्टू जैसी मार्शल आर्ट है। पूर्व में असम का बिहू और बंगाल का बाउल संगीत कानों में रस खोलता है, तो पश्चिम में राजस्थान की कठपुतली व फड़ कला और गुजरात के ग्रामीण अंचलों का गरबा सबका मन मोह लेता है। भाइयों और बहनों, हमारी इस ग्रामीण संस्कृति की महत्ता को वैश्विक स्तर पर भी बड़ी मान्यता मिली है। यूनेस्को ने भारत की अनेक अमूर्त लोक और ग्रामीण परंपराओं को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में खास स्थान दिया है। इसमें राजस्थान का कालबेलिया लोक नृत्य, पूर्वी भारत यानी ओडिशा, झारखंड और पश्चिमी बंगाल का छऊ नृत्य, जो मूलतः एक ग्रामीण और जनजातीय मार्शल आर्ट है, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, हमारे उत्तर भारत की प्रसिद्ध रामलीला और हाल ही में शामिल किया गया गुजरात का गरबा नृत्य शामिल है। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि जो कलाएं हमारे गांवों की माटी की धूल से उपजी हैं, वे आज वैश्विक संस्कृति के स्तर पर सुशोभित हैं। किंतु दोस्तों, जब हम धरातल की सच्चाइयों को देखते हैं तो ये अनमोल विरासत आज एक गंभीर संकट के दौर से गुजरती हुई दिखाई देती है। इसका पहला कारण है अंधाधुंध शहरीकरण और रोजगार के लिए होने वाला पलायन। गांवों में आजीविका के पर्याप्त साधन न होने के कारण हमारी युवा पीढ़ी शहरों की ओर भाग रही है। नतीजा यह हो रहा है कि जो पारंपरिक कलाएं गुरु शिष्य परंपरा या पुश्तैनी हुनर के माध्यम से आगे बढ़ती थी, उन्हें सीखने वाले अब गांवों में नहीं मिल रहे हैं। दूसरा कारण है पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण और बाजारवाद। आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में हमने लोक कलाओं और लोक भाषाओं को पिछड़ा मान लिया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और प्लास्टिक के इस युग में कुम्हार के चाक, बुनकर के करघे और लोक कलाकारों के मंच पीछे छूट गए हैं। इस बेरुखी के लिए हमारा समाज और हम सभी नागरिक सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। इस सांस्कृतिक संकट को देखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत ही स्पष्ट विजन और मिशन तय किया है, जिसका मूल मंत्र है विकास भी विरासत भी। सरकार केवल आर्थिक और तकनीकी प्रगति को ही नहीं काफी मानती, बल्कि देश की सांस्कृतिक आत्मा को भी बचाना राष्ट्र निर्माण का एक अनिवार्य हिस्सा समझती है। इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए देश की कई बड़ी संस्थाएं और मंत्रालय दिन रात काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की। ASI का काम केवल बड़े महानगरों के किलों या महलों तक सीमित नहीं है, इसका

एक बहुत बड़ा मिशन ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित उन उपेक्षित ऐतिहासिक स्मारकों, प्राचीन मंदिरों और पुरानी जल संरचनाओं का पुरातात्विक जीर्णोद्धार करना है जो देख रेख के अभाव में टूट रहे हैं। अडॉप्ट अ हेरिटेज जैसी नई योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण पुरातात्विक स्थलों के रख रखाव में अब आम समुदाय कॉरपोरेट क्षेत्र को भी भागीदार बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अगला नाम आता है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों का, जिन्हें हम ZCC भी कहते हैं। देश की आंचलिक और ग्रामीण कलाओं को सीधा सहारा देने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश को 7 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा है। पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र हमारे ग्रामीण कलाकारों के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। ये हर साल सैकड़ों ग्रामीण मेलों, उत्सवों और प्रदर्शनियों का आयोजन करके देश के सुदूर गांवों के लोक कलाकारों को सीधे मंच, मानदेय और रोजगार के अवसर देते हैं। इन धरोहरों को बचाने के लिए पैसों की कमी ना हो, इसके लिए साल 1996 में राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि यानी नेशनल कल्चर फंड की स्थापना की गई थी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसके माध्यम से कॉरपोरेट जगत के CSR फंड को सीधे ग्रामीण धरोहरों और लोक कलाओं के संरक्षण से जोड़ा जाता है। इस निधि में दिया जाने वाला दान आयकर की धारा 80G के तहत पूरी तरह टैक्स मुक्त होता है, जिससे निजी क्षेत्र भी ग्रामीण कलाओं के उत्थान में बढ़ चढ़कर निवेश कर रहा है। हमारी ग्रामीण संस्कृति को केवल देश के भीतर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय व्यापक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध कार्यक्रम और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम चलाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के साथ मिलकर फेस्टिवल ऑफ इंडिया और फ्रेंडशिप फेस्टिवल्स आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे ग्रामीण लोक नर्तकों, शिल्पकारों और गायकों को विदेशों में जाकर अपनी माटी की खुशबू बिखेरने का और अपनी कला का वैश्विक प्रदर्शन करने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी गांवों की कला को जोड़ने का एक अनूठा प्रयास CCRT कर रहा है। सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र देश भर के स्कूल शिक्षकों को ग्रामीण लोक कलाओं और परंपराओं का विशेष प्रशिक्षण देता है, ताकि वे इसे हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बना सकें। इसके अलावा इसकी सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के तहत 10 से 14 वर्ष तक के बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें ग्रामीण और लुप्त प्राय कलाओं को सीखने वाले बच्चों के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। हमारी राष्ट्रीय अकेडमियां इस संरक्षण कार्य को शोध और प्रशिक्षण के स्तर पर और मजबूत बना रही हैं, जैसे संगीत नाटक अकादमी, जो प्रदर्शन कलाओं की देश की सर्वोच्च संस्था है, अपनी कला दीक्षा योजना के तहत लगभग 100 से अधिक दम तोड़ती लोक कला विधाओं को बचाने के लिए सीधे गांवों में गुरु शिष्य परंपरा केंद्र चला रहे हैं, जहां गुरु और शिष्य दोनों को हर महीने वजीफा दिया जाता है। ललित कला एकेडमी दृश्य कलाओं के लिए काम करती है। ये संस्था सुदूर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जनजातीय कला शिविर आयोजित करती है और ग्रामीण चित्रकारों की कलाकृतियों को सीधे राष्ट्रीय दीर्घाओं में प्रदर्शित कर उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाती है। वहीं साहित्य अकादमी हमारी उन लोक भाषाओं, बोलियों और मौखिक साहित्यों को कागज पर उतार कर पुस्तकों के रूप में प्रकाशित कर रही है, जो अब तक सिर्फ बुजुर्गों की यादों तक सीमित थी। इसके लिए दिए जाने वाले भाषा सम्मान ने हमारे ग्रामीण साहित्यकारों का हौसला बहुत बढ़ाया है। श्रोताओं, कोई भी कला और संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक कि वह खुद कलाकार के लिए दो वक्त की रोटी का जरिया ना बने। इसके लिए सरकार की वित्तीय नीतियां बहुत मजबूत हैं। कला संस्कृति विकास योजना भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक प्रमुख केंद्रीय योजना है, जो ग्रामीण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों, पारंपरिक लोक कलाओं और लुप्त प्राय अमूर्त विरासतों के संरक्षण में बड़ा योगदान दे रही है। यह योजना अपनी विभिन्न उप योजनाओं के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के
स्वैच्छिक संगठनों यानी एनजीओ को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे गांवों में पीढ़ियों से चली आ रही मौखिक परंपराओं, लोकगीतों, आंचलिक नाटकों

0: वाले पलायन को रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण पुल का काम कर रही है। इसके साथ ही भारत सरकार की इन योजनाओं के अंतर्गत कलाकारों को पुरस्कृत करने और सम्मान देने का भी विशेष प्रावधान है, जिसके तहत संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी जैसी संस्थाएं देश के लोक व जनजातीय कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करती हैं। हमारे देश के ग्रामीण अंचलों की कला और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जाने और उन्हें वैश्विक पहचान दिलाने में कई महान विभूतियों का अतुलनीय योगदान रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ की तीजनबाई ने ग्रामीण लोक गायन शैली पंडवानी को दुनिया के बड़े बड़े मंचों तक पहुंचाया। वहीं मध्य प्रदेश की भूरी बाई ने पारंपरिक भीली चित्रकला को मिट्टी की दीवारों से उठाकर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का हिस्सा बनाया। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के गोकुल चंद्र दास ने दुर्गा पूजा की रीढ़ माने जाने वाले पारंपरिक ढोल वादन ढाक को विदेशों में प्रस्तुत कर वैश्विक ख्याति दिलाई और राजस्थान के गाफरुद्दीन मेवाती जोगी ने मेवात के अत्यंत दुर्लभ लोकवाद यंत्र भपंग को अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्मेलनों में गूंजने का अवसर दिया। इन सभी कलाकारों को भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों से नवाजा है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्रामीण संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने वाले ये कलाकार न केवल अपनी परंपराओं को सहेज रहे हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की सांस्कृतिक साख भी बढ़ा रहे हैं। श्रोताओं, सरकार नीतियां बना सकती है, संस्थाएं बजट दे सकती हैं, लेकिन जब तक इसमें जनता की भागीदारी या जन भागीदारी नहीं होगी तब तक कोई भी प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A(f) के तहत हमारी मिली जुली संस्कृति की इस समृद्ध विरासत को सहेजना देश के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। एक जागरूक समाज के रूप में ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने दैनिक जीवन में वोकल फॉर लोकल के सिद्धांत को अपनाएं। त्योहारों पर विदेशी या सिंथेटिक चीजों की जगह अपने स्थानीय ग्रामीण कारीगरों के हस्तशिल्प और मिट्टी के बर्तनों को खरीदें। जब भी हम घूमने जाएं तो ग्रामीण पर्यटन और होमस्टे को बढ़ावा दें, ताकि शहरों और गांवों की संस्कृति का आपस में मेलजोल हो सके और गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। निष्कर्ष के तौर पर कहें तो हमारी ग्रामीण सांस्कृतिक धरोहर केवल बीते हुए कल की कोई याद या मनोरंजन की चीज नहीं है, ये तो हमारे पूरे राष्ट्र की जीवन रेखा है। ये हमें सिखाती है कि सीमित संसाधनों में भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना उसके साथ मिलकर कैसे जिया जाता है। आज जब हम एक विकसित भारत के संकल्प की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक विकसित राष्ट्र केवल कंक्रीट के जंगलों या आधुनिक मशीनों से नहीं बनता है बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों की मजबूती से बनता है।
1: श्रोता सुन रहे थे ये वार्ता ग्रामीण सांस्कृतिक धरोहर एवं लोक परंपराओं का संरक्षण, और इसमें जो विशेषज्ञ थे वो थी चंद्रकला बाबरी, संचार भवन नई दिल्ली से।
2: और इसके साथ साथ खुदीराम बोस बलिदान दिवस है आज, और खुदीराम बोस जो है भारत के सबसे कम उम्र वाले महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में देश के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चुन लिया था।
1: जी बिल्कुल, और जो इनको फांसी हुई थी वो इसलिए हुई थी कि जो बंगाल के क्रूर जज किंगफोर्ड उनकी मारने की योजना उन्होंने बनाई थी, और जो बम इन्होंने उन पर गिराना चाहा था वो गलत दिशा में चला गया था और उससे दो ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 11 अगस्त 1908 में इनको फांसी दी गई। तभी से पूरा देश खुदीराम बोस बलिदान दिवस 11 अगस्त को याद करता है।
2: बिल्कुल, और अब आपको कार्यक्रम में सुनवाते हैं देशभक्ति रागनी, और कलाकार होंगे भीषण सिंह।

0: तो श्रोता सुन रहे थे बीसन सिंह की आवाज़ में ये देशभक्ति रागनी, और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संचार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: अभी आप ग्राम संसार कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर शाम के 7 बजने को है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी और लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया। लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। यह विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है तथा इसे निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
3: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सोवरेन रेटिंग BBB पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा कि यह भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को

0: दर्शाता है। फिच ने भारत के लिए स्थिर दृष्टिकोण भी बनाए रखा है और कहा है कि पाकिस्तान की पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न ऊर्जा संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में बनी हुई है। एजेंसी ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि 6.4% रहेगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी।
2: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। रजनीश
4: जी,
3: हम सब जानते हैं कि हमारे किसान भाई बहन कितनी मेहनत करते हैं। भोर की पहली किरण के साथ सुबह उठ जाते हैं और अपने खेतों की ओर चल पड़ते हैं। और आज के दौर की अगर हम बात करें, परंपरागत तरीकों तक सीमित नहीं रहे अब हम, यानी कि बदलते समय के साथ खेती में आधुनिक तकनीक और मशीनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है।
4: बिल्कुल सही कहा प्रतिमा, और बात करेंगे राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन पर भी, और होंगे आजादपुर मंडी से फल एवं सब्जियों के आज के भाव, साथ ही मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह भी देंगे। और शुरुआत करते हैं तिरंगे से, और देखिए 15 अगस्त आने वाला है और ऐसा ही एक अभियान हर घर तिरंगा शुरू हो चुका है।
3: बिल्कुल सही कहा, देखिए हम सबके मन में, हम सबके दिलों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतवासी होने का जो गर्व होता है ना, वो हमें हमारा तिरंगा दिखाता है। जब हर घर में ये तिरंगा लहराता है तो समझिए कि हम सब गौरवान्वित हो उठते हैं।
4: बिल्कुल सही कहा प्रतिमा, और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति जुड़ाव को मजबूत करना।
3: बिल्कुल सही कहा, ये जो आजादी का जश्न होता है ना, स्वतंत्रता दिवस, ये जश्न है हमारे आजाद होने का। एक तरफ हमारे जो देश के जवान है वो सीमाओं पर रहकर देश की रक्षा करते हैं, वहीं एक तरफ हमारे किसान भाई अपने खेत से अन्न उगाकर अन्न को जन जन तक पहुंचाते हैं।
4: बिल्कुल सही कहा प्रतिमा, और देखिए सीमा पर जवान और खेत में किसान, अगर इनकी हम बात करें, यही देश की तरक्की में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और यही वजह है कि हम इस कार्यक्रम में किसानों की बात करते हैं और किसानों के लिए सरकारों ने जो योजनाएं शुरू की हैं उनके बारे में बात करते हैं, ताकि हमारे हर किसान भाई बहन को इन योजनाओं के बारे में पता लगे। और ऐसी एक योजना है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन की।
3: मधुमक्खी से जहाँ हमें मीठा मीठा शहद मिलता है, वो औषधीय गुणों से तो भरपूर होता ही है
4: जी।
3: साथ ही हमारे जो फसलों के पराग कण, जिसे हम पोलिनेशन कहते हैं, उसमें सुधार कर कृषि और बागवानी का उत्पादन बढ़ाने में भी मधुमक्खी का बहुत बड़ा योगदान होता है।
4: बिल्कुल सही कहा प्रतिमा, और भारत सरकार ने इस अभियान की जो शुरुआत

0: की थी वो 2020 से 2021 में आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए की गई थी, और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने और मीठी क्रांति यानी कि स्वीट रेवोल्यूशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई थी।
1: और रजनीश, एक बात और भी यहाँ निकल कर ये आती है, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे युवा साथी हैं, छोटे किसान भाई बहन हैं, उनके लिए मधुमक्खी पालन से रोजगार के अवसर भी मिलते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, जो हमारे किसान भाई बहन हैं, जो अपनी पारंपरिक खेती तो करते ही हैं, साथ में यदि वो बी बॉक्स भी रख लें तो उनसे और भी उनकी आमदनी हो सकती है, अगर थोड़ा सा प्रशिक्षण लें और थोड़ा सा इस बारे में जानकारी लें। और सरकार ने ऐसे बहुत सारी प्रोत्साहन की योजनाएं चलाई हैं, जहां पर बी बॉक्स को कैसे रखा जाता है, मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है, उस बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि उनकी जो मेन आमदनी है वो तो होगी होगी, साथ में मधुमक्खी पालन से भी वो अच्छी आमदनी ले सकते
1: और
0: हैं।
1: हमारे किसान भाई बहन इस बात का भी ध्यान रखें कि कृषि वैज्ञानिक विधि को अपनाते हुए यदि वो मधुमक्खी पालन करते हैं तो उनको सही सलाह भी हमारे कृषि वैज्ञानिक देते हैं। और रजनीश, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समय समय पर नए नए टॉपिक्स भी लेकर आते हैं इससे जुड़े हुए।
0: और आज का विषय आधुनिक कृषि में यंत्रीकरण की भूमिका और उपयोगिता, इस विषय पर भी अब हमारे विशेषज्ञ आ चुके हैं।
1: बिल्कुल आ चुके हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी कि तकनीक और मशीनों का इस्तेमाल तेजी से तो बढ़ ही रहा है, साथ ही खेत की जुताई से लेकर बुआई, सिंचाई, निराई, गुड़ाई, कटाई और फसल के बाद के कार्य को इस आधुनिक तकनीक ने बेहद आसान बना दिया है। तो हमारे साथ आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जेपी सिन्हा, प्रधान वैज्ञानिक कृषि अभियांत्रिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्कार किसान भाइयों।
1: डॉक्टर साहब, जब हम यंत्रों की बात करते हैं और कृषि में जो जो प्रयोग होते हैं यंत्र, अब तो सब कुछ डिजिटल हो चुका है। एक वक्त था जब परंपरागत तरीके से खेती की जाती थी, लेकिन आज के दौर में आधुनिक खेती का बहुत बड़ा महत्व हो गया है। तो इसमें हम क्या समझे कि ये जो आधुनिक कृषि में यांत्रिकरण की भूमिका और उपयोगिता है, इससे क्या आशय है?
2: हमारी पारंपरिक कृषि में हमारा जोत छोटा था और हमारी आवश्यकताएं कम थी। आज हम एक फसल नहीं, दो ही फसल, तीन फसलों का उत्पादन करते हैं। और कृषि उत्पादन एक समय के साथ होना कार्य बहुत जरूरी है। और हमारी जो मानव श्रम है वो गांवों से कम होती जा रही है। तो मानव श्रम और हमारे विज्ञान का यह देन है कि मानव श्रम में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, कम थकावट हो, तो उसमें जो है यंत्र का बहुत उपयोग है।
1: जी
2: समय पे कार्य संपादित करने के लिए, एक सार करने के लिए, और जो कृषि में उपयोग में आने वाले जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, इनका समुचित उपयोग हो। अगर समुचित उपयोग नहीं हो पाता है तो वो कहाँ जाता है, हमारे पर्यावरण को दूषित करता है।
1: जी
2: तो इसलिए यह जरूरी है कि उसका समुचित समय पर उपयोग हो।
1: जी
2: दूसरी बात एक आज के परिदृश्य में है कि गांव में हमारे नौजवान कृषि क्षेत्र में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि ड्रजरी जिसे हम कहते हैं कि मानव श्रम में पसीने निकलते हैं, धूल मिट्टी में चलना पड़ता है, तो उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए यंत्र एक बहुत लाभदायक है। इससे हम नौजवानों को भी आकर्षित कर सकते हैं। साथ साथ हमारे भारतवर्ष में जो हमारी आर्थिक रीढ़ है उसका कृषि में बहुत योगदान है, और कृषि के बहुत सारे उत्पादों का हम निर्यात करते हैं जिससे हम कुछ अर्जित करते हैं और देश के विकास में आगे बढ़ा सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, आधुनिक खेती में इसकी आवश्यकता क्यों बढ़ती जा रही है आज के दौर में देखा जाए तो?
2: जैसे आपको मैंने बताया कि बहुफसली प्रणाली में हम आगे अब बढ़ रहे हैं, तो सारे काम को जल्दी से संपादित करने के लिए एक जो मशीन का पावर है और आदमी के इंटेलेक्चुअल है, दोनों को, स्किल को अगर जोड़ देते हैं तो एक रेजोनेंस उत्पन्न होता है और जल्दी काम संपादित अच्छी तरीके से होता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि हल और बैल से हम खेती किया करते थे, तो एक जोड़ी बैल कितना निकाल पाता था खेत जुताई के लिए, लेकिन आज की डेट में हम ट्रैक्टर 45 हॉर्स पावर, अगर हॉर्स पावर को हम कहें तो यह मानक जो है एक अश्व शक्ति को बताता है, तो 45 अश्व के बराबर है, बैल का अश्व शक्ति से 1/10 होता है। तो कितना पावर हमने एक प्राकृतिक ऊर्जा को लगा के हमने बढ़ा दिया, तो कार्य जल्दी संपादित होगा। अब पहले मॉनसून आने पर हम जुताई शुरू करते थे, आज हम ट्यूबवेल के द्वारा आवश्यक आर्द्रता ले आते हैं और उसमें जुताई कर लेते हैं।

0: श्रम और समय दोनों की बचत भी
1: समय।
0: होती है। तो डॉक्टर साहब, खेती के किन किन कार्यों में मशीनों का उपयोग किसानों के लिए सबसे अधिक लाभदायक साबित हो रहा है?
1: सारे चीजों में लाभदायक है। जैसे हम शुरू करते हैं, पहले देखिए जल ही जीवन है।
0: जी
1: जल के अलावा कोई भी हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं, तो पहले आर्द्रता चाहिए, उसके लिए हमारे पंप्स हैं। पंप्स के अलावा आज की डेट में जैसे हम पहले फ्लड इरिगेशन किया करते थे, अब हम ड्रिप स्प्रिंकलर और उससे भी आगे बढ़ के हम रोबोट का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आगे आते हैं, आर्द्रता अगर आ गई तो जुताई का काम करना है, तो ट्रैक्टर से कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, रोटावेटर और मल्टीपल इक्विपमेंट्स की भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब बीज बड़ा हुआ तो खरपतवार का नियंत्रण, तो वीड कंट्रोल के लिए हम आगे आते हैं। उसके अलावा पेस्ट आ गया, कुछ बीमारी आ गई तो छिड़काव के लिए आते हैं। उसके बाद जब फसल कटने को आई तो कटाई के लिए आते हैं, उसके लिए कंबाइन हार्वेस्टर है। कटाई के बाद अगर थ्रेश करना है, दाने को अलग करना है बायोमास से, तो थ्रेशर आ जाता है। उसके बाद अगर छिलके निकालने हैं तो डिकॉर्डर आ जाता है। उसके बाद भी उसकी आर्द्रता को कम करना है, जैसे कि धान की फसल में आर्द्रता ज़्यादा होती है, भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं होता है, तो ड्रायर आ जाता है। फिर उसके संरक्षण कार्य में भी हम मशीनों का उपयोग कर सकते
0: डॉक्टर
1: हैं।
0: साहब, आपने शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी कृषि पद्धति में जो जो यंत्र उपयोग में आते हैं सबके बारे में बताया, लेकिन अब मेरे जहन में एक सवाल ये भी आता है कि छोटे और सीमांत किसान महंगी कृषि मशीनरी का लाभ किस तरह उठा सकते हैं, या खरीदने में असमर्थ हैं तो क्या कोई सरकारी सहायता भी उनको मिलती है?
1: यह बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे हम जब भी यंत्र की बात करते हैं, जो छोटे सीमांत किसान बैठे हैं उनके लिए एक सोर्स नहीं होता है, तो इस संबंध में जो एक स्मैम की योजना है भारत सरकार की, उसके तहत आप मशीनों को सब्सिडी में भी खरीद सकते हैं। एक इंडिविजुअल किसान भी खरीद सकता है, साथ साथ FPO अगर बना के हमारे नौजवान जो गांव में रह रहे हैं वो व्यवसाय के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं, कि इकट्ठा 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक की आप मशीनें खरीदें और उसको आप चलाएं। जैसे ओला उबर चल रहा है, वैसे आप चलाएंगे तो जो नीडफुल आदमी है उसको भी मिल गया, लेकिन एक मुश्त पैसे नहीं लगाना हुआ, और साथ साथ हमारे नौजवान को अपने घर में रोजगार भी मिल रहा है।
0: बहुत अच्छी बात है ये, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे नौजवान हैं और इस दिशा में अगर काम करना चाहें, मशीनरी यंत्र खरीदें, तो कस्टम हायरिंग सेंटर और कृषि मशीनरी बैंक किसानों के लिए कैसे सहायता करते हैं?
1: आज की परिदृश्य में अगर ड्रोन दीदी का जो कंसेप्ट, वो भी एक उसी तरह का है, क्योंकि ड्रोन को खरीदना
0: हर किसान की बस की बात
1: पहुंच
0: नहीं
1: से
0: है।
1: बाहर है, तो ड्रोन रिमोट ऑपरेटेड इक्विपमेंट है, उससे छिड़काव किया जा सकता है। आज की डेट में वो एक रोबोट ही हम कहते हैं उसको, ऑटोमेटेड रोबोट है। वह रोबोट क्या कर रहा है, जैसे हम धान की फसलों में जो छिड़काव का काम करते थे उसमें हमें गीली जमीन में चलना होता था, जो कि बहुत कठिन कार्य होता था। उसमें हमारे जो भी लेबर काम करते थे वो जाने के बाद कुछ देर में थक जाते थे। साथ साथ जो दवा का छिड़काव होता था उसकी उत्पादकता भी बहुत कम हो जाती थी, क्योंकि उसका छिड़काव इधर उधर जाता था।
0: गिरता था इधर
1: और
0: उधर।
1: खासकर मैं एक बताऊं कि कीटों का जो हार्बर प्लेस होता है, माने घर होता है, वो पत्तियों के नीचे होता है। अगर ऊपर से हम छिड़काव कर रहे हैं तो उनके घर पर हम प्रहार नहीं कर पाते हैं और वो बढ़ते रहते हैं, लेकिन ड्रोन से जब हम छिड़काव करते हैं तो एक जो माइक्रो इन्वायरमेंट बनता है उसके कारण पत्तियों के नीचे भी जाता है। और कस्टम हायरिंग के थ्रू इसका जो एक यंत्रीकरण में जो अवरोध है मूल्य की जरूरत, उसको सरकार आगे बढ़ के हाथ मिला रही है, और रोजगार के साथ साथ किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ती जा रही है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सही बोल रहे हैं। चाहे हमारी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी यही चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों की खेती है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े और अच्छी जो भी उन्होंने पूंजी लगाई है कई गुना बढ़कर मिले, इस ओर बड़ा ध्यान दे रहे हैं। तो क्या जो हमारे युवा साथी हैं या महिलाएं हैं तो उनके लिए क्या कोई प्रशिक्षण का भी प्रावधान रखती है गवर्नमेंट?
1: या इस मैम में यह प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है,
0: अच्छा।
1: और हमारे भारत सरकार के प्रशिक्षण केंद्र हैं, जो राज्य सरकारों के भी प्रशिक्षण केंद्र हैं, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर ऑन हैंड ट्रेनिंग, इन फील्ड ट्रेनिंग जिसको कहते हैं कि अपने हाथ से काम करके सीखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी समय आ सकता है, किताबी नॉलेज से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं
0: नहीं
1: लाया जा
0: आता,
1: सकता है।
0: प्रैक्टिकल करना ही होता है।
1: या
0: बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। बुवाई और रोपाई के लिए कौन कौन सी आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं इस समय और इनके सबसे ज्यादा क्या फायदे हैं?
1: कृषि उत्पादन में बीज जो है एक आधार है, और उस आधार को अगर सही समय पर सही जगह पर नहीं डाला गया तो फसल की कोई भी जो मैक्सिमम उपयोगिता है वो नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए हम यंत्र जो सीड ड्रिल है, सीड प्लांटर है, हैप्पी सीडर है, चाहे अब वेरिएबल रेट फर्टिलाइजर सीड ड्रिल भी यूज़ करते हैं। उसके बाद अब जो एआई का ज़माना है आज की डेट में, एआई के थ्रू उन्नत किस्म की मशीनरी आ रही हैं, उसमें एआई के थ्रू मॉइस्चर कहाँ पर है और कितनी डेप्थ में डालना है वह एग्जैक्ट प्रिसीजन सीडिंग जो हम कहते हैं उसके द्वारा कर लेते हैं। क्योंकि बिजाई एक बहुत महत्वपूर्ण काम
0: बिल्कुल
1: है,
0: सच है।
1: अगर बिजाई हम गलत कर दिए तो 100 दाने अगर मैंने डाला, अगर 20 दाने गलत जगह पर डल गए तो खेत में प्लांट पॉपुलेशन कम होगा, लेकिन उसके अनुसार क्या पानी कम लगेगा? नहीं लगेगा।
0: और पौधों से पौधों
1: तो
0: की दूरी नहीं रहेगी
1: दूरी नहीं रहेगी।
0: जी।
1: दूसरी है कि जो सारा दिन जो 3 महीने का अगर फसल चक्र है,
0: हाँ
1: तो 3 महीने में सारा काम तो आप बराबर ही करेंगे, लेकिन उत्पादन क्या होगा? बहुत कम होगा। तो इसलिए बिजाई जो है बहुत जरूरी है, और समय पर बिजाई, सही जगह पर बिजाई होना अत्यावश्यक है।
0: डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो अभी भी जो बहुत छोटे गांव हैं वहां तक अभी ये चीजें नहीं पहुंच पाई हैं, तो वो हाथों से भी करना बेहतर मानते हैं, कहते हैं हाथों से बुआई करनी चाहिए मैनुअल। तो आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे कि मैनुअल करनी चाहिए या मशीनों से करनी चाहिए उन्हें?
1: वो तो अगर किसान को पहुंच नहीं है तो आजकल हैंड हेल्ड स्मॉल स्केल में भी मशीनें उपलब्ध हैं
0: अच्छा
1: जो हस्तचालित हैं,
0: अच्छा
1: जैसे खासकर सब्जी उत्पादक का जोत बहुत कम होता है, और कुछ किसान डाइवर्सिफाइड फार्मिंग करते हैं कि कुछ मूली लगा लिए, कुछ गोभी लगा लिए,
0: अच्छा
1: तो उतने छोटे प्लॉट में बड़ी मशीनों का उपयोग नहीं हो पाएगा, तो छोटी मशीनें भी उपलब्ध हैं और
0: हाँ
1: उस मशीनों को उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक और टेराइन का भी होता है, जैसे कि पहाड़ों में अगर बड़े ट्रैक्टर को मैं कहूं कि ले जाना है तो बड़ा मुश्किल
0: बहुत
1: होता है,
0: मुश्किल होगा।
1: तो उसमें छोटे पावर्ड मशीन भी उपयुक्त हैं, जैसे स्प्रे के काम में जो बैटरी चालित हैं आज की डेट में वो भी उपलब्ध हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे धान हो गई, गेहूं हो गए, दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों की जो कटाई और मड़ाई में आधुनिक मशीनों की क्या भूमिका है?
1: आज भी बहुत सारे लोग केवल धान को काट के
0: हाँ
1: और वो किसी लकड़ी के टुकड़े ड्रम के ऊपर झाड़ते हैं और निकलता है, तो उसमें होता क्या है, 10 से 12% उसी पे बायोमास के साथ रह जाता है। उतना आपका जो सारा श्रम पैसे लगा के वो बेकार में चला गया, लेकिन मशीनों द्वारा 98-99% रिकवर हो सकता है। तो आप सोचिए 10 से 15% केवल मशीन के उपयोग से आपकी उत्पादकता बढ़ गई। और साथ साथ इसमें एक और चीज़ है, मशीन का उपयोग सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशीन के पास दिमाग नहीं है, लेकिन जो आदमी हम ऑपरेट कर रहे हैं उसके ऑपरेशनल पैरामीटर के द्वारा हम उससे बातचीत कर सकते हैं। तो उसी तरह से मशीनों के ऑपरेशन में सबसे बड़ी चीज़ है कि मशीन जब भी लें तो उसके मैनुअल या प्रशिक्षण के दौरान उसको अपने से चला के देखें कि वो कैसे, किस फंक्शन से कैसे बदलता है, उसका चाल बदलता है, उसके क्लियरेंस बदलते हैं और कहाँ पर किस चीज़ का उपयोग करना ज़रूरी है।
0: जी। तो डॉक्टर साहब, जो ये मशीनें हैं तो इनको सही तरीके से रखना भी बहुत जरूरी है, तो किस तरीके से उनका रख रखाव पर वो ध्यान दें?
1: रख रखाव तो बहुत अत्यावश्यक है।
0: जी
1: जैसे इस ब्रह्मांड में जो मानव शरीर है यह सबसे बड़ा मशीन है,
0: जी बिल्कुल
1: अगर हम सही तरीके से इसका रख रखाव नहीं करते हैं तो बीमारियां आती हैं। मशीन तो एक छोटा सा यूनिट है, उस यूनिट को आप अगर सही तरीके से ग्रीजिंग क्लीनिंग नहीं करेंगे

0: तो अक्सर इससे एक्सीडेंट भी होता है। जैसे सबसे ज़्यादा मशीनों में यूज़ होने वाला थ्रेशर है, हर जगह थ्रेशर चलता है।
1: जी
0: लेकिन मैं एक सुझाव देता हूँ किसान भाइयों को कि कभी भी उसके बेल्ट के कवर को आप नहीं हटाएं और ढीले कपड़ों पहन के उसके पास नहीं जाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। वाकई में बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, तो इसके लिए प्रशिक्षण लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कहाँ से प्रशिक्षण लिया जा सकता है?
0: वो प्रशिक्षण केंद्र हैं, भारत सरकार के भी हैं, राज्य सरकार की हमें कि कृषि एक जो है स्टेट सब्जेक्ट है, तो राज्य सरकार ने भी बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण केंद्र रखा है। उसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा KVK उपलब्ध हैं, वहाँ पे हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। उनके फार्मों को मैं तो ये कहूँगा कि जो किसान भाई किसी मशीन का उपयोग करना चाहते हैं, सबसे पहले किसी जगह जाके या तो KVK में या यूनिवर्सिटी में या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के केंद्रों पर जाके अपने आँखों से देखें कि यह क्या काम कर रहा है और कितना आसान है कितना दुर्लभ है, और उनसे संवाद करें तो शायद आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा और आप उसका उपयोग कर पाएंगे।
1: डॉक्टर साहब, आप खुद भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से हैं, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी हमारे युवाओं के लिए, किसान भाई बहनों के लिए इस तरीके के प्रशिक्षण का कोई प्रावधान रखता है?
0: हाँ, समय समय पर हम प्रशिक्षण करते हैं
1: अच्छा,
0: और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक 2 से 3 दिन का भी,
1: अच्छा
0: ताकि माने हमारे जो किसान भाई हैं अगर उनको ज़्यादा समय नहीं हो पाता है तो 2 से 3 दिन आके उसमें अवलोकन करें और साथ साथ फील्ड में करता हुआ देखें, तो उससे बहुत अच्छा हो सकता है।
1: जी, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। आधुनिक कृषि में यांत्रिकरण की भूमिका और उपयोगिता पर आपने विस्तार से हमें जानकारी दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: तो प्रतिमा, आज जैसे कि देशभक्ति की बात हो रही है और 15 अगस्त आने भी वाला है, तो आप कौन सा लोकगीत सुनवा रहे हैं?
1: भाई देखिए, मैं सुनवा रही हूँ देशभक्ति गीत राजपाल सिंह और योगेंद्र सिंह निमचाना की आवाज में।

0: और ये लोकगीत हम सुन रहे थे राजपाल सिंह और योगेंद्र सिंह निमचाना की आवाज में।
1: जी बिल्कुल। और कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसानों को कुछ सलाह भी दी जाती है ताकि वो इस सलाह को माने और अपनी खेती किसानी को सेफ रख सके। तो वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह है कि किसी प्रकार का छिड़काव न करें तथा खड़ी फसलों और सब्जी नर्सरियों में उचित प्रबंधन रखें, दलहनी फसलों तथा सब्जी नर्सरियों में जल निकास की उचित व्यवस्था रखें।
0: साथ ही धान की फसल में यदि पौधों का रंग पीला पड़ रहा हो तो पौधों की ऊपरी पत्तियां पीली और नीचे की हरी हों तो इसके लिए जिंक सल्फेट 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें।
1: बिल्कुल। किसानों को ये भी सलाह है कि वर्षा मौसम में खरपतवारों की वृद्धि अधिक होती है, अतः सभी खड़ी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का कार्य शीघ्र करें। साथ ही सभी फसलों में सफेद मक्खी तथा चूसक कीटों की नियमित निगरानी भी करते रहें।
0: एक बात और जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए इस वक्त में, यह समय चारे के लिए ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त है। अतः किसान भाई पूसा चरी 9, पूसा चरी 6 या अन्य संकर किस्मों की बुआई करें। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और आजादपुर मंडी से फल एवं सब्जियों के भाव जो प्राप्त हुए हैं वो इस प्रकार से हैं।
1: सबसे पहले हम बता दें, आलू का जो भाव रहा वो है 15 रुपए प्रति केजी, प्याज रही 20 रुपए किलो, टमाटर हमारे 30 रुपए किलो रहे और बीन्स जो है वो रही 50 रुपए किलो।
0: और इसी के साथ फलों की भी बात कर लेते हैं। जो सेब का भाव रहा 150 रुपए प्रति किलो रहा, वहीं केले का भाव रहा 25 रुपए प्रति किलो और अमरूद का भाव जो आजादपुर मंडी में आज का चल रहा है वो है 50 रुपए प्रति किलो, वहीं पपीता 25 रुपए प्रति किलो बिक रहा है।
1: और हमें उम्मीद है कि इन भाव से और ये सलाह से हमारे किसान भाई बहन पूरा पूरा लाभ उठाएंगे।
0: जी
1: तो किसान भाई बहनों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है? आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें अपने मेल द्वारा भेज सकते हैं।
0: जो हमारा ईमेल आईडी है वो इस प्रकार से है, feedback@gmail.com। मैं पुनः आपको एक बार बता देता हूँ, feedback@gmail.com। इस ईमेल पर आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं।
1: तो रजनीश, हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से हमारे सभी किसान भाई बहन लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ मैं प्रतिमा शर्मा
0: और मुझे रजनीश को दीजिए अनुमति,
1: नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या

0: जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए, अब समय है कार्यक्रम गजल कव्वाली का। कार्यक्रम की पहली गजल जो प्रस्तुति हमने ली है फिल्म फिल्म नाम से। गायक कलाकार हैं पंकज उदास और साथी। गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: और कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं एक कव्वाली। फिल्म का नाम है अनोखी अदा। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार। रचना है मजरूह सुल्तानपुरी साहब की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।
1: दिलों का न पूछो सनम आप

0: और इसी के साथ ये गज़ल कव्वाली का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, सरकार ने डेंगू और मलेरिया के बचाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी है, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम के अंतर्गत दिल्ली में वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई तक लगभग 1500 करोड़ रुपए की खरीद हुई है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने अपने सभी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर तक बढ़ा दी है। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि सरकार ने डेंगू और मलेरिया के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है, क्योंकि मई से ही इस बात का अंदाजा था कि बारिश के मौसम के कारण बीमारियां फैल सकती हैं। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि राजधानी के सभी अस्पतालों में ऐसे मामलों के लिए बेड का इंतजाम भी किया गया है।
5: हमारे हर हॉस्पिटल में उसके लिए बेड की व्यवस्था, साथ में आईसीयू में वेंटिलेटर की भी अलग से इमरजेंसी हो रही है, और अभी तक से पेशेंट आए लेकिन वो ठीक होकर अपने घर गए, और हम डॉक्टर विद मेडिसिन सब कुछ हर हॉस्पिटल में प्रिपरेशन है और कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई है अभी तक से, ये एक अच्छी अवश्य है।
4: दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सभी विदेशी नागरिक 15 दिन की तय समय सीमा से ज्यादा समय तक राजधानी के होटल में रुके हुए थे। पुलिस ने विदेशी नागरिकों के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, 7 डबल एंट्री वीजा और 7 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। साथ ही विदेशी पंजीकरण कार्यालय के जरिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा विदेशी पंजीकरण कार्यालय ने उनके आने जाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं और देश से वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी लोगों को हिरासत केंद्र में भेज दिया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं। पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए श्री सिरसा ने कहा कि बजट होने के बावजूद पिछले 3 सालों में पूंजीगत व्यय में लगातार गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार कई योजनाएं लाई लेकिन उन्हें कभी लागू नहीं किया गया।
6: इम्पोर्टेंट बात एक जो और सामने आई कि बहुत सारे हेड को तब्दील इधर उधर किया गया जिनकी जरूरत नहीं थी, और कई जगह तो पैसा और भी मांगा गया और मांगने के बाद पता चला कि वो भी सरेंडर कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अभी उस पर चर्चा होगी और आपके सामने वो भी लेके आएंगे।
4: दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने 2020 दंगों की साजिश को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा में उन्होंने कहा कि हिंसा को श्री ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। श्री सूद ने कहा कि पिछली सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन का बार बार बचाव किया और उसे राजनीतिक संरक्षण देने का भी प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व,

सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सभी से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली

0: हुई। संवाददाताओं से बातचीत में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का यह अवसर तिरंगे के तले दिल्ली और देश की सेवा करने के संकल्प को दोहराने का मौका देता है।
1: तिरंगा यात्रा 2014 से ही प्रधानमंत्री जी के सत्ता में आने के बाद, देश की सेवा में आने के बाद से ही तिरंगा यात्रा का पूरे दिल्ली भर में और देश भर में आह्वान किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस का ये मौका तिरंगे की छाव में दिल्ली और देश के लिए सेवा के संकल्प को पुनः लेने का अवसर होता है।
0: राजधानी के अक्षरधाम मंदिर में आज आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिसर में 4 नए टूरिज्म सर्किट का शुभारंभ किया। सदगुरु श्री जग्गी वासुदेव जी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर है और देश की राजधानी होने के साथ साथ इसका ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने आज इन सभी पहलुओं को देश और दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं कुमार बल।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम के प्रभावी उपयोग से अब सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सुगम और अधिक पारदर्शी बनाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राजधानी में सरकारी खरीद प्रक्रिया पहले छोटे कारोबारियों और उद्यमियों के लिए कठिन और अधिक समय लेने वाली थी। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की सरकारी खरीद में जेम के बढ़ते उपयोग और सेवाओं की खरीद में लगातार बढ़ रही भागीदारी को देखते हुए दिल्ली को सस्टेन्ड सर्विस प्रोक्योरमेंट एडॉप्शन श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जेम के माध्यम से सेवाओं की खरीद में बढ़ती हिस्सेदारी और जेम के फायदों को पहचानते हुए दिल्ली के सरकारी खरीदारों द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि जेम के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई तक लगभग 1500 करोड़ रुपए की खरीद दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के लगभग 600 करोड़ रुपए के 156% अधिक है। वहीं इसको बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 65 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिनमें 3600 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एमएसएमई सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि रोजगार, नवाचार और स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि हर एमएसएमई को अवसर, हर उद्यमी को पारदर्शी बाजार और हर छोटे कारोबारी को आगे बढ़ने का मजबूत प्लेटफॉर्म मिल सके। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने अपने सभी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर 8 सितंबर कर दी है। एक रिपोर्ट।
4: अभी तक के 49 कार्यक्रमों के अलावा CDOE ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 11 नए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसका उद्देश्य अपने शैक्षणिक दायरों को बढ़ाना और सीखने वालों को आवश्यक शैक्षणिक भाषा और व्यवहारिक कौशल का अवसर प्रदान करना है। इसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रवेश परीक्षा अब 22 अगस्त के बजाय 19 सितंबर को होगी। दोनों कार्यक्रम के लिए परीक्षा केंद्र JMI कैंपस के अंदर ही होगा और इसकी जानकारी एडमिट कार्ड के जरिए दी जाएगी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी ने जरूरी और कौशल आधारित कार्यक्रम के जरिए शैक्षणिक अवसरों को मजबूत करने और विश्वविद्यालय की पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वीरेंद्र कौशिक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस पुरस्कार समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे। सूचना और प्रसारण

मंत्रालय के अंतर्गत प्रकाशन विभाग को फिक्की पब्लिकान 2026 पब्लिशिंग अवार्ड में प्रतिष्ठित बुक ऑफ द ईयर नॉन फिक्शन हिंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के लिए प्रदान किया गया। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन है। और बात मौसम की, राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा, हालांकि कई क्षेत्रों में तेज बारिश भी हुई। आज का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने के साथ ही कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। कल अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। अब आप दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन कई विधेयक जहां पारित किए गए, वहीं शून्यकाल में कई विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाए। शून्यकाल के दौरान मोतीनगर विधानसभा के सुदर्शन पार्क में भूमिगत जलाशय बनाने का मुद्दा क्षेत्रीय विधायक हरीश खुराना ने उठाया। भाजपा विधायक श्याम शर्मा ने एक बार फिर गायों मवेशियों के सड़कों पर खुलेआम छोड़े जाने का मामला रखा। वहीं भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन ने जीटीबी अस्पताल में अनुबंधित कर्मियों को निकाले जाने का मामला सदन में रखा। इसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सदन में प्रस्ताव रखा कि दिल्ली शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना निरसन विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए सदन में हंगामा किया। नारेबाजी के बीच सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। दोबारा सदन शुरू होने पर फिर नारेबाजी चलती रही और सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पंकज कुमार सिंह द्वारा सदन में रखे गए दिल्ली नागरिक समयबद्ध और सुगम सेवा प्रदानार्थ अधिकार विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान विपक्ष ने सदन में फिर हंगामा और नारेबाजी की, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के आदेश पर सुरक्षाकर्मियों ने आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह, कुलदीप कुमार, जुबैर अहमद सहित लगभग सभी विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। इसके बाद दिल्ली नागरिक समयबद्ध और सुगम सेवा प्रदानार्थ अधिकार विधेयक को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली शयन कक्ष और भोजन संस्थापना निरसन विधेयक 2026 को भी पारित किया गया। विधानसभा में आज दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड संशोधन विधेयक 2026 भी चर्चा के बाद पारित किया गया। इसके साथ ही श्री सूद ने दिल्ली अग्निशमन सेवा विधेयक 2026 सदन पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के अंतर्गत नेशनल बिल्डिंग कोड शब्द की जगह केवल बिल्डिंग बाइलाज रखा जाए, जिससे आने वाले समय में अग्नि सुरक्षा संबंधित नियम सुव्यवस्थित हों। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा 7 अगस्त को सदन पटल पर रखी गई दिल्ली सरकार से संबंधित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के ऊपर प्रस्तुत कागजातों पर चर्चा की गई। साथ ही 10 अगस्त को प्रस्तुत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित वर्ष 2024-25 के राज्य वित्त पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के ऊपर भी चर्चा हुई। श्रीमती गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट पर बोलते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस आम आदमी पार्टी ने 34 योजनाओं में 2961 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सीओजी रिपोर्ट संख्या 1 में मुख्य रूप से वर्ष 2022-23 के दौरान दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित सीएजी की टिप्पणियां, लेखा परीक्षा निष्कर्ष और निष्कर्षात्मक टिप्पणियां शामिल हैं। इसके बाद सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप विधानसभा में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, सरकार ने डेंगू और मलेरिया के बचाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी है, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम के अंतर्गत दिल्ली में वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई तक लगभग 1500 करोड़ रुपए की खरीद हुई है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने अपने सभी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। ये इस समय स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 8:15 और अब समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत मालिका का। गीत मालिका कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपके साथ चेतन कुमार शर्मा। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म का नाम है लगान, और इसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण और AR रहमान ने, और इसको संगीत भी दिया है AR रहमान ने, और गीतकार हैं जावेद अख्तर। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

और कार्यक्रम में जो गीत हम आपको आगे सुनवाने जा रहे हैं, ये गीत रचना और संगीत निर्देशन और गायक कलाकार सभी पीयूष मिश्रा जी का है, और फिल्म का नाम है गुलाल।

है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।

जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की धूम हार दो। हार पान शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।

दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर

0: तेरा लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो, रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो, भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।
1: आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, मान वान शान या की जान का हो दान आज धनुष के बाण पे उतार दो।

और कार्यक्रम में आ गया ये सुनते हैं लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है असली नकली, गीत रचना है शैलेंद्र की और संगीत दिया है शंकर जय किशन ने।

फ्रांसिस चैनल पर आप सुन रहे हैं गीत मालिका फिल्म संगीत और मैं हूं आपके साथ चेतन कुमार शर्मा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और अगला गीत। फिल्म का नाम है फना। गीत को गाया है शान और कैलाश खेर ने, संगीत दिया है जतिन ललित ने। तो आइए

0: और एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आए सुनते हैं एक और गीत, फिल्म लक्ष्मी से गायक कलाकार हैं रैपर विरूस, और गीत रचना और संगीत दिया है उल्लू मालती ने।
1: काल मृत्यु मर

और कार्यक्रम में आगे आइए, सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण को। फिल्म का नाम है मोहब्बतें। गीत रचना है आनंद बख्शी साहब की और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

और कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं संतोष सुमन को। फिल्म का नाम है शिव की महिमा अपार। गीत रचना है राजपूत के कमल की और संगीत दिया है संतोष सुमन ने।

और कार्यक्रम में आ गया। ये सुनते हैं महेंद्र कपूर और साथियों को फिल्म उपकार में, गीत रचना है गुलशन बावरा की।

0: उपकार फिल्म के इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत गीतमाला का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। चेतन को दीजिए अनुमति, नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
3: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
2: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
4: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
2: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
5: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
6: राहुल गांधी जी कई दिनों से

0: गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के लिए तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने

0: छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
1: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
2: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
1: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
3: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।

देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिश ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए AI को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में RBI गवर्नर ने कहा कि AI ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पार्लियामेंट ने ट्रिब्यूनल निज़ाम की कारकर्दगी और शफाफियत में बेहतरी लाने की खातिर बिल मंजूर कर लिया है। इसने कौमी ट्रिब्यूनल कमीशन की तजवीज़ पेश की है। लोकसभा ने अपोजिशन के शोर शराबे

0: चाबी अपोजिशन की जानिब से उठाए गए मामलात पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: इस दौरान कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट पवन खेड़ा ने मुबैना तौर पर कहा कि वजीर दाखला इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं। भारत ने आज ये बात दोहराई है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अटूट और कभी ना अलग होने वाला हिस्सा है और इस सच्चाई को कोई तब्दील नहीं कर सकता। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन के सरहदी इलाकों से मुतालिक मामलात में भारत ने हमेशा बातचीत में इस बात पर जोर दिया है कि वो इन मामलात को सबसे संजीदा मानता है।
2: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: जनाब जायसवाल ने मुत्तला किया कि भारत ने बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान को बाहमी दौरे के साथ साथ नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स आउटरीच इजलास के लिए दावतनामा भेजा है। उन्होंने मजीद कहा कि कल भारतीय हाई कमिश्नर ने बांग्लादेश के वजीर आजम से मुलाकात की और तरफेन ने बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खलाई तहकीक की अमरीकी एजेंसी नासा ने आर्टेमिस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी के तौर पर खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। इस मुआहदे के तहत भारत और अमरीका ओपन साइंसी डेटा साझा करने पर तआवुन से मुतालिक बातचीत को आगे बढ़ाने पर रजामंद हो गए हैं। भारत ने 5 और 6 अगस्त को बेंगलुरु में इसरो के सदर दफ्तर में भारत अमेरिका सिविल खलाई मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की नवी मीटिंग की मेजबानी की। इसरो चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन और भारत में अमेरिकी सफीर सर्जियो गोर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि मुलाकात के दौरान भारत और अमरीका के दरमियान ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रस्ट पहल के तहत सिविल और तजारती खलाई इश्तराक में पेशरफ्त हुई। फरीकैन ने गुज़श्ता साल नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार NISAR के मुश्तरका तौर पर कामयाब लॉन्च के बाद बढ़ते तआवुन पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों फरीकों ने साइंस और मुस्तकबिल में खला में इंसान की परवाज से मुतालिक टेक्नोलॉजी के तआवुन पर भी बातचीत की। फरीकैन ने बाहरी खला की सरगर्मियों की तवील मुद्दती पायदारी से मुतालिक बाहरी खला के पुरअमन इस्तेमाल की अक़वामे मुत्तहिदा की कमेटी COP UOS के रहनुमा खतूत पर आगे बढ़ने की अपनी अहदबस्तगी को दोहराया। इसके अलावा फरीकैन ने कमेटी की असर पजीरी की यकीन दहानी के लिए जारी कसीर जहती कोशिशों का भी जायजा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमवतनों पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत की तामीर का अहद करते हुए फख्र और शान के साथ यौम आज़ादी मनाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर करते हुए जनाब मोदी ने हर शहरी की साथ आने और मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश करने के लिए हौसला अफजाई की। इसके अलावा वजीर आजम ने सभी से हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अपने घरों पर तिरंगा फहराने पर भी जोर दिया।
3: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाए, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के करना इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक टिटवाल के मकाम पर आज अजीम शान तिरंगा रैली मुनक़द की गई। रैली की खसूसियत 1200 मीटर लंबा कौमी परचम रही। रैली में स्कूली तलबा, असातज़ा, साबिक फ़ौजियों, सिविल और पुलिस अफसरान, सिविल सोसाइटी अरकान और मकामी बाशिंदों ने शिरकत की। शुरका ने तिरंगे के साथ हुब्बुल वतनी के नारे लगाते हुए मार्च किया। आज

0: बीजेपी की जानिब से किए गए झारखंड बंद का रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में जिंदगी के मामूलात पर असर पड़ा। पार्टी के वर्कर कल असेंबली मार्च के दौरान तलबा पर हुए मुबैना लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। तलबा के एहतजाज को 18 दिन हो गए हैं और एहतजाज कर रहे तलबा JPSC और JSSC इम्तहान को मनसूख करने, CBI तहकीक़ात और भर्ती के अमल में असलाहत की अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से आलमी सतह पर एहतजाज किया जाएगा ताकि सरकार की शह वाली दहशतगर्दी से दुनिया को आगाह किया जा सके। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर में कश्मीरियों पर रैलियां करने और POJK के लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी इकतदार की जानिब से मुबैना तौर पर ताकत के इस्तेमाल की जानिब तवज्जो मबजूल कराने पर जोर दिया है। अवामी एक्शन कमेटी ने 14 अगस्त को यौम सयाह के तौर पर मनाने का फैसला किया है, जिस दिन पाकिस्तान का यौम आज़ादी भी है। एहतजाज का सिलसिला 2 महीनों से जारी है और इसका कोई हल दिखाई नहीं देता। मुजाहरीन ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुबैना तौर पर 60 से ज़्यादा अफराद को हलाक कर दिया है और 500 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कल मशरक़ी राजस्थान, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, मगरबी राजस्थान, गोवा और शिमाल मशरक़ी रियासतों के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने कल दोपहर से शाम तक कौमी राजधानी में कुछ मकामात पर बहुत हल्की बारिश के साथ साथ आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं। शदीद बारिश की वजह से चट्टानों के टुकड़े गिरने के सबब रियासत की 2 कौमी शाहराहों और 204 दीगर सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। मौसमियात के महकमे ने आइंदा 24 घंटे के दौरान 5 अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके पेश नज़र इंतज़ामिया ने लोगों से दरियाओं से दूर रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की अपील की है। अमेरिका जल्द ही ग्रीन कार्ड्स, शहरियत और पनाह गुजनी समेत इमिग्रेशन से मुतालिक मुतादिद फवायद हासिल करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने के अमल को लाजमी बनाएगा। इस इकदाम का मकसद कारकर्दगी को बेहतर बनाना और ऑपरेशनल अखराजात को कम करना है। अमेरिका की शहरियत और इमिग्रेशन खिदमात से मुतालिक महकमे ने कहा है कि एक हुक्म के मुताबिक ऐसे फॉर्म्स जो कम से कम 180 दिन से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए दस्तयाब हैं, उन्हें ऑनलाइन जमा कराना ज़रूरी होगा। टेनिस में कनाडा ओपन 2026 में आज साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी इगा श्वांटेक खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। 6 मरतबा की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इगा ने रूस की डायना श्नाइडर को 6-2, 6-1 से शिकस्त दी। जुमेरात के रोज अब सेमीफाइनल में श्वांटेक का मुकाबला यूक्रेन की 9वें दर्जे की खिलाड़ी एलिना स्वीटोलिना से होगा। स्वीटोलिना एक दीगर क्वार्टर फाइनल में रूस की इकातेरिना एलेक्सेंद्रोवा को 3-6, 6-0, 6-3 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंची हैं। मर्दों के सिंगल्स में आज क्वार्टर फाइनल में इटली के 19वें दर्जे के लुचानो दुर्देरी का मुकाबला अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। पार्लियामेंट ने ट्राइब्यूनल निज़ाम की कारकर्दगी और शफाफियत में बेहतरी लाने की खातिर बिल मंजूर कर लिया है। इसने कौमी ट्राइब्यूनल कमीशन की तजवीज़ पेश की है। लोकसभा ने अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान रियासत केरला का नाम बदलकर केरलम करने से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया है। इसने इमदाद बाहमी इदारों के फरोग को वसत देने के लिए NCDC बिल को भी मंजूरी दी है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन के साथ मजबूत रिश्तों के लिए सरहदी इलाकों में अमन सुकून लाजमी है। उसने ये बात दोहराई है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है। नासा ने आर्टेमिस माहदे के तहत अपने अहम मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इसरो को मदऊ किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वह फख्र के साथ यौम आज़ादी मनाएं और विकसित भारत की तामीर का अहद करें। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जुमेरात से आलमी सतह पर एहतजाज किया जाएगा, जिसमें सरकार की शह वाली दहशतगर्दी से दुनिया को बावर कराने के लिए आलमी सतह पर रैलियों पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: Money Talk। This is Akashwani. In the program Money Talk, now we bring you a discussion on key provisions of the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. The participants are Sharad Kohli, economic analyst, and Gaurav Dhawanlal,

Mann kann. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री आवास योजना से बदलती शहरी आवास की तस्वीर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व

0: सदस्य किरीट एस पारिख। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: डॉक्टर पारिख, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पारिख, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1,25,00,000 से ज्यादा मकान स्वीकृत हुए हैं और 1 करोड़ से ज्यादा मकान पूरे भी हो चुके हैं। अगर इनिशियली हम देखें तो वर्ष 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक शहरी आवास की तस्वीर में काफी बदलाव आया है, तो आपके विचार में इस उपलब्धि को आप किस तरह से देखते हैं? इसका सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव जो था वो क्या था?
2: देखिए, पक्का हाउस मिलना ये सबके लिए बहुत जरूरी बात है। अब जब हम क्लाइमेट चेंज के का प्रभाव देख रहे हैं, हीट वेव्स बढ़ रहा है, ये सब के जरिए हैविंग ए शेल्टर, एक अच्छा मकान होना एक जरूरी बात है। लेकिन एक दृष्टि ये देखिए तो जो सबको न पक्का मकान अर्बन एरिया में देना, वो टारगेट था 2022 का। इसमें दो बहुत बहुत प्रगति हुई है, फिर भी टारगेट से हम दूर है। फिर भी जितना हुआ है इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज होती है। घर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अंदर रहने से, आबोहवा से, गर्मी से आपको राहत मिले। अरे इसके लिए हमको पक्का मकान की जरूरत है। लेकिन पक्का मकान की एक और भी बात है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए
1: जी।
2: गरीब लोग को एक पक्का मकान अपना होना एक बहुत इज्जत की बात होती है, जो सोसाइटी में, समाज में उनका महत्व बढ़ता है और लोग समझते हैं कि अच्छा है, इनके पास एक घर तो अपना है। और इसके असर काफी होती है, क्योंकि लड़के के लिए अच्छी बहू और लड़की के लिए अच्छा घर मिल सकता है एक्सचेंज में
1: जी।
2: तो ये सब मेरे ख्याल से बहुत अगत्य की बात थी कि ऐसा पीएम आवास योजना अर्बन में ऐसी सुंदर घोषणा की सरकार ने।
1: पारिक जी, आज की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का जो दूसरा चरण है 2.0, तो जाहिर सी बात है इसे पिछली योजना के अनुभवों से सीख लेकर तैयार किया गया है और अगले 5 वर्षों में शहरी परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने को विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। तो अभी स्थितियों में अगर देखें तो किस तरह का बदलाव लाया गया है और किस तरह से जो चुनौतियां भी सामने आई उनको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं?
2: बात यही सच है कि पहले चरण में हमने लगभग 1 करोड़ लोग को आवास दिया है
1: जी।
2: और अगर हम दूसरे चरण में ऐसी प्रगति करें तो भी काफी होगी, बट इससे भी अच्छा कोई कर सके तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मेरा ख्याल से इसमें क्या हुआ है कि सडनली जो सब्सिडी दे रहे वो कैसे मिलनी चाहिए, ये सब आसानी से हो गया है। तो पहले से इससे ब्यूरोक्रेसी की कम हुई है, यानी इसकी जरूर असर होगी कि कभी लोगों को पहले से एप्लीकेशन किया लेकिन उनको मिला नहीं, लेकिन आज बहुत सा अप्रूवल हो गया है और काफी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट किया गया है। तो अगत्य की चीज ये है कि बस हम ये प्रोग्राम जारी रखें जब तक पूरा ध्येय हासिल न हुए, और ध्येय हासिल करने के लिए जितने ताकत, जोर और पैसे लगाने चाहिए।
1: परीक जी, अभी जो 6 अगस्त को बैठक हुई जिसमें केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक हुई थी, इसमें 2,00,000 से अधिक नए मकानों को मंजूरी दी गई है और ये भी कहा गया कि 1,42,000 मकान लाभार्थी आधारित निर्माण और 67,000 से अधिक मकान जो है वो साझेदारी में किफायती आवास के तहत बनाए जा रहे हैं। तो ये जो 2 मॉडल रखे गए हैं, तो इनका लाभ किस तरह के परिवारों को मिलता है और जिन परिवारों के पास अपनी जमीन है या फिर अपनी जमीन जिनके पास नहीं है उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं इन योजनाओं से?
2: इसमें बहुत से पल्लू है। एक तो स्लम क्लियरेंस है, स्लम डेवलपमेंट, इसमें तो जे वहां रहते हैं स्लम ऑफिशियल स्लम रेसिडेंट है सबको मकान मिलने वाला है। ज्यादातर मकान देने में प्रॉब्लम ये होती है कि जमीन नहीं मिलती है, लेकिन इसमें से जमीन मिल रही उनको मिल जाएगी। दूसरा पल्लू ये है कि सरकार जिसके पास जमीन है अपनी उनको भी मदद करती है, और जिसके पास पुराना घर है उनको अपग्रेड करना चाहे इसके भी मदद होती है, और प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेने के लिए उन्होंने अलग अलग स्कीम बनाई है। तो मेरा ख्याल से ये सब स्कीमों हैं 5-6 अलग अलग तरीके के, इससे नॉट ओनली ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन बट ऑल्सो मिडल और अपर मिडल को भी फायदा होगा। एंड इसका जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन की बात करें, जिसको हमको मदद करते हैं वो धीरे धीरे उनके साथ जो दूसरे को मदद नहीं होती है इसके ऊपर वाले थोड़े, तो इनको होता है कि ये सब गलत हो रहा है, ये सब हमको क्यों नहीं। मेरा ख्याल से जरा कॉम्प्रेंस

0: विचार करके प्रोग्राम बनाया गया है।
1: आइए सुनते हैं पीएम आवास योजना पर ये विशेष रिपोर्ट। देश के शहरों में बिना पक्के मकान के रहने वाले परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक बड़ी पहल रही है। इस योजना के तहत अब तक 1.25 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें 1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। महिलाओं को घर के स्वामित्व में भागीदारी देकर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप

0: महिला मुखिया के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 25 जून 2015 से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले और सभी मौसम में सुरक्षित पक्के घर उपलब्ध कराना है। योजना के दौरान मिले अनुभवों के आधार पर इसे आगे बढ़ाते हुए 1 सितंबर 2024 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 शुरू की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण को 4 श्रेणियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इनमें लाभार्थी द्वारा निर्माण, साझेदारी में आवास निर्माण, किफायती किराए का आवास और ब्याज सब्सिडी योजना शामिल है। बीते सप्ताह 6 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 8वीं बैठक हुई। बैठक में विभिन्न राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए 2.09 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई। इनमें लगभग 1.42 लाख घर लाभार्थी द्वारा निर्माण श्रेणी के तहत हैं। इस श्रेणी में लाभार्थियों को अपनी जमीन पर पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं 67,045 घर साझेदारी में आवास निर्माण श्रेणी के तहत हैं। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में सार्वजनिक और निजी एजेंसियां किफायती आवास परियोजनाएं विकसित करती हैं और पात्र लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एक मांग आधारित योजना है, यानी लाभार्थियों के आवेदन के बाद मांग का आकलन, परियोजनाओं का निर्माण और लाभार्थियों का चयन संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार योजना की प्रगति की निगरानी करती है और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर मंजूर घरों को तय समय में पूरा करने पर जोर देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने पिछले वर्षों में शहरी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब 1 करोड़ से अधिक घरों के पूरा होने के बाद अगली चुनौती मंजूर घरों को समय पर पूरा करना और दूसरे चरण के तहत तय किए गए 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र परिवारों तक सहायता पहुंचाना है। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: परिक जी, इस योजना में महिलाओं के नाम पर या फिर संयुक्त स्वामित्व में मकान देने को विशेष प्राथमिकता दी गई, यानी कि अगर किसी महिला को मकान दिया जा रहा है तो उसे विशेष प्राथमिकता मिलेगी। तो कुल जो 1.25 करोड़ स्वीकृत मकान है, इसमें लगभग 1 करोड़ मकान जो है महिलाओं के नाम या फिर संयुक्त स्वामित्व में है। तो इस तरह का जो फैसला है, ये महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका में किस तरह से बदलाव आपको बताता है, किस तरह से दिखाता है कि अब महत्वपूर्ण में उनकी भागीदारी बदल रही है।
2: महिलाओं को जब हम घर की मालिकी देते हैं तब उनका प्रभुत्व बढ़ता है, घर में उनकी एजेंसी बढ़ती है और ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं का सशक्तिकरण जितना बने इतना करे। तो ये अच्छी बात है प्रोग्राम में कि महिलाओं को सरकार प्राथमिकता दे रही है और सबसे ज्यादा तो वीडोज को और भी ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, ये जरूर से उनके लिए, उनकी घर में भी इनकी आवाज की कीमत ज्यादा होगी और लोग उनको इनका फैमिली नाम का जो फैमिली है वो भी उनको ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे।
1: डॉक्टर पारिक, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक मांग आधारित योजना है और परियोजनाओं के प्रस्ताव जो हैं वो राज्यों से या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से आते हैं, तो ऐसे में क्या अलग अलग राज्यों की प्रशासनिक क्षमता और शहरी नियोजन व्यवस्था के कारण योजना को कैसे मतलब चेंज किया जाता है कि किसी प्रदेश में इस तरह से आवास बनेंगे, दूसरे प्रदेश में दूसरी तरीके से बनेंगे, या फिर संख्याओं का जो वितरण होता है उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं?
2: हमारा जो राष्ट्र है इसमें राज्यों की सरकार को काफी स्वतंत्रता मिलती है, तो इसको साथ में ले जाना जरूरी है। मेरा ख्याल से ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें सब राज्यों को भी ऐसा लगेगा कि हमारे हित में है, जो उनकी सरकार है उनको भी लगेगा, इससे हमारी फॉलोइंग बढ़ेगी। मेरा ख्याल से राज्यों को तो अलग अलग करना है, लेकिन राज्यों को बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी 1 डजन से हमारे यहाँ दरेक राज्य में अलग अलग सरकार है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ध्येय है, उसकी समझ नहीं आती है लोगों। और कभी कभी ऐसा एक लगता है कि ये तो अच्छी बात है, दूसरे को लगे कि इससे अच्छा दूसरा कोई है, तो इसमें ये प्रॉब्लम तो होने वाला ही है, बंधारण ने दिया हुआ प्रॉब्लम है, तो इसका कुछ हम कर नहीं सकते। लेकिन राज्यों के साथ बातचीत करके प्रोग्राम को मठारित कर सकते हैं कि कैसे करा जाए, कैसे दिया जाए, जितना बने इतना ज्यादा राज्य इसमें अपना पूर्ण योगदान दे।
1: जी डॉक्टर पारीख, पिछले वर्ष के आंकड़ों की बात हम करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1,18,00,000 से अधिक मकान स्वीकृत हुए, जिसमें से करीब 88 लाख से अधिक मकान पूरे हुए हैं और

0: इनमें 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश हुआ था। तो अगर रोजगार के नजरिए से देखें तो इतने बड़े निर्माण कार्यक्रम का क्या महत्व है, और जाहिर सी बात है इसमें निर्माण सामग्री की भी काफी मांग होती है, तो स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ा और लोगों के लिए किस तरह रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए?
1: ये काफी लगता है, फिर भी हमको देश में कितना कंस्ट्रक्शन, कितना बांध काम हो रहा है इसके हिसाब से इसको देना चाहिए। इससे सर्टनली थोड़ी बढ़त होती है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, सबसे ज्यादा अनस्किल्ड लेबर को एम्प्लॉय करता है। तो इसीलिए ये प्रोग्राम से, घर बांधने से सबका फायदा होता है, और खास करके वो अनस्किल्ड लेबर हो उनका।
0: जी, और सरकार का लगातार लक्ष्य ये रहा है कि सरकार ने इन योजनाओं के साथ में जल जीवन मिशन को जोड़ा है, स्वच्छ भारत मिशन को जोड़ा है, सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो उसके लिए भी काम किए जा रहे हैं। बिजली जो पहले एक बड़ी समस्या मानी जाती थी, आज उस दिशा में इतना काम हो रहा है कि घर पर ही लोग अपना सौर पैनल लगा करके अपनी बिजली बना सकते हैं, और साथ ही अगर एक्स्ट्रा बिजली का उत्पादन होता है उसे बेच भी सकते हैं। तो इस तरह की जो योजनाओं के साथ तालमेल किया जा रहा है, इनसे नागरिकों के जीवन में कैसा बदलाव आ रहा है?
1: पहले हमने आवास योजना बनाई थी, और आज की आवास योजना में ये जो बदलाव आया है अलग अलग प्रोग्राम का लिए, स्वच्छता मिशन, 95% से भी ज्यादा घरों में आजकल बिजली पहुंची है, तो
0: जी
1: इससे बहुत फर्क हुआ है। इसलिए लोगों का बस क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी अपेक्षाओं बढ़ गई है।
0: पारिक जी, सरकार की तरफ से जो सहायता प्रदान की जाती है उसमें सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है लोगों को, ताकि वो अपने खुद का मकान जल्दी से जल्दी बना सकें। तो लोग इन चीजों का फायदा कैसे उठा सकते हैं?
1: ये अलग चीज है कि बिल्कुल फ्री मकान देने की वजह सबको कहा है कि बस हम तो सब्सिडी देंगे, इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोग आसानी से थोड़ा लोन अपने आप लेते हैं, और उसको फिर मेरा मकान है, मैंने इसका पैसा दिया है, ये सब भाव से उनकी आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ इवेल्युएशन भी बढ़ता है। मेरा ख्याल से काफी असर होती है सबके ऊपर। बट अच्छी बात यह है कि जो प्रोग्राम है इसमें फाइनेंशियल एड सबको मिलती है,
0: जी
1: लेकिन इसको थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ी हुई है, ये मेरा ख्याल से अच्छी चीज है। क्योंकि खाली पूरी फ्री बिल्डिंग देने से क्या होता है कि लोगों के बस सरकार पर निर्भरता बढ़ती जाती है, और इससे पोते अपने आप जो प्रयत्न करना चाहिए करने से कम होता है। ये अच्छी बात है कि सरकार सभी बहुत सी तरीके से मकान में सहाय देती है फाइनेंशियल, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि पूरा नहीं, ओनली पार्शियल हेल्प एड इज गिवन।
0: जी डॉक्टर पारिक, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मेरा सौभाग्य आपने मुझे बुलाया है।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना से बदलती शहरी आवास की तस्वीर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य किरीत एस पारिक। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: मंथन।

0: ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 241, श्रीमान जीसी चंद्रशेखर जी।
2: प्रश्न संख्या 241, क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की आवंटित निर्माणाधीन और चालू क्षमता संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है। ख, प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत जुटाया गया निवेश कितना है। और ग, ग्रिड संपर्क, पारेषण, ट्रांसमिशन, अवसंरचना और

0: पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में किन किन बाधाओं की पहचान की गई है?
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत पाजपे जी देन फर्स्ट सप्लीमेंट्री जी सी
2: चंद्रशेखर
1: सप्लीमेंट्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी,
3: आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ मंत्री से कि आप सोलर एनर्जी के क्या फायदे हैं और इनके लिए क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है?
0: श्रीपद यशो नाइक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री।
4: सभापति महोदय, भारत के लिए ऑफशोर विंड एनर्जी कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस प्रदान करती है, उसमें से हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर तमिलनाडु में लगभग 50-54% और गुजरात में 30-40% तक सीवेज उपलब्ध है, जिसमें इंस्टॉल कैपेसिटी प्रत्येक मेगावाट से अधिक एनर्जी जनरेशन इसकी संभावना होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑफशोर विंड जो है तो ऑफशोर विंड की तुलना में अनेक जनरेशन और वहां पैदा होते हैं और उसकी कम वेरिएबिलिटी को प्रदान करता है। तीसरा है सोलर पावर को विंड एनर्जी कॉम्प्लीमेंट करती है अध्यक्ष महोदय। चौथा है तो स्कैर लैंड की आवश्यकता उसमें नहीं होती है और इसे लैंड एक्विजिशन के राइट ऑफ वे ऑफ इससे जुड़ी कई कंस्ट्रेंसेस सभी बच जाते हैं जो लैंड बेस्ड रिन्यूअल प्रोजेक्ट में सामने आ जाती है। कोस्टल इकोनॉमी को बूस्ट करता है और ऑफशोर विंड से डेवलपमेंट से पोर्ट, वेजल फैब्रिकेशन, मरीन लॉजिस्टिक और कोस्टल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है, इससे नए एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन पैदा होती है।
5: थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मोदी जी।
6: ड्यू टू द चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस द रिन्यूएबल एनर्जी इन हाइड्रल प्रोजेक्ट आदरणीय विंड प्रोजेक्ट हाउ मच इट इज अफेक्टेड, इज देयर एनी लॉसेस, इफ इट इज देयर हैव इट बीन मेजर्ड एंड आई वुड लाइक टू नो हाउ एवरी स्टेट इज अफेक्टेड बाय ड्रॉट and cyclone and hurricane and floods and renewable energy with respect to that. Thank you, sir.
4: Honorable Minister, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, ये जो प्रश्न है
0: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम गुलदस्ता। कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे गजलें फरदीन हसन जी की आवाज में। सितार पर साथ दे रहे हैं अकील अहमद, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी, सारंगी पर हैं तानिश धौलपुरी और तबले पर साथ दे रहे हैं पशुपतिनाथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज आपने सुनी गजलें फरदीन हसन जी की आवाज़ में। साथ में सितार पर थे अकील अहमद, हारमोनियम जाकिर धौलपुरी, सारंगी पर थे तानिश धौलपुरी और तबले पर साथ दे रहे थे पशुपतिनाथ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंजन, जिसमें आज हम सुनेंगे भीमप्पा भजंतरी और एहसान की युगल जोड़ी के साथ राग बागेश्री।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंजन, जिसमें आज आपने सुना राग बागेश्री, भीमप्पा भजंतरी और एहसान जी की युगल जोड़ी में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी समाचार प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
1: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकार

0: विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
1: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता का कोई इसे बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टिमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिमी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. When the upper house met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to discussion on the bill, Mr. Meghwal said, the new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court. The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. The Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said, Union Cabinet in February this year approved the proposal to change the name of the state to Keralam and to introduce the necessary legislation for amendment in this regard. The lower house has also passed the National Cooperative Development Corporation NCDC Amendment Bill 2026. The legislation aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid uproar by the opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. India Today reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Radhir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China. Replying to another query, Mr. Jaiswal highlighted that human rights violations being committed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and other parts of the neighboring country.
3: In the last several months, we have seen that during the elections and before that also, large-scale protests were held in Pakistan-occupied Kashmir. Public discontent were answered with bullets and blackouts and repression and oppression, and more than 90 people have been killed and many more have been injured. This has made news across the world. There have been grave violations of human rights, and I think it is time that the international community take note of what's happening there and hold that country responsible for its atrocities.
2: On Indian High Commissioner Dinesh Trivedi meeting Bangladesh Prime Minister Tariq Rahman, Mr. Jaiswal said, New Delhi has extended an invitation for a bilateral visit as well as for the BRICS outreach session which will be held in the national capital. Protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK are set to go global from Thursday to expose state-sponsored terror by Islamabad. The Awami Action Committee AAC has urged Kashmiris across the world to hold rallies and draw international attention to the deadly force being used by the Pakistani establishment against the people of POJK. The AAC has also decided to observe 14th of August as a Black Day, coinciding with Pakistan's Independence Day. US space agency NASA has invited Indian Space Research Organization ISRO to join its moon-based program, building on the two countries' partnership under the Artemis Accords. India and US have agreed to advance discussions for cooperation on open scientific data sharing under the accords. The ninth meeting of the India-US Civil Space Joint Working Group was hosted by India on the 5th and 6th of this month at the ISRO headquarters in Bengaluru. The ongoing Har Ghar Tiranga campaign is gaining significant momentum across the country ahead of the 80th Independence Day celebrations, inspiring citizens from all walks of the life to come together in a collective celebration of India's national pride and spirit of unity. The movement, which will continue till the 17th of this month, coincides with the 150th anniversary of Vande Mataram this year, making the occasion even more heart-stirring for every patriot. And that is the end of this news bulletin.
4: Yeah. आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इससे पहले कि मैं आपके ढेर सारे ईमेल्स पढ़ूँ, आइए चलते हैं, सबसे पहले सुनते हैं आप ही की फरमाइश पर ये गीत।

बताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म कारवां से। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी जी की। इसके साथ ही हम चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ, जो कि सबसे पहला मैसेज हमारे पास आया मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बहुत बहुत आपके पत्रों का इंतज़ार रहता है हमें। नेक्स्ट मैसेज आया है हमारे पास पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी और असद अंसारी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी और बिमला अनेजा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर बदलापुर मुंबई से, प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर टुक टुक हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, एकांश सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर परी भी हमारा कार्यक्रम सुन रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पदमपुरा जिला श्री गंगानगर राज

0: खान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत, दर्श राजपूत हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील पाठक जी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और साथ में हैं, सुनील पाठक जी के साथ हैं कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक जी, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत सादिया भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। पोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, साथ में है ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल बजाज, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्ढा जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई दिग्दर्शन जी के साथ आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमपति भारती, खनक शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथव सिंह भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अनिल कोहले, छाया कोहले, प्रियांश कोहले धन्यवाद के साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके साथ ही बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास और आ रहे हैं, लेकिन पहले सुनते हैं आप ही की पसंद पर ये एक और प्यारा सा गीत।
1: ये गुलशन, फूल, कलियां, बहार, वादियां, ये मौसम, खेत, हरियाली, पहाड़, बर्फ, ये कायनात, कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं,
2: वो है कौन?
3: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
1: नाम

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म दिल जले से, और आवाज़ थी कुमार सानू जी की। और इसी के साथ चलते हैं और मैसेजेस की तरफ, जो कि हमारे पास आया है मुक्कम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंढरपुर से। जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज़ मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, चाचा चाची और पूरा मुलानी परिवार हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है डाबकी रोड अकोला से, सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर जी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज हमारे पास आया है देवरी भाटापारा से, के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नू, लाल रजक और मुरली क्षत्रिय जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है रेलवे कॉलोनी कानपुर से, आफ्ताब उल्लाह डोम, अल्ताफ उल्लाह डोम, वली उल्लाह डोम, बबलू उल्लाह डोम, इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम, बेबी अंसारी डोम जी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है स्टेशन रोड कानपुर से, याकूब आसमा कबाड़ी वाला, यूसुफ आसमा कबाड़ी वाला, असलम आसमा कबाड़ी वाला, अकरम आसमा कबाड़ी वाला, कलीम आसमा कबाड़ी वाला, सलीम आसमा कबाड़ी वाला जी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन गौर, गौर कविता, कर्ण, शक्ति, जिया, जया, रिया और दर्शन भाई भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत

स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास आया है हिसार से अमन शर्मा जी का। आप लिखते हैं, एगरली वेटिंग फॉर योर शो, कैन यू प्लीज प्ले अ सॉन्ग फॉर मी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इंतज़ार करने के लिए, और हमारा तो कार्यक्रम ही है आपकी फरमाइश को आप तक पहुंचाने के लिए। तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

ये गीत हमने लिया था फिल्म साथ साथ से, और आवाज़ थी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी की। और इसी के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ जो कि हमारे पास आया है। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, कमल करण राहुल साहू और चंपा साहू जी का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा जी भी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साई राज सपकाल और विशाल सपकाल जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी और बिमला अनेजा जी लगातार हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि आया है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, कुमारी वंदना मराठा, देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, स्वाति प्रज्ञा चौधरी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और साथ में है पुष्पेंद्र कुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि आया है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे का, साथ में है स्वाति प्रयाग चौधरी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, हमें सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक जी का, जो कि लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। बागवान मंजिल छोटी बलिया से हमारे पास मैसेज आया है नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान, आमना आसमा, राबिया परी, आशु जूही सदफ, आरजू बागवान और बागवान फैमिली के सभी सदस्य हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे मैसेजेस और भी हैं लेकिन पहले सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म आरजू से और आवाज़ थी लता मंगेशकर जी की। इसी के साथ चलते हैं और मैसेजेस की तरफ, जो कि हमारे पास आया है तंगौरी मोहाली पंजाब से। गुरप्रीत तंगौरी, जसबीर कौर, महिक प्रीत कौर और सहज प्रीत सिंह जी का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकर

लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, राखी जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले परिवार हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह का जो कि लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम और मरियम जैनब भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नियमित श्रोता ए के पांडे मध्य प्रदेश से शामिल हो चुके हैं हमारे कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर हमारे कार्यक्रम को लगातार सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और लगातार बहुत बहुत शुक्रिया आपका लगातार कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लो नायक और मधु नायक जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास आया है। राजेंद्र जतोलिया, उषा जतोलिया, चारू जतोलिया फ्रॉम दिल्ली नांगलोई से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए सुनते हैं आपके पसंद पर अगला गीत।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म इज्जत से। आवाज़ थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी जी की। और इसी के साथ चलते हैं और मैसेजेस की तरफ, जो कि हमारे पास आया है। नमस्कार, राधे राधे के साथ फजिल का पंजाब खेड़ा परिवार की तरफ से। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है। हमारे पास आया है कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम और मरियम जैनब जी का, जो कि लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है पटेल नगर मलोट से डॉक्टर राजकुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, जो कि लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री, नन्ही पोती अन्विका तनुश्री गुप्ता भी हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं। साथ ही में बिहरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, गुड्डू कुमार, शिवानी कुमार, प्रियंका कुमारी साहू, मुन्नी देवी शॉ, जय प्रकाश साव, रिया जिया टूसी, आयुषी अनिरुद्ध, बसंत लाल साव, हीरा मोती, पन्ना लाल साव भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप लिखते हैं, आदरणीय प्रसारक मैडम दीदी जी नमस्कार, आपकी प्रस्तुति बहुत ही बढ़िया है और गीत लाजवाब सुन रहा हूँ। हाजिरी लगा दे। देखिए, हमने आपकी हाजिरी लगा दी। इसके साथ ही चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म अनाड़ी से। आवाज़ थी लता मंगेशकर और मुकेश जी की। और इसी के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह जी लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, हमारे पास मैसेज आया है रचना अग्निहोत्री जी, आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, बधाई स्वीकार करें। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी का ये संदेश आया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ के लिए। इसके साथ ही अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है सोनू विश्वकर्मा, मोनू विश्वकर्मा, संगीता विश्वकर्मा, प्यारी बेटी माही विश्वकर्मा भी हमारा कार्यक्रम सुन रही है, ग्राम सल्याखेड़ी, जिला आगर मालवा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास हैं, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस बार बार आ रहे हैं, जिसके कारण हमें वो मैसेज ढूंढने में दिक्कत होती है जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। इसलिए आप सभी से बहुत बहुत गुजारिश है, बार बार एक ही मैसेज ना भेजें। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा और बाला साहिब करवा जी भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कोई भी मैसेज हमारे श्रोताओं का कोई भी मैसेज ना रहे। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है फिल्म असली नकली से और आवाज़ है लता मंगेशकर जी की। और इसी के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को इजाज़त दीजिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश को यहीं पर समेटने की।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण अब संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी तत्पश्चात अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
1: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण स्थगित कर दी गई है।
3: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज

0: भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएसएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी रहा। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। नेपाल में भारतीय दूतावास और नेपाल सरकार की कई संस्थाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में 8 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से अनुदान के तौर पर मदद मिलेगी। लगभग 80 करोड़ 30 लाख नेपाली रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को नेपाल सरकार के तहत स्थानीय सरकारी संस्थाओं और अन्य संस्थाओं के जरिए पूरा किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा में मानक प्राधिकरण ने पान मसाला पैकिंग में प्लास्टिक, सिंथेटिक सामग्री और एल्युमिनियम फॉयल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament has passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. When the upper house met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to discussion on the bill, Mr. Meghwal said, "The new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court." The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. The Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said, "Union Cabinet in February this year approved the proposal to change the name of the state to Keralam and to introduce the necessary legislation for amendment in this regard. The lower house has also passed the National Cooperative Development Corporation NCDC Amendment Bill 2026. The legislation aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid uproar by the opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. India has reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India, and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, आज बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत कार्यक्रम होने वाला है। आकाशवाणी कार्यक्रम सुरों का सफर नामा, एक विशेष प्रस्तुति महान संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी। जी हाँ दोस्तों, आज वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन एक ऐसे संगीतकार जो शायद ही बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी ख्याति प्राप्त करने वाले शानदार बेहतरीन संगीतकार खयाम साहब। साथियों, कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, आज मैं हूं आपके साथ। इस कार्यक्रम में आपका अपना दोस्त ललित कुमार। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार गीत के साथ, और उसके बाद फिर जानकारियों का सिलसिला आरंभ होगा, साथ में कुछ बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं भी। जो भी साथी सुनना चाहते हैं तो आज के कार्यक्रम को तो ज़रूर आप सुनिएगा। बहुत स्वागत है आपका, और अच्छा लगता है हमें भी जब हमारे साथी सुन रहे होते हैं किसी ख़ास प्रोग्राम को, हमें भी खुशी मिलती है ना। तो चलिए सबसे पहले एक गीत से शुरुआत कर रहे हैं, और उसके बाद सिलसिलेवार आपको सभी जानकारियों से अवगत कराया जाएगा। फिलहाल हम सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। जी हाँ, फिर से दोहराए देते हैं, आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आपका होस्ट RJ ललित कुमार। तो सुनवाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत रचना से आगाज कर रहे हैं। कहते हैं कि ऐ खुदा शुक्र तेरा, ऐ खुदा शुक्र तेरा। फिल्म रजिया सुल्तान से बेहतरीन खूबसूरत रचना है। ये फिल्म 1982 प्रदर्शित फिल्म रही है, महेंद्र कपूर और भूपेंद्र सिंह और साथ में साथ दिया है साथियों ने। गीत कैफ भोपाली के हैं और संगीत से सजाया है खयाम साहब ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की पहली और शानदार बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत दोस्ती के नाम, बहुत ही शानदार बेहतरीन रचना अभी आप सुन रहे थे। साथियों शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ, कभी कभी संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। कभी कोई धुन कानों से होकर दिल तक पहुंचती है, कभी कोई गीत बरसों बाद भी वही एहसास जगा देता है, और कभी कोई संगीतकार अपने सुरों से एक ऐसा संसार बना देता है जहां मोहब्बत भी है, तन्हाई भी है और शायरी भी है, दर्द भी है और खामोशी की अपनी एक आवाज भी है। कहते हैं कुछ धुनें वक्त की मोहताज नहीं होती, कुछ धुनें वक्त की मोहताज नहीं होती, कुछ आवाजें किसी की मोहताज नहीं होती। सदियां गुजर जाती हैं मगर कम नहीं होता असर। कुछ संगीतकारों की रूह कभी खामोश नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, कभी खामोश नहीं होती। नमस्कार, आदाब, आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल। आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। तो शुरुआत कर रहे हैं सुरों का सफ़रनामा। आज का यह सफ़र समर्पित है उस शख्सियत को जिसने फिल्मी संगीत को सिर्फ लोकप्रियता नहीं दी बल्कि उसे अदब, शायरी, तहजीब और संवेदना से भी जोड़ा है। एक ऐसा संगीतकार जिसने शोर के दौर में भी खामोशी को संगीत बनाया। एक ऐसा फनकार जिसके सुरों में मोहब्बत की नरमी और गजल की रवानी थी, ठुमरी की मिठास थी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गहराई थी। आज हम याद कर रहे हैं मोहम्मद जहूर खयाम हाजमी साहब को। नाम छोटा था खयाम, लेकिन उनकी संगीत यात्रा बेहद विशाल। जी हाँ, सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत, उसके बाद फिर सिलसिलेवार और भी खूबसूरत जानकारियों के साथ रूबरू कराएंगे हम।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारी खूबसूरत रचना, वाकई लाजवाब। साथियों, अब बात करेंगे खयाम साहब की। जी हाँ, खयाम कौन थे आखिरकार? खयाम साहब का पूरा नाम था मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी। उनका जन्म 18 फरवरी 1927 को पंजाब के राही में हुआ था। बचपन से ही संगीत की ओर आकर्षण था। किशोरावस्था में भी संगीत सीखने के लिए दिल्ली आए और आगे चलकर पंडित अमरनाथ जैसे संगीतज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त किया। संगीत उनके लिए सिर्फ रोजगार नहीं था, संगीत उनके लिए साधना थी। उनकी रचनाओं में इसलिए एक ठहराव दिखाई देता है जहां दूसरे संगीतकार कभी कभी गीत को सजाते थे, लेकिन खयाम साहब गीत के भाव को संगीत देते थे। या दोस्तों, वाकई कमाल है, खयाम साहब की भी बात ही कुछ अलग है। संघर्ष से शुरुआत, फिल्मी दुनिया में उनका सफर आसान नहीं था। 1940 के दशक में उन्होंने गायन और संगीत दोनों क्षेत्रों में काम किया। फिल्म हीर रांझा के दौर में वे शर्मा जी नाम से संगीत देने वाले जोड़ीदारों में शामिल रहे। बाद में उन्होंने अपने लिए नाम चुना खयाम। जी हाँ दोस्तों, ये भी कुछ अनसुनी सी बात लगती है, और यही नाम आगे चलकर हिंदी सिनेमा के संगीत इतिहास का अमर अध्याय बना। जी हाँ दोस्तों, 1953 की फुटपाथ से उनका स्वतंत्र संगीतकार के रूप में महत्वपूर्ण दौर सामने आया। तो फिलहाल एक और गीत हम सुनवा रहे हैं, उसके बाद और भी जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तब तक सुनिए ये शानदार खूबसूरत रचना।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत गीत रात के सन्नाटे में इतनी सुंदर रचना वाकई बहुत ही कमाल करती है। ख्वाब बनकर कोई आएगा, रजिया सुल्तान। जी हाँ, फिल्म का

नाम। लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज़ में रजिया सुल्तान 1982 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीतकार हैं जानिसा अख्तर और संगीत खयाम साहब का। तो बढ़ते हैं उनके एक और खूबसूरत गीत की ओर, लेकिन उससे पहले कुछ उनके जज्बात और फिर उनकी फिल्में। संगीतकार के रूप में महत्वपूर्ण दौर सामने आया, फिर आई गुल सनावर। जी हाँ, फिल्म गुल सनावर, गुल बहार, धोबी डॉक्टर, टाटार का चोर, फिर सुबह होगी और धीरे धीरे खयाम की अपनी एक पहचान बनने लगी। एक बहुत ही सुंदर गीत है शाम गम की कसम। जी हाँ, शाम गम की कसम, बहुत ही प्यारा गीत है। और अब इस सफ़र में सुनते हैं एक वह गीत जिसमें दर्द भी है और नज़ाकत भी है। यह दोस्तों बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत है, लेकिन उससे पहले गीत के बाद जो शायरी होगी बहुत ही कमाल की है। जी हाँ, दर्द को सुर मिला तो गज़ल बन गई, दर्द को सुर मिला तो गज़ल बन गई, आँख नम हुई तो महफिल बन गई, खयाम ने छुआ जब उदासी को अपनी धुन से, हर टूटे दिल की कहानी मुकम्मल बन गई। या दोस्तों वाकई इतनी सारी जानकारियां हैं आज, कमाल। एक फिल्म थी फिर सुबह होगी, 1958 प्रदर्शित फिल्म फिर सुबह होगी, खयाम के करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी। साहिर लुधियानवी की शायरी और खयाम का संगीत, यह संगम अपने आप में इतिहास था। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, वो सुबह कभी तो आएगी। इस गीत में सिर्फ उम्मीद नहीं थी, एक पूरे दौर की बेचैनी थी, सामाजिक सरोकार, इंसानी उम्मीद और बेहतर भविष्य का सपना। खयाम ने शहर के शब्दों को भी ऐसी धुन दी कि गीत सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं रहा, एक विचार बन गया। जी हाँ दोस्तों, वाकई वाकई बहुत ही सुंदर और बेहद सुंदर जानकारियां हैं। और फिलहाल हम एक और गीत सुनवाने जा रहे हैं, उससे पहले एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंटल।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे वो सुबह कभी तो आएगी। वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन रचना है और खयाम साहब के करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी। तो फिलहाल हम सुनवाते हैं यही गीत, वो सुबह कभी तो आएगी। तो आइए सुनते हैं ये प्यारी सी रचना।

जी हाँ दोस्तों, वो सुबह कभी तो आएगी। जी हाँ, फिर सुबह होगी। मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ में शानदार रचना। फिर सुबह होगी 1958 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत साहिर लुधियानवी के थे और संगीत से सजाया खयाम साहब ने। जी हाँ, खयाम साहब ने। एक और बेहतरीन रचना हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और जानकारियाँ। खयाम कि संगीत शैली खयाम साहब की सबसे बड़ी विशेषता थी। कम वाद्य, अधिक भाव। वे धुन पर भरोसा करते थे। उनका संगीत अक्सर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, गजल, ठुमरी, दादरा, लोक धुन, सूफियाना रंग, उर्दू शायरी की लय से प्रभावित दिखाई देता है। वे गीत को अनावश्यक ऑर्केस्ट्रेशन से दबाते नहीं थे। उनके यहाँ आवाज और शब्द सामने रहते थे, इसलिए उनकी धुनों में स्पेस मिलता था। श्रोता को गीत के शब्द महसूस करने की जगह मिलती थी। खयाम और उनकी शायरी, खयाम की संगीत यात्रा को समझना ही तो है उनके साथ काम करने वाले शायरों को समझना जरूरी होता है। उन्होंने जिन रचनाकारों की शायरी को संगीत दिया, उनमें प्रमुख नाम साहिर लुधियानवी और यार नक्श लायलपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी और जानिसार अख्तर, फैज अहमद फैज और मीर ताकी मीर आदि। उनकी धुनों में शायरी सिर्फ शब्द नहीं थी, शायरी उनकी धुन की आत्मा थी। यह दोस्तों वाकई। बढ़ते हैं एक और सुंदर रचना के साथ। आ रहा है एक बड़ा ही मस्ती भरा खूबसूरत गीत, सुनवाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत चल रहा है, रोमांटिक लाजवाब रचना। फिल्म शगुन एक अलग रंग 1964 की फिल्म शगुन खयाम की खूबसूरत संगीत यात्रा का अहम हिस्सा रहा। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत था और पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। इन गीतों में खयाम के संगीत की नरमी साफ महसूस होती थी। और एक दिलचस्प बात बताना चाहेंगे, इनमें उनकी पत्नी जगजीत कौर की आवाज़ भी सुनाई देती है। खयाम और जगजीत कौर को कौर का रिश्ता सिर्फ वैवाहिक नहीं था, दोनों के बीच संगीत की गहरी साझेदारी भी थी। दोनों ने 1954 में विवाह किया था और खयाम और जगजीत कौर स्वयं एक बेहतरीन गायिका थी। उनकी आवाज़ में एक ख़ास नरमी थी। खयाम साहब ने उस आवाज़ की विशेषता को पहचाना और कई

मज़ेदार गीतों में उनको इस्तेमाल भी किया, जैसे कि तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, देख लो आज हमको जी भर के, कहे को ब्याहे विदेश। उनकी समझदारी हिंदी फिल्म संगीत के खूबसूरत कहानियों में से एक है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बहुत ही सुंदर लाजवाब गीत है। खयाम के करियर का एक वह मुकाम जहां उनका संगीत करोड़ों दिलों की आवाज़ बन गया। फिल्म कभी कभी जो 1976 प्रदर्शित फिल्म रही और गीतकार साहिर लुधियानवी, गायक मुकेश लता और मंगेशकर की संगीत और खयाम मुकेश और लता की आवाज़ में शानदार रचना और खयाम साहब का संगीत। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, यानी कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये सिर्फ प्रेम गीत नहीं था, यह प्रेम को प्रेम की कविता की भाषा में कहने का एक अंदाज था। खयाम ने साहिर की कविता को एक ऐसी धुन दी जिसमें शब्दों को सांस लेने की पूरी जगह मिली। कहते हैं कि कभी किसी की याद में शाम ढल जाती है तो कभी किसी की बात से दुनिया बदल जाती है। मोहब्बत को जो आवाज़ दे दे खामोशी में, वही धुन उम्र भर दिल में बल जाती है। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत रचना आ रही है। आइए सुनवाते हैं बहुत ही प्यारा गीत।

कहाँ। जी हाँ, पल दो पल मेरी कहानी है, वाकई बहुत ही सुंदर। साथियों, हम जिक्र कर रहे थे खयाम साहब का। उनकी धुनों में रोमांस भी था, नाटकीयता भी थी और फिल्म की कहानी के अनुसार भाव भी। गपुची गपुची गम गम से लेकर रोमांटिक रचनाओं तक उन्होंने अलग अलग मूड को संगीत दिया।

नूरी। जी हाँ दोस्तों, नूरी 1979 प्रदर्शित फिल्म, गीत भी बहुत शानदार, आजा रे आजा मेरे दिल भर आजा, खयाम की धुनों में पहाड़ी और लोक संवेदना और लोक संवेदना का सुंदर इस्तेमाल दिखाई देता है। पहाड़ों की हवा में कोई पैगाम तो होगा, पहाड़ों की हवा में कोई पैगाम तो होगा, चांदनी रात में

बेवफाई। गीत में दर्द, रिश्तों की पेचीदगी और भावनात्मक टूटन दिखाई देती है। खयाम ने यहाँ भी ऊंची आवाज या भारी संगीत के बजाय भाव को केंद्र में रखा। खयाम का शिखर उमराव जान और अब वह अध्याय जिसके बिना खयाम की कहानी अधूरी है। 1981 में उमराव जान निर्देशक, मुजफ्फर अली गीतकार, शहरयार गायिका आशा भोसले और संगीत खयाम का। यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह संगीत, शायरी, अदाकारी, तहजीब और अदब का संगम थी। जी हाँ, खयाम ने लखनऊ की तहजीब, उर्दू शायरी और तवायफ संस्कृति के संगीतात्मक वातावरण को अपनी धुनों में बेहद नफासत से ढाला। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, जी हाँ, बहुत ही सुंदर बेहतरीन रचना थी। और नज़र मिली तो मोहब्बत का सिलसिला निकला, लव खामोश थे लेकिन दिल का फैसला निकला, उसमें सदियों की तहजीब का काफिला निकला, इन आंखों की मस्ती, ऐसे तमाम गीत भरे हैं। क्योंकि समय हमें इजाज़त नहीं देता है, इसलिए बस केवल हम राष्ट्रीय जो सम्मान है उनका, उनके बारे में हम ज़रूर बताएंगे। और उमराव जान के संगीत के लिए खयाम को नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर डायरेक्शन मिला और 29वें नेशनल फिल्म अवार्ड में उमराव जान के लिए खयाम को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का सम्मान दिया गया। इसी दौर में उन्हें 1982 का फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड भी मिला और फिल्म बाजार के लिए भी एक संगीत में फिर से खयाम की नफासत गीत संगीत और दिखाई दिए और यूँ बेहद बेखुद किया। मीर ताकीर, मीर शायरी खयाम ने, और यह यहाँ संगीत सिर्फ धुन नहीं, एक अदब एहसास था। फिर छिड़ी रात फूलों की, बहुत ही शानदार खूबसूरत शानदार रचना है और ये रचना अभी हम सुनवाएंगे। और रात कभी इंतज़ार, कभी याद, कभी तन्हाई और कभी मोहब्बत, सबसे खूबसूरत घड़ी। तो साथियों, बस समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। ये जो तमाम फिल्में हैं, हिरांझा, बीवी, प्यार की बातें, फुटपाथ, गुल सनावर, गुल बहार, धोबी डॉक्टर, डाटा और चोर, और फिर सुबह होगी, लाला रुख और बारूद, बॉम्बे की बिल्ली, शोला और शबनम, तमाम फिल्में हैं। तो बस समय इजाज़त नहीं दे रहा है। बस आज के कार्यक्रम की, यानी कि सुरों का सफ़रनामा की अंतिम और बहुत ही खूबसूरत रचना अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। बहुत ही शानदार, जैसे कि हमने जिक्र किया, फिर छिड़ी रात बात रात फूलों की। ये गीत तो हमने प्ले कर दिया था, लेकिन एक और खूबसूरत गीत याद कर रहे हैं। जी हाँ, करोगे याद तो फिर याद आएगी। सुनते हैं ये शानदार रचना।

0: जी साथियों, इसी खूबसूरत गीत के साथ शुरू का सफ़रनामा अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए इजाज़त। एक बजने को है, कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता, सुधार और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने वर्ष 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
1: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
3: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते

0: राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी से कल नई दिल्ली में केरल के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने श्री जोसेफ से राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने की गति और तेज करने का आग्रह किया। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने और पानी की सतह पर तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना के लिए राज्य की क्षमता का लाभ उठाने पर जोर दिया। फुटबॉल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 135वें डूरन कप के अपने आखिरी मैच में FC1 को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ग्रुप ई के मैच में नौकसेह SSCC ने मुंबई फुटबॉल क्लब पर 7-0 की शानदार जीत के साथ अपने अभियान का समापन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Parliament has passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service, of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. When the Upper House met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to discussion on the bill, Mr. Meghwal said that the new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court. The Rajya Sabha is adjourned for the day after completing its business. The Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of the Kerala to Keralam in the first schedule of the Constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home, Nityanand Rai, said, Union Cabinet in February this year approved the proposal to change the name of the state to Keralam and to introduce the necessary legislation for the amendment in this regard. The lower house has also passed the National Cooperative Development Corporation, NCDC, Amendment Bill 2026. The legislation aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act, 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid uproar by opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. India has reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India, and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance to the overall development of bilateral relations with China. Replying to another query, Mr. Jaiswal highlighted that human rights violations being committed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and other parts of the neighboring country.
2: In the last several months, we have seen that during the elections and before that also, large-scale protests were held in Pakistan-occupied Kashmir. Public discontent were answered with bullets and blackouts and repression and oppression, and more than 90 people have been killed and many more have been injured. This has made news.

0: तो बता, छुपने वाले सामने आ।
1: जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक लाजवाब की तभी आप सुन रहे थे। या दोस्तों, आज सनम मोहे, हाँ माफ कीजिएगा, अभी जो गाना सुन रहे थे, छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा दिल न जला, वाकई बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत गीत है, रचना लाजवाब। फिल्म तुमसा नहीं देखा, 1957 प्रदर्शित फिल्म, शानदार बेहतरीन रचना, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में बेहतरीन रचना थी, और गीत संगीत से सजाया था ओपी नैयर साहब ने इस खूबसूरत रचना को। और एक और खूबसूरत गीत आ रहा है आपके पास, तो हो जाइए तैयार मेरे साथ। जी हाँ दोस्तों, ये गीत भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, लाजवाब है, अनमोल रचना है। गीत सुनहरे के अंतर्गत बहुत ही प्यारा प्यारा नगमा होता है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। आज सनम मोहे अंग लगा लो, आज सनम मोहे अंग लगा लो, फिल्म प्यासा से, जो 1957 प्रदर्शित फिल्म रही और

गीता दत्त की बेहतरीन आवाज़ में शानदार रचना। गीत साहिर के हैं और संगीत SD बर्मन का। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत रचना।

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला।
1: जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, गीत सुनहरे। जी हाँ, गोल्डन एरा फिल्म म्यूजिक ऑफ गोल्डन एरा। ये साथियों, गीत सुनहरे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे इस कार्यक्रम से, यानी कि गीत सुनहरे कार्यक्रम से दीजिए अनुमति, अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। साथियों, दो बजने वाले हैं और अब पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे और इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा था। लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और राज्यसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कल नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
3: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
2: भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ओमान की खाड़ी में उसके सैनिकों ने पनामा के झंडे वाले एक जहाज पर गोलीबारी की। ये जहाज ईरानी बंदर

0: of India's national pride and spirit of unity. The movement, which will continue till 17th of this month, coincides with the 150th anniversary of Vande Mataram this year, making the occasion even more heart-stirring for every patriot. Prime Minister Narendra Modi yesterday urged countrymen to celebrate Independence Day with pride and grandeur, taking a pledge to build a Viksit Bharat. Sharing a video on a social media platform, Mr. Modi urged all to hoist the tricolour at their homes under the Har Ghar Tiranga campaign. President Draupadi Murmu has given assent to prevention of insults to national honour amendment bill 2026. Parliament had passed the bill last month amending the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give national song Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana. The bill has become a law following the president's assent. In Canadian Open Tennis, 19th seed Luciano Dardari of Italy will face 28th seed Brandon Nakashima of the United States in the men's singles quarterfinal in Montreal last night. In the other quarterfinals, Spain's 20th seed Rafael Hodar will take on 18th seed Arthur Fils of France later last night. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR Live News 24/7 चैनल है। साथियों, स्टूडियो के घड़ी के अनुसार समय हुआ है 2:10 और 10 सेकंड। साथियों, ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, कार्यक्रम गीत बहार का, एक से एक सुंदर बेहतरीन खूबसूरत रचनाओं के साथ सजाकर लेकर आए हैं आज आप सभी साथियों के लिए बहुत ही सुंदर प्रोग्राम, बहुत ही सुंदर गीत। जी हाँ दोस्तों, गीत बहार कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। जी हाँ दोस्तों, और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे सुंदर खूबसूरत गीत के साथ। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत गीत। हाँ, गीत के जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के बारे में अगर हम बताएं तो ये नॉन स्टॉप कार्यक्रम होता है, लगातार खूबसूरत गीतों की सुरमाला के साथ सुंदर रचनाएं होती हैं। तो बस आराम से सुनिए और आनंद लीजिए बेहतरीन खूबसूरत गीतों का। आज के कार्यक्रम की पहली सुंदर खूबसूरत रचना आ रही है आपके पास, तो हो जाए तैयार मेरे साथ। नमस्कार।

0: सुनो बेटा, जिंदगी भगवान की देन है, इसे बर्बाद नहीं आबाद करना चाहिए, आबाद करना चाहिए, आबाद करना चाहिए।
1: आज से अपन चोरी नहीं करेगा, सच्ची चोरी नहीं करेगा, ईमान से हम चोरी नहीं करेगा।
2: अच्छा, चोरी नहीं करेगा तो फिर खाएगा कहां से? यहाँ क्या तेरे बाप दादा ने कोई भंडार खोल रखा है? अरे जीने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। मैं कहता हूं मुझे पैसा चाहिए, पैसा, समझा? मुझे पैसा चाहिए खाने के लिए, पैसा।
0: नहीं बेटा, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, ये तुम्हारी कमाई के नहीं चोरी चकारी के पैसे हैं, तुम्हारी कमाई के नहीं चोरी चकारी के पैसे हैं, चोरी चकारी के पैसे, चोरी चकारी के पैसे।
2: अरे बेईमान, दो दिन भूखा रहेगा तो सारी नेतागिरी निकल जाएगी, समझा?
0: मेरी बात सुनो बेटा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे भगवान पर भरोसा है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।

वाकई दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, बूंदे नहीं सितारे। वाकई बहुत ही लाजवाब अनमोल रचना। बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम गीत बहार की अंतिम प्रस्तुति की ओर। सुनवाते हैं शानदार।

0: तो गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। समय है समाचारों का है। आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे और इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। लोकसभा ने पहले ही इसे पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। इससे पहले कल लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और राज्यसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित किया। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की और दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार के अत्याचारों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि आज बलूचिस्तान के लोग न केवल अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं, बल्कि दुनिया से मांग करते हैं कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को कानूनी, राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक रूप से मान्यता दी जाए। मीर यार बलूच ने दावा किया कि 50,000 से अधिक बलूच अभी भी पाकिस्तान की यातना कोठरियों में अमानवीय अत्याचार झेल रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, आसियान, अफ्रीकी संघ, ओआईसी और यूरोप के सदस्य देशों से चुप्पी तोड़ने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश में शिमला के चौरा मैदान में लगभग 50 तिब्बती पुरुषों, महिलाओं और बुजुर्गों ने 24 घंटे की भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। वे तिब्बत के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने और तिब्बती भाषा, संस्कृति और धार्मिक पहचान को कमजोर करने की कोशिशों का विरोध कर रहे हैं। क्षेत्रीय तिब्बती महिला संघ शिमला द्वारा आयोजित ये विरोध प्रदर्शन कल शाम 4 बजे शुरू हुआ और आज शाम 4 बजे खत्म होगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये भूख हड़ताल लोबसांग रंग जेन की याद में की जा रही है। आयोजकों के

अनुसार उन्होंने चीन की सरकार की नीतियों के विरोध में 2 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर आत्मदाह कर लिया था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल ईगा स्वियातेक का मुकाबला यूक्रेन की 9वीं सीड एलिना स्वितोलिना से होगा। पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी स्वियातेक 6 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने रूस की डायना श्नाइडर को 6-2, 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। स्वितोलिना ने एक अन्य क्वार्टर फाइनल में रूस की एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा को हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत ही खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे चित्रा सिंह की आवाज़ में। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गज़ल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की स्वर में।

0: मिताली और भूपेंद्र सिंह के स्वर में गाई इसी गजल के साथ ये गजल गीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: निंदा के स्वर में अभी आप गुरुवायूरप्पन की प्रशंसा में हरि नाम कीर्तनम सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

कलाकार थे पी लीला। जी, आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 4:20 और 10 सेकंड। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं मिनी एन का गायन। राग है कल्याणी।

राग था कल्याणी। इसी के साथ आज का ये नाद ब्रह्म का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। वंदे मातरम।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आज बुधवार है, शक सम्मत 1948 के श्रावण मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 अगस्त 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, अब हम आपको कुछ कार्यक्रम विवरण के बारे में जानकारी दे दें। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा। प्रस्तुतकर्ता होंगे योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। 5:20 पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत। 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित एल के पंडित का गायन, राग होगा अहीर भैरव।

सुबह 7:10 पर संगीत का कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे आस्था गोस्वामी के भजन। 7:30 पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग, जो कि फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा, आप सुन सकेंगे।

सुबह 8:45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे सैयद सईद अहमद खान का सितार वादन, राग होगा शुद्ध सारंग। साइंस मैगजीन कार्यक्रम का समय रहेगा 9:15। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मिट्टी दी महक, जिसके अंतर्गत आप सुन सकेंगे कभी दरबार। दिन में 10:10 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा आपकी पसंद।

0: दिन में 11:10 पर कार्यक्रम होगा सबरस, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजरी का समय रहेगा 11:30, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे मजहर अली खान और उस्ताद जावेद अली खान के गायन, राग होगा जौनपुरी। दोपहर 12:10 पर महिला कार्यक्रम होगा घर आंगन। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे और इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। लोकसभा ने पहले ही इसे पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय

0: सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। इससे पहले लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और राज्यसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक पारित किया। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीपीवी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कल नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
1: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का एक सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। श्री चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का सामूहिक संकल्प लिया गया है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर की कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए घर बनाने के लिए दिए गए अरबों रुपए के फंड के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए मिले पैसों को बुनियादी परियोजनाओं में खर्च किया गया है। बैंक ने चेतावनी दी है कि इस कदम से पाकिस्तान में गरीबी और बढ़ सकती है, साथ ही आपदा से जुड़े जोखिम भी बढ़ सकते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. The Lok Sabha had passed the bill yesterday. Rajya Sabha is also likely to take up the National Cooperation.

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज का विषय है तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा। प्रस्तुत करता है योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग तो को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। ये महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।

0: आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए, अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है। ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है दीर्घ श्वास के अभ्यास से। बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रखने में समर्थ। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय था तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा। प्रस्तुतकर्ता थे योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 300।

अभी जो देशभक्ति गीत आपने सुना, कलाकार थे सतीश भाटिया। और कार्यक्रम में आइए आगे सुनते हैं एक और देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: मैं हूँ आपका जलदाता।